रहिया तैया मोर अरे ले ले गवानावा तहिए अरे जहिया से सैया मोर ले ले गवानावा तहिए हो नैहर।

लागे अरे बिना सुन लागे घरवा अंगनवा सहिए तोरे बिना सुन लागे घरवा अंगनवा सहिए हो नैहर हो नैहर।

अवध का राजपद अस्वीकार करते हुए भरत पश्चाताप के आंसुओं में डूब जाते हैं। राज सिंहासन पर बैठने का प्रस्ताव सुनकर उन्हें उस प्राणी का स्मरण हो आता है जिसकी ग्रह दशा विपरीत हो गई हो, जो वायु रोग से पीड़ित हो और ऊपर से जिसको बिच्छू ने डंक मार दिया हो, और इन सब लक्षणों से मुक्ति पाने के लिए जिसे मदिरा पिलाई जा रही हो। ये कैसा उपचार है भला? कैकेयी का पुत्र होने के नाते संसार में जो कुछ उनके योग्य था विधाता ने उन्हें सब कुछ दे दिया। विडंबना यह है कि दशरथ का पुत्र और श्रीराम का छोटा भाई होने का गौरव उन्हें व्यर्थ ही मिला। उनके मन में प्रश्न उठना स्वाभाविक ही है कि कुमाता कैकेयी को छोड़ और कौन कहेगा कि जो कुछ हुआ वो अच्छा ही हुआ है। भरत को ये भय नहीं कि जगत उन्हें बुरा कहेगा, उन्हें अपना परलोक बिगड़ने की भी चिंता नहीं। उनके हृदय में तो बस एक ही आग प्रज्वलित है कि वो श्री राम तथा सीता के दुख का कारण बने। भरत लक्ष्मण के भाग्य की सराहना करते हैं जिन्होंने सब कुछ त्याग कर श्री राम के चरणों में मन लगाया और इस प्रकार अपना जीवन सार्थक किया।

0: रामचरितमानस से अयोध्या कांड का भाग 62 अभी आप सुन रहे थे। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। 6:55 होने को है, लीजिए सुनिए संस्कृत में समाचार।
1: इयम् आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। अथ वार्ताः। भारतम् अद्य सर्जिकल प्रहारस्य दशमीं वार्षिकीम् आमानयति। यः विश्वस्य समक्षं नरेन्द्र मोदी प्रशासनस्य उग्रवाद विरोधी नीतेः नवीनम् उदाहरणं प्रादर्शयत्। 16-2000 वर्षे सितंबर मासस्य 28-29 दिनांकयोः भारतीय सैन्यबलम् उरी प्रहारस्य प्रत्युत्तरे सति सीमारेखां विलंघ्य आतंकवादी शिबिराणि व्यनाशयत्। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सम्प्राह यत् अस्य साहसिक प्रहारस्य संकल्पः एव बालाकोट वायु प्रहारस्य अथ सिन्दूराभियानस्य आधारशिलाम् अरचयत्।
2: 10 वर्ष पहले 28-29 सितंबर 2016 को भारतीय सेना ने पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक की थी। सर्जिकल स्ट्राइक ने डंके की चोट पर पूरी दुनिया के सामने भारत की आतंकवाद विरोधी नीति का एक नया उदाहरण प्रस्तुत किया था। बीते एक दशक में बालाकोट की एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक भारत ने बार बार ये स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर आतंकवादी भारत पर आंख उठाएंगे तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। अब आज का भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लेकर चल रहा है।
1: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अब्रवीत यत् शल्य प्रहारः दीर्घकालात् आतंकवादं प्रति भारतस्य निर्णायकं प्रत्युत्तरम् आसीत्। सः 28-2000 सितंबर मासे दिल्ल्यां सम्भूतान् श्रृंखलाबद्ध विस्फोटान् तथा मुंबय्याः 26-11 प्रहारं संस्मृत्य अवदत् यत् एतासु घटनासु बहुभिः निरपराधैः जनैः प्राणाः त्यक्ताः। प्रधानमंत्री स्पष्टं उक्तवान् यत् अधुना भारतम् आतंकवादस्य उपरि शून्य सहिष्णुता नीतिम् अनुसरति। अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघः सम्प्राख्यापयत् यत् अद्यारभ्य त्रिदिनात्मकं राष्ट्रव्यापी बैंक कार्यस्थगनं स्थगितताम् अमुञ्चत्। भारतीय बैंकिंग संघेन सह संजातायां मन्त्रणायां समयबद्धं च विचार्य संस्था निर्णयम् अगृह्णात्। सामाजिकान्तर्जालीये सन्देशे संघः

0: sekitar kita. Apabila ada seorang pemuda yang sedang menggara ke kebiasaan buruk, bicaralah dengannya. Apabila ada yang sedang berusaha keluar dari narkoba, dampingilah dia. Marilah kita semua bersama-sama meneruskan tekad pemuda bebas narkoba India yang maju ini. Saudara-saudaraku yang terkasih, dari Benteng Merah kali ini saya telah mengumumkan kampanye Talent Hunt atau pencarian bakat untuk olahraga. Agar India terus menunjukkan performa terbaik, perlu menjangkau desa-desa dan kota-kota kecil untuk menemukan bakat-bakat olahraga. Di sana juga ada banyak orang yang telah mendedikasikan diri mereka untuk pekerjaan kini sendiri. Passion mereka hanya satu, yaitu menemukan bakat dan mengasahannya. Di Punjab kita, Rajinder Singh Ji sedang melakukan pekerjaan inilah. Rajinder Singh Ji adalah seseorang yang namanya juga terdapat kata senior. Beliau adalah bagian dari tim yang memenangkan medali emas hoki di Olimpiade 1980. Beliau bersinar di Piala Dunia tahun 1982. Pada tahun 2001, India untuk pertama kalinya memenangkan gelar Men's Junior World Cup. Kemudian, pada tahun 2003, negara merebut gelar Senior Asia Cup dalam kedua turnamen. Kini, beliau berperan sebagai pelatih. Kini, beliau meneruskan passionnya melalui Round Glass Hockey Academy. Berkat upaya-upayanya, AstroTurf Hockey baru sedang dibangun di desa-desa. Fokus Rajinder Ji sangat jelas. Mengidentifikasi anak-anak di desa-desa di mana fasilitas perlatihan yang baik kurang tersedia. Berkat upaya-upaya semacam itu, banyak pemain sedang mendapatkan tempat mereka di tingkat junior dan senior India. Betapapun banyak apresiasi yang diberikan atas dedikasi Rajinder Singh Ji ini, itu tetap kurang. Saudara-saudaraku yang terkasih, amla atau buah cermai India sangat dikenal oleh kita semua. Di sebagian besar rumah, acar dan madu yang dibuat darinya digunakan. Banyak orang menyukai jus amla dan di musim dingin, Chyawanprash menjadi bagian penting dari rutinitas harian kita. Para orang tua dan leluhur kita memenang sudah turun-temurun menceritakan khasiat amla. Saudara-saudaraku, amla yang sama ini hari ini sedang menjadi media bagi kemungkinan-kemungkinan baru di Pratapgarh, Uttar Pradesh. Hubungan Pratapgarh dan amla sudah sangat tua. Dari generasi ke generasi, para petani di sini bertanam amla. Amla telah memberikan identitas yang kuat kepada Pratapgarh dan ini sedang membawa peluang-peluang baru bagi para petani dan perempuan di sini. Melalui One District One Product, yaitu ODOP. Usaha-usaha lokal yang berkaitan dengan amla di sini telah mendapat dorongan. Hari ini di Pratapgarh sekitar 100 unit yang terkait dengan pengolahan amla sedang bekerja. Dan perempuan-perempuan yang terhubung dengan kelompok swadhyay atau self-help groups juga memainkan peran besar dalam hal ini. Salah satu kelompok semacam itu adalah kelompok dari desa Devgar Kamasi. Perempuan-perempuan yang terhubung dengan Savitri Phule self-help group sedang membuat permen, madu, dan jus dari amla. Dengan meningkatkannya akses ke pasar-pasar baru di bawah ODOP, penghasilan mereka pun telah bertambah. Begitu juga ada Vendya Wasini self-help group di suatu desa. Perempuan-perempuan dari kelompok ini sedang menyiapkan berbagai hal seperti acar amla, serbuk, pencernaan, dan banyak lagi. Perempuan-perempuan ini mendapat mesin untuk penggeluhan, mendapat fasilitas pinjaman. Mereka juga mendapat kesempatan untuk bergabung dalam pameran dagang lokal dan sebentar kemudian penghasilan mereka meningkat cukup banyak. Saudara-saudaraku, di setiap wilayah negara kita pasti ada keistimewaan tertentu semacam itu. Di suatu tempat ada buah tertentu, di suatu tempat ada seni tradisional, maka di suatu tempat ada keahlian yang unik. One District, One Product adalah kampanye untuk mengembangkan keistimewaan-keistimewaan ini. Upaya kita haruslah bawa identitas desa-desa dan kota-kota kecil kita ini tidak terbatas hanya pada pasar lokal. Mereka menjangkau bagian-bagian lain negara ini dan juga menjangkau pasar-pasar dunia. Ini juga memberi kekuatan pada kampanye Vocal for Local, dukung produk lokal. Ini juga memberi inspirasi untuk menjadikan negara mandiri. Dalam festival-festival yang akan datang pun kita tidak boleh pernah melupakan mantra Vocal for Local ini. Saudara-saudaraku yang terkasih, bulan September ini didedikasikan untuk perjuangan melawan kekurangan gizi. Dalam bulan gizi ini, orang-orang dan lembaga-lembaga dari berbagai bidang berkumpul bersama untuk pekerjaan mulai mulia ini. Untuk memerangi kekurangan gizi, tahun ini banyak inisiatif yang patut dipuji telah dilakukan. Chhattisgarh telah memulai kampanye Har Ghar Munga.
1: Selesai acara kami untuk pagi hari ini. Acara kami untuk besok adalah sebagai berikut. Sedara warta berita lagu instrumental ya, komentar lagu rakyat, spotlight, dan seperti yang biasa kami menghibur Anda dengan sari acara besok hari ini ya. Saudara-saudara pendengar, sebelum kami menghibur diri dari udara, kami ucapkan terima kasih banyak dan sampai berjumpa kembali besok pada waktu dengan gelombang yang sama. Anda dapat mengirimkan salam kesan dan saran kepada kami melalui email di airindonesia313@gmail.com. Selamat pagi dan sampai berjumpa kembali.
0: Saudara-saudaraku yang terkasih, salam. Dalam bulan September ini, sekali lagi ada kesempatan untuk bertemu dengan Anda dalam Menkibat. Saya menyambut semua warga negara. Dalam Menkibat, kita memberikan platform bagi upaya-upaya positif warga negara. Kita membicarakan pencapaian-pencapaian bangsa. Tepat satu hari lagi, sebuah pencapaian bersejarah besar India akan genap 10 tahun. Pencapaian itu adalah surgical strike. 10 tahun lalu, pada tanggal 28-29 September 2000...
2: Namaskar. आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। भारत की पाकिस्तान स्थित आतंकी ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक की आज 10वीं वर्षगांठ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे भारत की आतंकवाद रोधी नीति का नया उदाहरण बताया। आज से प्रस्तावित 3 दिन की देशव्यापी बैंक हड़ताल स्थगित। सरकार ने पर्यटन क्षेत्र के लिए राष्ट्रीय डिजिटल सार्वजनिक ढांचा तैयार करने की परियोजना शुरू की। मौसम विभाग का आज उत्तराखंड, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में मूसलाधार बारिश का अनुमान। और तिरुवनंतपुरम में पहले एक दिवसीय क्रिकेट मैच में विराट कोहली और शुभमन गिल के शतक की बदौलत भारत ने वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराया। अब समाचार विस्तार से। भारत आज सर्जिकल स्ट्राइक की 10वीं वर्षगांठ मना रहा है। 28 और 29 सितंबर 2016 की रात सेना ने नियंत्रण रेखा के पार आतंकवादी ठिकानों पर लक्षित कार्रवाई की थी। 18 सितंबर को उरी आतंकी हमले के बाद यह कार्रवाई की गई थी। इसमें 18 जवान शहीद हुए थे। वर्ष 2019 में बालाकोट और वर्ष 2025 में ऑपरेशन सिंदूर से भी पाकिस्तान पर कार्रवाई की गई थी। आकाशवाणी पर कल प्रसारित मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2016 के सर्जिकल स्ट्राइक को एक महत्वपूर्ण पड़ाव बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले एक दशक में आतंकवाद से निपटने के भारत के तरीके में बदलाव आया है।
3: बीते एक दशक में बालाकोट की एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक भारत ने बार बार ये स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर आतंकवादी भारत पर आंख उठाएंगे तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। आतंकवादी हमलों ने भारत को लंबे समय तक चोट पहुंचाई है। पहले भी हर आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर कार्रवाई की मांग होती थी। अब आज का भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लेकर चल रहा है।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं। जनसेवा से देश सेवा के मंत्र के साथ उनकी ये यात्रा और सुशासन के प्रति निरंतर प्रतिबद्धता से जुड़ी रही है। इसी सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए ये प्रयास लोगों के जीवन में बदलाव ला रहे हैं। आज हमारी विशेष श्रृंखला में बताएंगे कि इस सोच को लोथल स्थित राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर जैसी दूरदर्शी पहल के जरिए किस तरह साकार किया जा रहा है।
4: गुजरात के लोथल में प्राचीन हड़प्पा कालीन डॉकयार्ड के पास आकार ले रहा राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर भारत के 4,500 वर्षों से अधिक पुराने समृद्ध समुद्री इतिहास को प्रदर्शित करने वाला देश का पहला राष्ट्रीय संस्थान बन रहा है। 1230 करोड़ से अधिक की लागत से निर्मित हो रहे इसके प्रथम चरण का कार्य तीव्र गति से जारी है। वही इसके तहत 266 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से एक लाइट हाउस संग्रहालय भी बनाया जा रहा है। लोथल की ऐतिहासिक धरोहर को सजीव करने और इसके तकनीकी स्वरूप पर प्रकाश डालते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा,
3: लोथल में ये जो हेरिटेज कॉम्प्लेक्स बन रहा है उसको ऐसे बनाया जा रहा है कि

0: सामान्य व्यक्ति भी इस इतिहास को आसानी से जान सके, इसमें अति आधुनिक तकनीक का प्रयोग करके बिल्कुल उसी युग को फिर से सजीव करने का प्रयास किया जा रहा है।
1: इस परियोजना के महत्व को रेखांकित करते हुए गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कहा,
2: मैरीटाइम हेरिटेज की बात है तो हमारे पास इस सेक्टर का 5000 वर्ष का लंबा इतिहास और लोथल इसका एक जीवंत प्रतीक है। प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से विश्व का सबसे बड़ा मैरीटाइम हेरिटेज म्यूजियम इस लोथल में बनाने जा रहे हैं।
1: प्राचीन विरासत और अत्याधुनिक तकनीक के अद्भुत संगम के साथ लोथल का यह राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर भारत के गौरवशाली नौवन इतिहास का एक भव्य प्रतीक बन रहा है। अपर्णा खूंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
3: आज से प्रस्तावित 3 दिन की देशव्यापी बैंक हड़ताल स्थगित हो गई है। ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन AIBEA ने इसकी पुष्टि की है। ये फैसला भारतीय बैंक संघ IBA के साथ हुए समझौते के बाद लिया गया। AIBEA ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि हड़ताल से जुड़े मुद्दों पर भारतीय बैंक संघ और यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के बीच हुई बैठक के बाद ये फैसला लिया गया। निर्वाचन आयोग ने दिल्ली में जारी विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के कार्यक्रम में संशोधन किया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि युवा मतदाताओं के पंजीकरण के लिए कल से 2 दिन तक दिल्ली के सभी कॉलेजों, विश्वविद्यालयों और अन्य शैक्षणिक संस्थानों में विशेष शिविरों का एक और चरण आयोजित किया जाएगा।
4: दिल्ली में विशेष गहन पुनरीक्षण SIR का काम जारी है। निर्वाचन आयोग की संशोधित समय सारिणी के अनुसार दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की अंतिम तारीख अगले महीने की 30 तारीख है। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अनुसार दावों और आपत्तियों के निपटारे की प्रक्रिया 30 नवंबर तक चलेगी और अंतिम मतदाता सूची अब 4 दिसंबर को प्रकाशित की जाएगी। इससे पहले दिल्ली के सभी मतदान केंद्रों पर फॉर्म 6 के जरिए नए मतदाताओं के पंजीकरण के लिए विशेष शिविर लगाए गए थे। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अनुसार युवा मतदाताओं के पंजीकरण के लिए कल और बुधवार को राजधानी के सभी कॉलेजों, विश्वविद्यालयों और अन्य शिक्षण संस्थानों में एक बार फिर विशेष शिविर लगाए जाएंगे। समर्थ की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विकास नापा।
3: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है।
5: आपका स्मार्टफोन हो या हेडफोन, अप्लायंसेस हो या कार, क्या वो रॉकेट जो आपके डिवाइस पे सैटेलाइट सिग्नल्स भेजता है? हर वो चीज जिसे पाने के लिए हम कभी दुनिया की तरफ देखते थे, आज खुद बनाते हैं और पूरी दुनिया तक पहुंचाते हैं। एक सोच से शुरू हुआ ये सफर और 12 साल में इंडिया की इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग 6 गुना बढ़ी, मोबाइल फोन्स 32 गुना और एक्सपोर्ट्स 84% बढ़ गए। मेक इन इंडिया ने इंडिया को ग्लोबल स्टेज पर दी एक मजबूत पहचान।
6: भारत ग्लोबल बिजनेसेस के लिए नए अवसरों का केंद्र बन रहा है, इसलिए मेक इन इंडिया, इनोवेट विद इंडिया, स्केल फॉर द वर्ल्ड।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने पर्यटन क्षेत्र के लिए राष्ट्रीय डिजिटल सार्वजनिक ढांचा तैयार करने की परियोजना शुरू की है। इसके अंतर्गत एक साझा डिजिटल मंच पर पर्यटन से जुड़ी विभिन्न सेवाओं और सुविधाओं तक पहुंच मिल सकेगी। मंत्रालय ने ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स ONDC के साथ मिलकर नेशनल डिजिटल टूरिज्म स्टैक तैयार करने की पहल की है। पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कल विश्व पर्यटन दिवस पर भारत मंडपम में आयोजित कार्यक्रम में इस परियोजना की शुरुआत की। पर्यटन सचिव भुवनेश कुमार ने कहा कि नेशनल डिजिटल टूरिज्म स्टैक की परिकल्पना एक टिकट एक पास की है, जिससे पूरे भारत को एक ही यात्रा अनुभव से जोड़ा जा सकेगा। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज नई दिल्ली में रबी अभियान 2026 के लिए 2 दिन के राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। सम्मेलन में आगामी रबी सीजन की तैयारियों और कृषि क्षेत्र की प्रमुख प्राथमिकताओं पर चर्चा होगी। मत्स्य पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह आज नई दिल्ली में पशुधन बीमा पोर्टल की शुरुआत करेंगे। इसे देश में पशुधन बीमा सेवाओं के डिजिटल रूपांतरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। मंत्रालय के अनुसार ये पोर्टल पशुधन बीमा के लिए एकीकृत डिजिटल मंच के रूप में काम करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समाजसेवी अशोक सिंघल को श्रद्धांजलि अर्पित की है। एक अंग्रेजी दैनिक में प्रकाशित लेख में श्री मोदी ने कहा कि अशोक सिंघल का जीवन इस विचार को दर्शाता है कि दूसरों के कल्याण के लिए काम करना व्यक्तिगत उपलब्धियों से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कल से राष्ट्र अशोक सिंघल की जन्मशती मना रहा है। उन्होंने कहा कि अशोक सिंघल ने सामाजिक

0: क्रांतिकारियों के परिवार में हुआ था। उन्होंने देश की आजादी के लिए खुद को कुर्बान करके अपने नाम को सार्थक किया। उनकी जयंती मनाने के लिए लुधियाना में पंजाब कृषि विश्वविद्यालय में जश्न इनकलाब नाम का एक राज्य स्तरीय सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। लोग उनके पैतृक गांव खटखट कला में इस महान सपूत को श्रद्धांजलि अर्पित करने पहुँच रहे हैं। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जलंधर।
1: मौसम विभाग ने आज उत्तराखंड, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार अगले दो दिनों के दौरान पूर्वोत्तर भारत के असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में बिजली चमकने के साथ आंधी और तेज हवाएं चल सकती हैं। आज हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, पुदुचेरी, काराईकल, आंध्र प्रदेश, बिहार, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, ओडिशा और तेलंगाना में भी आंधी और बिजली के साथ वर्षा होने की संभावना है। उत्तर प्रदेश में लगातार हो रही तेज बारिश से जनजीवन प्रभावित है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को बारिश और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य चलाने के निर्देश दिए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि खराब मौसम को देखते हुए कई जिलों में स्कूल और कॉलेज बंद करने के निर्देश दिए गए हैं।
2: सीतापुर में सबसे ज्यादा मौतें दर्ज की गई हैं। इसके बाद लखीमपुर खीरी, बहराइच, बलरामपुर, अयोध्या और गोरखपुर में भी लोगों की मौतें हुई हैं। लगभग 1020 घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं। घाघरा और राप्ती नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिससे निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। हालात को देखते हुए अधिकारियों को प्रभावित लोगों को तत्काल राहत और सहायता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। मौसम विभाग ने आज राज्य के पूर्वी और पश्चिमी जिलों के कई स्थानों पर गरज के साथ बारिश का पूर्वानुमान लगाया है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: और अब खेल खबरों के साथ हैं सिद्धार्थ सिंह।
3: तिरुवनंतपुरम में पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना ली है। 296 रन के लक्ष्य के जवाब में भारत ने 41 ओवर और 4 गेंद में 2 विकेट खोकर 300 रन बनाकर जीत हासिल की। विराट कोहली ने नाबाद 139 रन और कप्तान शुभमन गिल ने 110 रन बनाकर भारत की जीत में अहम भूमिका निभाई। ये विराट का एक दिवसीय क्रिकेट में 55वां शतक है। इसके साथ ही वो सचिन तेंदुलकर के बाद एक दिवसीय क्रिकेट में 15,000 रन पूरे करने वाले दूसरे बल्लेबाज बन गए हैं। भारत की ओर से कुलदीप यादव ने 4 विकेट लिए और उन्हें मैन ऑफ द मैच घोषित किया गया। अब बात एशियाई खेलों की। एशियाई खेलों के 9वें दिन आज पुरुष क्रिकेट के क्वार्टर फाइनल मुकाबले में वर्तमान चैंपियन भारत का सामना अफगानिस्तान से होगा। मैच भारतीय समय के अनुसार सुबह 10:30 बजे से खेला जाएगा। इसके अलावा मुक्केबाजी, एथलेटिक्स, निशानेबाजी और हॉकी में भी भारत अपनी चुनौती पेश करेगा। इससे पहले कल भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 4 रजत और 3 कांस्य सहित कुल 7 पदक जीते। पदक तालिका में भारत 4 स्वर्ण, 16 रजत और 17 कांस्य सहित कुल 37 पदक लेकर 12वें स्थान पर है।
1: आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में आयुष्मान भारत और हर नागरिक के लिए डिजिटल स्वास्थ्य सेवाएं विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के संयुक्त सचिव किरण गोपाल वास्का शामिल होंगे। कार्यक्रम के दौरान श्रोता स्टूडियो में विशेषज्ञों से विषय से संबंधित सवाल पूछ सकते हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
4: धन्यवाद विशाल। सर्जिकल स्ट्राइक के 10 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कड़ा संदेश हिंदुस्तान सहित कई अखबारों में है। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, सर्जिकल स्ट्राइक ने आतंक के खिलाफ भारत का संकल्प दर्शाया। आप शांति चाहते हैं तो युद्ध के लिए रहें तैयार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान दैनिक जागरण में है। रक्षा मंत्री ने एक कार्यक्रम में कहा, भारत किसी देश की भूमि नहीं मांगता और युद्ध भी नहीं चाहता, लेकिन किसी भी परिस्थिति में राष्ट्रीय सुरक्षा पर कभी समझौता नहीं करेगा। साबरमती स्टेशन से दौड़ी देश की पहली LNG ट्रेन, गृहमंत्री अमित शाह ने झंडी दिखाकर किया रवाना। अमर उजाला के अनुसार LNG आधारित दोहरे ईंधन वाली तकनीक अपनाने के साथ भारत चुनिंदा देशों में शामिल। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत को मिले स्थायी सीट, जर्मनी और जापान को नहीं। संयुक्त राष्ट्र महासभा में रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोफ के बयान को नवभारत टाइम्स ने प्रमुखता दी है। पंजाब की लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में एक छात्रा के साथ कथित दुष्कर्म की खबर के बाद तोड़फोड़ और आगजनी को अखबारों ने सचित्र दिया है। दैनिक ट्रिब्यून लिखता है, रात भर प्रदर्शन के बाद केस दर्ज, SIT गठित, यूनिवर्सिटी ने बताया अफवाह।
1: धन्यवाद मनोज। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।

0: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं कौनैन हैदर। पहले इस वक्त की खास खबरें। भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दों के ठिकानों पर किए गए सर्जिकल स्ट्राइक के 10 साल पूरे होने के मौके पर इसकी याद ताजा कर रहा है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि उसने दहशतगर्दी से निमटने की भारत की पॉलिसी की नई मिसाल का मुजाहरा किया है। बैंकों की मुजवजा 3 रोजा मुल्कगीर हड़ताल जो आज शुरू होना थी मुलतवी कर दी गई है। हुकूमत ने सियाहत के शोबे के लिए कौमी डिजिटल सरकारी बुनियादी ढांचा तामीर करने के प्रोजेक्ट का आगाज किया है। महकमे मौसमियात ने आज उत्तराखंड, जनूबी अंदरूनी कर्नाटक और अंडमान निकोबार जजायर में शदीद बारिश की पेशगोई की है। और तिरुवनंतपुरम में पहले ओडीआई में मर्दों के क्रिकेट में विराट कोहली और शुभमन गिल की सेंचुरी से भारत को वेस्टइंडीज पर 8 विकेट की कामयाबी में बड़ी मदद मिली है। अब खबरें तफसील से। भारत सर्जिकल स्ट्राइक्स की 10वीं सालगिरह मना रहा है, जिसने दुनिया के सामने नरेंद्र मोदी हुकूमत की दहशतगर्दी मुखालिफ पॉलिसी की एक नई मिसाल कायम की थी। 28-29 सितंबर 2016 को भारतीय फौज ने पाकिस्तान के जेर कब्जा जम्मू कश्मीर में कंट्रोल लाइन के पार दहशतगर्दों के लॉन्च पैड्स पर निशाना बनाकर सर्जिकल स्ट्राइक्स की थी। ये कार्रवाई इसी महीने के शुरू में उड़ी में होने वाले दहशतगर्दाना हमले का एक बराह रास्त और फैसला कुन फौजी जवाब थी, जिसमें 19 भारतीय जवानों ने अपनी जानें कुर्बान कर दी थीं। ये सालगिरह कौम की दिफाई तदाबीर में एक दहाई के इर्तका की अक्कासी करती है। गुज़श्ता रोज आकाशवाणी पर अपने मन की बात प्रोग्राम में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने दहशतगर्दों के ठिकानों के खिलाफ 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक्स को एक तारीखी संग मील करार दिया। उन्होंने कहा कि इस सर्जिकल स्ट्राइक ने कंट्रोल लाइन के पार कार्रवाई करने में भारतीय फौज के किरदार को उजागर किया।
1: बीते एक दशक में बालाकोट की एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक भारत ने बार बार ये स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर आतंकवादी भारत पर आंख उठाएंगे तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। आतंकवादी हमलों ने भारत को लंबे समय तक चोट पहुंचाई है। एक समय था जब भारत में सीरियल ब्लास्ट होना बहुत सामान्य बात हो गई थी। 26/11 का इतना बड़ा हमला हुआ था, पहले भी हर आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर कार्रवाई की मांग होती थी, लेकिन उस पर उतना ध्यान नहीं दिया जाता था। समय बीतने का इंतजार किया जाता था। अब आज का भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लेकर चल रहा है।
0: वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने सामाजिक कारकुन अशोक सिंघल को खिराज-ए-अकीदत पेश किया है। एक अंग्रेजी अखबार में अपने मजमून में जनाब मोदी ने कहा कि अशोक सिंघल की जिंदगी एक यादगार उसूल की अक्कास है। दूसरों की फलाह बहबूद की कोशिश फर्द की जाति कामयाबी से कहीं ज्यादा अहमियत हासिल कर लेती है। जनाब मोदी ने कहा कि हफ्ते के रोज से मुल्क ने अशोक सिंघल की सालगिरह की 7 साल तकरीबात का आगाज किया है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि अशोक सिंघल ने समाजी इत्तेहाद और मसावात को मजबूत बनाने के लिए काम किया। उन्होंने कहा कि अशोक सिंघल को फिक्री वजाहत की ऐसी नेमत हासिल थी कि मुआशरे में किसी भी किस्म का कोई फर्क नहीं होना चाहिए और हर फर्द मसावी इज्जत और एहतराम का मुस्तहिक है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि यह उनका एजाज था कि उन्हें अशोक सिंघल के साथ बातचीत करने के बेशुमार मौके मिले। बैंकों की मुजवजा 3 रोजा मुल्कगीर हड़ताल जो आज से शुरू होना थी मुलतवी कर दी गई है। इसकी तस्दीक बैंक मुलाजमीन की ऑल इंडिया एसोसिएशन AIBEA ने की है। यह फैसला

0: हड़ताल का मुजाहिरा किया है। बैंकों की मुजवजा 3 रोजा मुल्की हड़ताल जो आज शुरू होना थी मुलतवी कर दी गई है। हुकूमत ने सियाहत के शोबे के लिए कौमी डिजिटल सरकारी बुनियादी ढांचा तामीर करने के प्रोजेक्ट का आगाज किया है। महकमे मौसमियात ने आज उत्तराखंड, जनूबी अंदरूनी कर्नाटक और अंडमान निकोबार जजायर में शदीद बारिश की पेशगोई की है। और तिरुवनंतपुरम में पहले ODI में मर्दों के क्रिकेट में विराट कोहली और शुभमन गिल की सेंचुरी से भारत को वेस्टइंडीज पर 8 विकेट की कामयाबी में बड़ी मदद मिली है। इसके साथ ही ये खबरनामा खत्म हुआ।
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर प्रस्तुत है स्वर गंगा कार्यक्रम। इसमें आप सुनेंगे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत पंडित राजेश मिश्रा और पंडित गीतेश मिश्रा से युगल गायन। इसमें प्रस्तुत कर रहे हैं राग अलैया बिलावल।

हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे पंडित राजेश मिश्रा और पंडित गीतेश मिश्रा से युगल गायन, जिसमें आपने सुना राग अलहिया बिलावल। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। आइए सुनते हैं कार्यक्रम आवर गेस्ट।

लता मंगेशकर यक नामे खुदे मानी दर सरासरे तू लो अर्दे किश्वार शेबे गारे व दूर तरजान मी बाशा दर साले हजारों नसदो चहलो दो हंगामी के तनहा सीजदा थाल दाश्ते वारी दे जहाने सिनी माशूद। अव्वलीन फिल्म में लता मंगेशकर के दौरान वे नक्श राबाजी कर दे व आवाज हम खांदे मंगला गौर बेजबाने मराती बूर तराने हाइये इन फिल्म बेकूश अलागमंदाने मौसीगी रसीदे व इन तो लता मंगेशकर बा अव्वलीन फिल्म खुद शोहरत व मकबूलियत रा नसीब खुद साख्त। पसदान मौसीगी दाना ने सिनेमाई हिंदी नीज असीदाई लता मंगेशकर इस्तेफादे करतन अम्मा इन बार ऊ आवाज खानी रा बर हुनर पीशेगी तरजीह दादे जीरा लता सिदा ये मुतरन्निम व इश्तियाक बे मौसीकी रा बे मीरास बुरदेस लता मंगेश

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। भारत आज सर्जिकल स्ट्राइक की 10वीं वर्षगांठ मना रहा है। 28 और 29 सितंबर 2016 की रात सेना ने नियंत्रण रेखा के पार आतंकवादी ठिकानों पर लक्षित कार्रवाई की थी। 18 सितंबर को उरी आतंकी हमले के बाद ये कार्रवाई की गई थी। इसमें 18 जवान शहीद हुए थे। आकाशवाणी से कल मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2016 के सर्जिकल स्ट्राइक को एक महत्वपूर्ण पड़ाव बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले एक दशक में आतंकवाद से निपटने के भारत के तरीके में बदलाव आया है।
1: बीते एक दशक में बालाकोट की एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक भारत ने बार बार ये स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर आतंकवादी भारत पर आंख उठाएंगे तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। आतंकवादी हमलों ने भारत को लंबे समय तक चोट पहुंचाई है। पहले भी हर आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर कार्रवाई की मांग होती थी। अब आज का भारत आतंकवाद के खिलाफ

0: जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लेकर चल रहा है।
1: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक की 11वीं वार्षिक बैठक और निवेशक संवाद 2026 में भाग लेने के लिए कतर की राजधानी दोहा पहुंच गई हैं। इस वार्षिक बैठक में सदस्य प्रतिनिधिमंडल, नीति निर्माता और अन्य संबंधित पक्ष बैंक की रणनीतिक दिशा, संचालन प्राथमिकताओं और भविष्य के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने अमरीकी संसद की प्रतिनिधि सभा के विदेश मामलों की समिति के अध्यक्ष ब्रायन मास्ट के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल से मुलाकात की। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि बैठक में दोनों देशों के बीच व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी के विकास पर चर्चा हुई। इस दौरान रक्षा, औद्योगिक और तकनीकी सहयोग पर विशेष बल दिया गया। निर्वाचन आयोग ने दिल्ली में जारी मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के कार्यक्रम में संशोधन किया है। युवा मतदाताओं के पंजीकरण के लिए कल से 2 दिन तक दिल्ली के सभी कॉलेजों, विश्वविद्यालयों और अन्य शिक्षा संस्थानों में विशेष शिविरों का एक और चरण आयोजित किया जाएगा। सरकार ने पर्यटन क्षेत्र के लिए राष्ट्रीय डिजिटल सार्वजनिक ढांचा तैयार करने की परियोजना शुरू की है। इसके अंतर्गत एक साझा डिजिटल मंच पर पर्यटन से जुड़ी विभिन्न सेवाओं और सुविधा तक पहुंच मिल सकेगी। मंत्रालय ने ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स के साथ मिलकर पर्यटन से जुड़ी सेवाओं और जानकारी के लिए एक साझा डिजिटल व्यवस्था, नेशनल डिजिटल टूरिज्म स्टैक तैयार करने की पहल की है। मत्स्य, पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह आज नई दिल्ली में पशुधन बीमा पोर्टल की शुरुआत करेंगे। इसे देश में पशुधन बीमा सेवाओं के डिजिटल रूपांतरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। मंत्रालय के अनुसार ये पोर्टल पशुधन बीमा के लिए एकीकृत डिजिटल मंच के रूप में काम करेगा। देश आज शहीद आजम भगत सिंह की 119वीं जयंती मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शहीद भगत सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में रक्षा मंत्री ने कहा कि भगत सिंह ने कम उम्र में ही मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उज्बेकिस्तान के समरकंद में आयोजित 46वें शतरंज ओलंपियाड में नोना गाप्रदाश्वली ट्रॉफी जीतने पर भारतीय शतरंज खिलाड़ियों को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने खिलाड़ियों के जुनून और दृढ़ संकल्प की सराहना की। जापान में आयोजित एशियाई खेलो 2026 में भारत की ईशा सिंह ने आज आईची नागोया में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल व्यक्तिगत स्पर्धा में रजत पदक जीता। वहीं भारतीय एथलीट पिंकी बलहारा ने आईची नागोया में महिलाओं के अंडर 78 किलोग्राम कुराश स्पर्धा में कांस्य पदक हासिल किया। उन्होंने क्वार्टर फाइनल में दक्षिण कोरिया की लिम गरम को हराया। वहीं भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम सेमीफाइनल में पहुंच गई है। भारत और अफगानिस्तान के बीच क्वार्टर फाइनल मुकाबला खराब मौसम के कारण रद्द कर दिया गया था। गत चैंपियन भारत को ICC T20 रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर होने के कारण सेमीफाइनल में जगह मिली है। सेमीफाइनल का मुकाबला भारत और नेपाल, कृपया दोबारा सुने, सेमीफाइनल में भारत का सामना नेपाल और श्रीलंका के बीच होने वाले क्वार्टर फाइनल के विजेता से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. Prime Minister Narendra Modi today urged countrymen to make sure to set aside time for the census. Recalling the appeal from yesterday's Man Ki Baat address, Mr. Modi said, participating in the census is a national duty for all citizens. He added that the participation helps in creating an accurate picture of the country's future. Union Finance Minister Nirmala Sitharaman has reached Doha in Qatar to participate in the 11th annual meeting of the Asian Infrastructure Investment Bank, AIIB, and the AIIB Investors Dialogue 2026. The annual meeting will bring together member delegations, policymakers, and other stakeholders from around the world to discuss the AIIB's strategic direction, operational priorities, and future agenda. Defense Secretary Rajesh Kumar Singh met with the bipartisan

आते हैं इस प्रेरक विचार के साथ, इस कदर वाकिफ है मेरी कलम मेरे जज्बातों से कि अगर मैं इश्क लिखना चाहूँ तो इंकलाब लिख जाता है। ये विचार हैं महान क्रांतिकारी शहीद आज़म सरदार भगत सिंह के, एक ऐसा नाम जिसने देश की आज़ादी के लिए अपना जीवन हंसते हंसते न्यौछावर कर दिया। उनकी निर्भीकता, विचार और देश प्रेम आज भी युवाओं को प्रेरणा देते हैं। आज उनकी जयंती भी है तो हम उन्हें शत शत नमन करते हैं। साथ ही साथ आज जयंती है आवाज़ की दुनिया की जादूगरनी स्वर साम्राज्ञी कोकिला लता मंगेशकर की। उनकी आवाज़ सिर्फ गीत नहीं, भावनाओं की एक पूरी दुनिया थी। उनकी सुरीली आवाज़ ने कई पीढ़ियों को प्रेम विरह खुशी और देशभक्ति के रंगों से जोड़ा। उनके योगदान के लिए उन्हें भारत रत्न पद्म विभूषण दादा साहब फाल्के पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। तो लता जी की जयंती पर आज हमारी पूरी टीम की तरफ से उन्हें सादर नमन विनम्र श्रद्धांजलि।

स्वच्छता के बारे में कुछ बात कर लेते हैं, क्योंकि अगर हम अच्छे काम करते हैं तो हमारा नाम हमेशा जीवित रहता है और हम याद किए जाते हैं। तो स्वच्छ रहें, सुंदर बने, अपना देश महान, स्वच्छता ही सेवा बने जन जन का अभियान। जी हाँ दोस्तों, स्वच्छता केवल सफाई कर्मियों की जिम्मेदारी नहीं होती है, हम सबकी रोजमर्रा की आदत भी होनी चाहिए। इसलिए इस अभियान से जुड़े रहकर अपने हिस्से की जो साफ सफाई है वो हमें भी करनी चाहिए, और साथ ही जो हमारे आसपास के लोग हैं उनको भी हमें समय समय पर जागरूक करते रहना है। और साथियों, आज के दिन यानी 28 सितंबर को विश्व रैबीज दिवस भी मनाया जाता है, जो घर के किसी पालतू पशु या किसी संक्रमित जानवर के काटने पर लापरवाही करने से ये समस्या जो है वो हो जाती है। तो इससे आपको जागरूक करने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। तो अगर कभी आपके साथ ऐसी दुर्घटना होती है तो घाव को तुरंत साबुन और पानी से धोएं और समय पर चिकित्सकीय सलाह लें। और साथ ही आपको करना क्या है कि भाई, सलाह लेने के बाद आपको टीकाकरण भी करवाना है, क्योंकि जो जागरूकता है वही रेबीज से बचाव की पहली सीढ़ी है। साथ ही दोस्तों, इसी दिन सूचना तथा सार्वभौमिक पहुंच का अंतर्राष्ट्रीय दिवस भी मनाया जाता है, जो हमें ये याद दिलाता है कि सही और भरोसेमंद जानकारी हर व्यक्ति तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सही सूचना जो है ना वो कई बार सही फैसला लेने में मदद करती है। आप सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, और खूबसूरत सा जो मौसम है उसका आनंद लेते रहें, खूबसूरत से जीवन का आनंद लेते रहें, और साथ में गुनगुनाते रहें ये प्यारा सा गीत।

दोस्तों, ये प्यारा सा गीत आप अभी सुन रहे थे किनारा फिल्म से लता मंगेशकर और भूपेंद्र की आवाज़ में। और आइए अब बात करते हैं कि

श्रोताओं, ये प्यारा सा गीत अभी आप सुन रहे थे मेला फिल्म से, जिसे गाया लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी साहब ने। दोस्तों देखिए, पितृ पक्ष आरंभ हो गए हैं और श्राद्ध नाम सुनते ही मन में तर्पण, पिंडदान और पूजा पाठ की तस्वीर उभरती है। लेकिन क्या आपको भी यही लगता है कि श्राद्ध सिर्फ कर्मकांड है? तो मेरी बात ध्यान से सुनिए। दरअसल श्राद्ध का एक गहरा अर्थ है अपने पूर्वजों के प्रति श्रद्धा और कृतज्ञता व्यक्त करना, जिन्होंने हमें जीवन दिया, संस्कार दिए, परिवार और समाज को आगे बढ़ाने की नींव रखी, उन्हें याद करने का ये अवसर है। आज की तेज रफ्तार जिंदगी में शायद हम अपने बुजुर्गों की कही बातें भी भूल जाते हैं। श्राद्ध हमें ठहर कर ये सोचने का मौका देता है कि हम अपने पूर्वजों से क्या लेकर आए और आने वाली पीढ़ी को क्या सौंप रहे हैं। इसलिए श्राद्ध केवल किसी एक दिन का कर्मकांड नहीं, बल्कि अपनी जड़ों से जुड़ने और कृतज्ञ होना सीखने की परंपरा भी है। और शायद सच्ची श्रद्धांजलि यही है कि अपने पूर्वजों को याद करने के साथ उनके अच्छे संस्कारों को अपने व्यवहार और जीवन में भी हम जीवित रखें, साथ ही साथ उन्हें भावी पीढ़ी तक भी पहुंचाते रहें। और वो जहां भी रहें, हमारे पूर्वज जहां भी हैं, उन्हें हम ये महसूस कराते रहें कि भाई, तुमसे दूर रह के भी हमें तुम्हारा प्यार, तुम्हारा व्यवहार याद आता है, हमें तुम्हारी याद आती है।

तुमसे दूर रह के मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ में आप ये खूबसूरत सा गीत सुन रहे थे दोस्तों, अदालत फिल्म से। और देखिए, कुछ लोगों से दूर रह के तो हमें पता चलता ही है कि भाई वो हमारे लिए कितने ख़ास हैं, लेकिन कई बार कुछ लोगों के साथ रह के, उनके पास रह के भी हमें ये पता चलता है कि भाई वो हमारे लिए कितने ख़ास हैं। तो चलिए आपको इसी बात पे एक कविता सुनाती हूँ कि मैंने देखा अपनी माँ को, चाची को, सुबह सवेरे चुपचाप उठती हुई, धूप दीप से घर को महकाती हुई, रसोई से उठती तरह तरह की महक और अपने हाथों के जायके से सबकी थालियों में प्यार परोसती हुई। न कोई इत्र, न ज्यादा साज श्रृंगार, बस अपनी सादगी में मुस्कुराती हुई। लेकिन महसूस किया, आंका जाता है उन्हें अक्सर कामकाजी स्त्रियों से कम, जबकि वो एक दिन भी थक कर बैठ जाएं तो थम जाता है पूरे घर का जीवन। ये सब देखकर मैं मुस्कराई और एक बात मुझे समझ आई कि वैसे तो सभी स्त्रियां अपने आप में बेहतरीन हैं और ख़ास हैं, लेकिन घर संभालती हुई स्त्रियां भी बहुत अलग होती हैं और उनमें भी कुछ बात है। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि ना तो किसी को कम आंकना है और ना ही किसी को ज़्यादा आंकना है, क्योंकि हर पीढ़ी की जो महिलाएं हैं वो अपनी अपनी पीढ़ी के हिसाब से अपना सर्वश्रेष्ठ कर रही हैं, चाहे वो बाहर निकलकर काम करने वाली महिलाएं हों या फिर घर पर रहकर परिवार संभालने वाली महिलाएं।

श्रोताओं, पिया का घर फिल्म से आप ये प्यारा सा गीत सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज़ में। और देखिए, जो सितंबर माह है उसको पोषण का महीना भी कहा जाता है, और साथ ही कुपोषण से जो लड़ाई है वो सिर्फ सरकार की नहीं बल्कि पूरे समाज की साझी जिम्मेदारी है। पोषण की कुछ प्रेरक कहानियाँ माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने मन की बात कार्यक्रम में भी कही हैं, जो इसी सोच को मजबूत कर रही हैं। देश के अलग अलग हिस्सों से सामने आ रही कहानियों में पहली कहानी है छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ का हर घर मुनगा अभियान लोगों को पोषक मुनगा यानी कि मोरिंगा को अपने खान पान में शामिल करने के लिए प्रेरित कर रहा है। वहीं मिजोरम में लोगों ने मिलकर पोषण वाटिकाओं की देखभाल का अभियान शुरू किया है, जो वहां की तलो मुड़यना यानी निस्वार्थ सेवा की परंपरा से जुड़ा है। और तकनीक भी इस लड़ाई में साथी बन रही है। पोषण ट्रैकर के जरिए आंगनबाड़ी सेवाओं से जुड़कर बच्चों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली जो माताएं हैं उनकी बेहतर देखभाल को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। गुजरात में भी वांगी स्पर्धा यानी मिलेट से बने व्यंजन की प्रतियोगिता शुरू की है, जिसके माध्यम से सस्ता और पौष्टिक भोजन हर घर हर थाली तक पहुंच रहा है। इसके साथ ही महाराष्ट्र में भी शिक्षक, आंगनबाड़ी केंद्र के लोग और माता पिता भी इस अभियान से जुड़ रहे हैं। यानी कि संदेश जो है वो बहुत साफ है कि भाई कुपोषण के खिलाफ जो लड़ाई है वो हाली से शुरू होती है और समाज की साझी भागीदारी से भी। तो आइए पोषण को सिर्फ एक महीने का अभियान नहीं बल्कि हर घर की रोजमर्रा की आदत बनाएं, क्योंकि जब आप स्वस्थ होंगे, आपका शरीर स्वस्थ होगा, तो कोई भी खराब मौसम, कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी बीमारी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, चाहे हवाएं कितनी भी ठंडी क्यों ना चल रही हों।

श्रोताओं, हाथी मेरे साथी फिल्म से लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ में ये प्यारा सा खूबसूरत सा गीत आप सुन रहे थे। और देखिए, स्वास्थ्य की बात चल रही है, पोषण का जिक्र हुआ है, तो एक बात आपसे पूछती हूँ कि भई ये बताइए, क्या आपको लगता है कि सर्दी, ज़ुकाम, वायरल बुखार या गले में खराश हुई तो एंटीबायोटिक ले लेना चाहिए? अगर हाँ तो ज़रा सा रुकिए, ठहरिए ठहरिए, क्योंकि भाई एंटीबायोटिक जो है वो हर बीमारी की दवा नहीं है। ये दवाएं ख़ास तौर पर बैक्टीरिया से होने वाले कुछ जो संक्रमण हैं उनके इलाज के लिए उपयोगी होती हैं। वायरल संक्रमण जैसे कि सामान्य सर्दी, ज़ुकाम या फ्लू में एंटीबायोटिक आमतौर पर काम नहीं करती। बिना डॉक्टर की सलाह एंटीबायोटिक लेना या बीच में ही दवा छोड़ देना नुकसानदेह हो सकता है। इससे शरीर में ऐसे बैक्टीरिया विकसित हो सकते हैं जिन पर जो दवाइयाँ हैं ना वो असर करना बंद कर देती हैं। इसे एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस कहते हैं। इसलिए हर बीमारी में खुद से एंटीबायोटिक लेने के बजाय डॉक्टर की सलाह लें, और जितनी अवधि तथा जितनी मात्रा में आपको बताई जाए ना उतनी ही दवा लें। याद रखिए, सही बीमारी के लिए सही दवा ही समझदारी है।

दोस्तों, आपकी नज़र में समृद्धि क्या है? क्या सिर्फ बड़ा घर, महंगी गाड़ी और बैंक बैलेंस का नाम है? तो ज़रा रुकिए और सोचिए। अगर घर बड़ा है लेकिन उसमें साथ बैठकर बात करने का समय नहीं है, बैंक बैलेंस अच्छा है लेकिन स्वास्थ्य और सुकून नहीं है, तो क्या इसे पूरी समृद्धि कहेंगे? दरअसल समृद्धि का सच्चा मापदंड हमारी चीज़ों की संख्या नहीं, बल्कि हमारे जीवन की गुणवत्ता है। जहाँ परिवार में अपनापन हो, शरीर स्वस्थ हो, मन शांत हो, जरूरतमंद के लिए मदद का हाथ हो और अपनी मेहनत से कमाई रोटी में संतोष हो, वहीं असली समृद्धि है। क्योंकि पैसा सुविधाएं खरीद सकता है, लेकिन विश्वास, रिश्ते, मान सम्मान और मन का जो सुकून है ना, वो कभी नहीं खरीद सकता। इसलिए कभी जो आपकी समृद्धि है उसे गिने तो सिर्फ ये मत देखिएगा कि आपके पास क्या क्या है, बल्कि ये भी देखिए कि आपके पास अपने कितने लोग हैं जिन्हें आपके व्यवहार से, आपकी बातों से और आपकी खुशी में खुशी मिलती है। क्योंकि असली दौलत तो यही है। और देखो ना, किसी ने कहा है कि भाई, तेरी दौलत रह जाएगी तेरे घर चौबारों तक, मेरी बातें सैर करेंगी सूरज चांद सितारों तक। तो कहने की बात यह है कि भाई, अपना व्यवहार ऐसा रखिए कि भाई, अगर कोई आपसे मिले तो आपसे मिलके बस वो एक यही बात कहे।

श्रोताओं, परिंदा फिल्म से अभी आप ये प्यारा सा गीत सुन रहे थे आशा भोसले और सुरेश वाडेकर की आवाज़ में। और सुनिएगा कि भई हाथों में कलम के साथ मुझे चूड़ियों की खनक भी पसंद है। बात कर रही हूँ अपनी महिलाओं की, अपनी बहनों की, कि हाथों में कलम के साथ मुझे चूड़ियों की खनक भी पसंद है, आगे बढ़ते कदमों में पायल की छनक भी पसंद है, माथे पर पड़ती शिकन के बीच बिंदी मुझे बहुत भाती है और आंचल पसंद है, आंखों में बड़े बड़े सपनों के साथ ही मुझे काजल पसंद है, इस भागदौड़ भरी जिंदगी में कुछ पल ठहरना पसंद है, खुद को देखना, महसूस करना और संवरना पसंद है। अब संवरने की बात दोस्तों इसलिए कि भाई जब हम संवरती हैं तो हम कॉन्फिडेंस में रहती हैं, हमारा आत्मविश्वास भी बढ़ता है और साथ ही साथ होता क्या है कि हमारे व्यक्तित्व में भी चार चांद लग जाते हैं।

श्रोताओं, ये प्यारा सा गीत आप सुन रहे थे लम्हे फिल्म से लता मंगेशकर की आवाज़ में। और देखिए, मौसम का जो मिजाज है वो आजकल थोड़ा सा बदला बदला है, तो आप भी अपना और अपने घर के बच्चों का, बुज़ुर्गों का रखिए खास ध्यान। और साथ ही आइए अब सुनते हैं घर आंगन कार्यक्रम की आज की ये अंतिम प्रस्तुति, ये प्यारा सा गीत दो रास्ते फिल्म से, जिसे गाया है लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी साहब ने। और इस गीत के साथ ही, इस गीत को आप सुनते रहिए और इसके साथ ही मुझे यानी अपनी रेडियो सखी कल्पना त्रिवेदी को दीजिएगा अनुमति। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। भारत आज सर्जिकल स्ट्राइक की 10वीं वर्षगांठ मना रहा है। 28 और 29 सितंबर 2016 की रात सेना ने नियंत्रण रेखा के पार आतंकवादी ठिकानों पर लक्षित कार्रवाई की थी। 18 सितंबर को उरी आतंकी हमले के बाद ये कार्रवाई की गई थी। इसमें 18 जवान शहीद हुए थे। आकाशवाणी से कल मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2016 के सर्जिकल स्ट्राइक को एक महत्वपूर्ण पड़ाव बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले एक दशक में आतंकवाद से निपटने के भारत के तरीके में बदलाव आया है।
1: बीते एक दशक में बालाकोट की एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक भारत ने बार बार ये स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर आतंकवादी भारत पर आंख उठाएंगे तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। आतंकवादी हमलों ने भारत को लंबे समय तक चोट पहुंचाई है। पहले भी हर आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर कार्रवाई की मांग होती थी। अब आज का भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लेकर चल रहा है।
0: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक की 11वीं वार्षिक बैठक और निवेशक संवाद 2026 में भाग लेने के लिए कतर की राजधानी दोहा पहुंच गई हैं। इस वार्षिक बैठक में सदस्य प्रतिनिधिमंडल, नीति निर्माता और अन्य संबंधित पक्ष बैंक की रणनीतिक दिशा, संचालन प्राथमिकताओं और भविष्य के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने अमरीकी संसद की प्रतिनिधि सभा के विदेश मामलों की समिति के अध्यक्ष ब्रायन मास्ट के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल से मुलाकात की। रक्षा

मंत्रालय ने बताया कि बैठक में दोनों देशों के बीच व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी के विकास पर चर्चा हुई। इस दौरान रक्षा, औद्योगिक और तकनीकी सहयोग पर विशेष बल दिया गया। श्रम और रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने आज कहा कि देश में 100 करोड़ से अधिक लोगों को सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिल रहा है। इसमें 60 करोड़ से अधिक नागरिकों के लिए 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, 25 करोड़ लोगों के लिए कर्मचारी राज्य बीमा निगम स्वास्थ्य सुरक्षा, 80 करोड़ से अधिक लोगों को मुफ्त अनाज और किसानों तथा महिलाओं को वित्तीय सहायता शामिल है। वे नई दिल्ली में आयोजित औद्योगिक संबंध और श्रम तथा पुरस्कार संबंधी राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। मत्स्य पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह आज नई दिल्ली में पशुधन बीमा पोर्टल की शुरुआत करेंगे। इसे देश में पशुधन बीमा सेवाओं के डिजिटल रूपांतरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में चलती बस में एक नाबालिग के साथ हुए कथित सामूहिक दुष्कर्म का आज स्वतः संज्ञान लेते हुए कहा कि ऐसे मामले कानूनी व्यवस्था की विफलता को उजागर करते हैं। न्यायालय ने कहा कि अपर्याप्त रोशनी, खराब निगरानी और अन्य आवश्यक प्रशासनिक सुविधाओं के अभाव के कारण सार्वजनिक स्थानों को उच्च जोखिम वाले क्षेत्र बनने नहीं दिया जा सकता। सर्वोच्च न्यायालय ने 2000 रुपए से अधिक के लेनदेन पर व्यक्ति से व्यापारी यूपीआई पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट एमडीआर लगाने के केंद्र के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। ये शुल्क अगले महीने की 15 तारीख से लागू होना है। 2000 रुपए से अधिक के यूपीआई भुगतान पर एमडीआर लगाने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने कहा कि ये मामला कानूनी से अधिक तकनीकी है। जापान में एशियाई खेलों में भारत की ईशा सिंह ने महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल व्यक्तिगत स्पर्धा में रजत पदक जीत लिया है। वहीं भारतीय एथलीट पिंकी बलहारा ने महिलाओं के अंडर 78 किलोग्राम कुराश स्पर्धा में कांस्य पदक हासिल किया। महिला मुक्केबाजी में लवलीना बोरगोहाइन ने 75 किलोग्राम भार वर्ग के क्वार्टर फाइनल में दक्षिण कोरिया की सियांग सियोन को हराकर पदक पक्का कर लिया है। उधर भारतीय क्रिकेट टीम भी सेमीफाइनल में पहुंच गई है। एशियाई खेलों में भारत 4 स्वर्ण सहित कुल 39 पदकों के साथ तालिका में 12वें स्थान पर है। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक आज दोपहर के कारोबार में लगभग 1.3% की गिरावट के साथ कारोबार कर रहा था। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 945 अंक गिरकर 72,952 पर और निफ्टी 299 अंक लुढ़क कर 22,842 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

करना है आपको, एक छोटा सा संदेश लिख के भेजना है। मेल आईडी है ipradiodelhi@gmail.com। और आपको बता दूं कि आज प्रोग्राम एक ही फिल्म लेकर हाजिर हूं, मैं आपकी दोस्त एंड होस्ट अंजू पांडे। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत करती हूं।

तो आज हम चुनकर लेकर आए हैं 1966 में रिलीज हुई एक बहुत ही बेहतरीन, दिल को छू लेने वाली फिल्म ममता, जिसका निर्देशन किया था असित सेन ने और निर्माता थे चारू चित्र। कहानी प्रसिद्ध लेखक निहार रंजन गुप्ता की थी और संवाद कृष्णचंदर ने लिखे थे। फिल्म में सुचित्रा सेन ने दोहरी भूमिका यानी कि डबल रोल निभाया था, देवयानी और पन्नाबाई।

और सुपर्णा। उनके साथ अशोक कुमार ने मोनिश रॉय और धर्मेंद्र ने बैरिस्टर इंद्रनील का किरदार निभाया था। बंगाली सिनेमा से बॉलीवुड का सफर, ये एक खूबी थी इस फिल्म में नजर आती है। ममता प्रसिद्ध बंगाली फिल्म उत्तर फाल्गुनी, जो कि 1963 में रिलीज हुई थी, इसकी हिंदी रीमेक थी। बंगाली फिल्म का निर्देशन भी महान निर्देशक अतीश सेन ने ही किया था, और जब उन्होंने इसे हिंदी में बनाया तो ये फिल्म भारतीय सिनेमा के इतिहास में दर्ज हो गई। ममता 1966 में रिलीज हुई थी और उस वक्त की ये सुपरहिट फिल्म रही थी।

फिल्म ममता। इस फिल्म का जो असली दिल है जानती है वो कौन था? सुचित्रा सेन। उन्होंने फिल्म में माँ देवयानी और पन्नाबाई का और वहीं बेटी सुपर्णा की दोहरी भूमिका निभाई थी। एक वैश्या के घर में फंसी माँ जो अपनी बेटी को एक सम्राट समाज में बड़ा करने के लिए अपनी पहचान छुपा लेती है। सुचित्रा सेन की अदाकारी इतनी ज्यादा प्रभावशाली थी कि देखने वाले दंग रह गए थे। उनके साथ हीरो की भूमिका में थे दृश्य हैंडसम से धर्मेंद्र जो कि वेरिस्टर मनीष रॉय के किरदार में थे, वहीं अशोक कुमार जो कि जासूसी एक वकील की भूमिका उन्होंने निभाई थी। धर्मेंद्र और सुचित्रा सेन की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री ने दर्शकों का दिल जीत लिया था। एक और देवयानी जिसके जीवन में संघर्ष है, त्याग है और अपनी बेटी के लिए अथाह प्रेम है। दूसरी ओर सुपर्णा, नई पीढ़ी की युवती जिसके जीवन की परिस्थितियां उसकी माँ के अतीत से जुड़ी हुई हैं। सुचित्रा सेन ने इन दोनों चित्र

रुतुचर्य जो कैरेक्टर थे, इनके बीच भावनात्मक अंतर को अपने अभिनय से उभारा था। फिल्म की कहानी भी इसी वजह से और अधिक प्रभावशाली बनती है। ममता को अगर इसका संगीत ना मिलता तो शायद ये फिल्म अधूरी रह जाती। संगीतकार रोशन जी का संगीत और मजरूर सुल्तानपुरी साहब के बोल, लता मंगेशकर की आवाज, रहे ना रहे हम महका करेंगे, आज भी हर किसी के दिल को छू जाते हैं। लता जी और मोहम्मद रफी साहब का गाना छुपा लो यूं दिल में प्यार अपना, ये गजल और सुगम संगीत इन दोनों का बेजोड़ संगम है। वहीं हेमंत कुमार की आवाज़ में ही छुपा लो यूं दिल को प्यार अपना, जो उन्होंने गाया एक सोलो वर्जन, वो भी बहुत लोकप्रिय हुआ था। चलिए सुनते हैं, रहे रहते थे कभी जिनके दिल में, लता जी की आवाज़ में।

जी हाँ, ममता की खूबसूरती सिर्फ इसकी कहानी में नहीं बल्कि इसे संगीत में भी है। संगीतकार रोशन ने फिल्म के भावों को बहुत खूबसूरती से सुरों में ढाला और मजरू सुल्तानपुरी की शायरी ने उन भावों को शब्द दिए।

आप सुन रहे हैं प्रोग्राम एक ही फिल्म से और आज आपके साथ मैं हूं आपकी दोस्त एंड होस्ट अंजू पांडे और आज आपके लिए चुन कर लेकर आई हूं 1966 की सुपरहिट फिल्म ममता। ये फिल्म 1966 की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से एक रही। इसे 14वें फिल्म फेयर अवार्ड्स में कई नॉमिनेशंस मिले थे जिसमें सुचित्रा सेन को बेस्ट एक्ट्रेस नॉमिनेशन भी मिला था।

फिल्म का सबसे बड़ा भाव था एक माँ का त्याग। देवयानी की जिंदगी हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि एक माँ अपने बच्चे के लिए किस हद तक अपने सुख, अपनी इच्छाओं और अपने जीवन को पीछे रख सकती है। इसीलिए ममता का शीर्षक कहानी से पूरी तरह जुड़ जाता है। ये सिर्फ प्रेम कहानी नहीं है, ये सामाजिक परिस्थितियों, स्त्री के संघर्ष, रिश्तों की मजबूरियों और माँ के त्याग की कहानी है। तो ये थी फिल्म ममता। लेकिन ममता की कहानी शायद यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि जब तक दुनिया में माँ और बच्चे का रिश्ता है, जब तक प्रेम में त्याग है और जब तक पुरानी फिल्मों के गीत दिल को छूते रहेंगे, तब तक ममता जैसी फिल्में हमारे बीच जीवित रहेंगी। आपकी ढेर सारे संदेश भी हम तक पहुंच रहे हैं और वक्त हो रहा है कि हम उन संदेशों को भी शामिल कर लें। लेकिन हाँ, हम आपको बता दें कि आज स्वर्ण कोकिला लता जी की का जन्मदिन है और इस फिल्म में भी उन्हीं के गाए गीत हैं। उनके ऊपर एक खास कार्यक्रम भी आप सुनेंगे एक ही कलाकार में 2:30 पर। फिलहाल एक खूबसूरत सा गीत लता जी की आवाज में और उसके बाद आपके संदेश आप तक पहुँचाएंगे।

आपके संदेश हम तक पहुंच गए हैं। फरुख नगर हरियाणा से जुड़े हुए हैं हमारे साथ दिलीप भल्ला, शिवम वाजपेयी, सुरेश शर्मा, धर्मवीर जी, राजेंद्र शर्मा जी। अगला जो संदेश हम तक पहुंचा है वो तेलंगाना निजामाबाद से शेख अल्लाह बख्श, बेगम राबिया शेख और शेख रहीम मुन्ना जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ये संदेश है हमारे पास सैयद मसरूर शाइना हसन सहारनपुर से ये जुड़े हुए हैं, और सुरेश गंगनेजा पूनम जी ये जलालाबाद वेस्ट से हमें सुन रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जीत भाप सर जी, प्रमिला जी के साथ वीरंगाव जंक्शन से गुजरात से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। गांव फरासी जिला हिसार से राजकुमार डूंडी सौरभ जी हमारे साथ हैं। डीवी राणा नेहरू बिहार दिल्ली से हमें सुन रहे हैं। सुनील पाठक जी अनारकली बाजार जगराव पंजाब से, कमल पाठक गाविया मल्होत्रा के साथ हैं। अगला संदेश हमारे पास देवशंकर तामुरी अजय देव तुषार देव डोनी लोहारा बालो छत्तीसगढ़ से आया है। पिपरिया से कमलकांत गुप्ता दीपा रिमझिम गुप्ता जी हमें सुन रहे हैं। समरपुर काकेट से फागुन राम यादव ज्योति ओजस्वी हमारे साथ हैं। हीरामणि वर्मा दतरेंगी भाटापारा से हमारे साथ हैं। गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर सिंह तेजस्वी जस्सी सीता और गीता हैं। वटिंगेड़ा पंजाब से मिंचू टॉमस पिंकी लवली आरती अरोड़ा हमें सुन रहे हैं। संदीप मक्कर जी हमारे साथ जालंधर से जुड़े हुए हैं। पहाड़गंज मुल्तानी ढाना से निर्मोहन उषामोहन चिल्लू नायक मधु नायक जी हमारे साथ हैं। पोचियल कला दुर्ग से संजय कुमार साहू जी हैं। ऊपरकोट मोहल्ला चौकुंडी बुलंदशहर से मोहम्मद सैद अब्बासी निगत परवीन शहनवाज सरफराज फरदीन और परिवार के सभी सदस्य से जुड़े हुए हैं। संदीप मक्कर ज्योति मन्नत जी हमारे साथ जालंधर से जुड़े हुए हैं, और ये संदेश ग्राम ममना जिला हमीरपुर बुंदेलखंड से आया हुआ है। भेजने वाले हैं रामशरण विश्वकर्मा, साहिल और प्रियल। अगला संदेश किसका है? छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश वर्मा प्रिंस निखिल जी हमारे साथ हैं। भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिपा कपिल ईशान पूजा हमें सुन रहे हैं। सुधाकर राजे प्रशांत जी और पूरा परिवार देशमुख परिवार जो है वो हमारे साथ सुंदरनगर जालना शहर से जुड़ा हुआ है। बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन कौशल्या हेमलता और डिम्पल जी हमारे साथ हैं, और ये संदेश गांव फरासी जिला हिसार से राजकुमार डूंडी प्रमोद कुमार डूंडी का है। सुदर्शन मुखी अनीता मुखी सिमरन जी शांतिनगर सोनीपत से हमें सुन रहे हैं। कस्बा गुन्नौर यूपी से फारूक अली खान फैजी फराज और फरहीन जी हमारे साथ हैं। अगला संदेश हमारे पास कुछ और भी संदेश आए हैं उनको भी हम शामिल कर रहे हैं। फिलहाल ये एक और खूबसूरत सा गीत है लता जी की आवाज़ में।

यवतमाल विदर्भ महाराष्ट्र से संतोष खड़ से विनोद जी हमारे साथ हैं, प्रवीण कुमार शर्मा सूर्यनगर गाजियाबाद से हमें सुन रहे हैं, खेल बाजार पानीपत से नरेश मल्होत्रा, नीटू लक्ष्य मल्होत्रा, लाडो कोयल जी हमारे साथ हैं, नरवेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से पीएस नोहानकर निर्मला विशाल जी हैं, पीटीआई संसद मार्ग से अनिल मोहन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, शिवा गोप प्रेम गोप कपिल जी पश्चिम सिंहभूम चाईबासा झारखंड से हमें सुन रहे हैं। अगला संदेश गुरमीत सिंह मीता जी का साउथ एक्सटेंशन दिल्ली से आया हुआ है और ये संदेश बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशन लाल देवानगन कौशल्या और हेमलता जी का है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं हमारे इस सफर में हम सफर बनने के लिए। 2:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम एक ही कलाकार, जिसमें आज स्वर कोकिला लता जी के गीत और उनके बारे में जानकारी देने के लिए आपके साथ हमारी अगली जो आरजे हैं वो रहेंगी और 3:00 प्रोग्राम रहेगा मैचिनी मेलेडी, जिसमें मैं आपके साथ रहूंगी। तो तब तक के लिए मुझे यानी अपनी दोस्त एंड होस्ट अंजू पांडे को अनुमति दीजिए। नमस्कार।

0: श्रोता, हम आपको बता दें कि आज मैटिनी मेलोडीज में आपसे हम एक सवाल पूछेंगे, तो तैयार रहिएगा, 3 बजे फिर मुलाकात होगी। विजेता जी आपके साथ जुड़ेंगी 2:30 पर। फिलहाल वक्त हो गया है, आप कुछ ही देर में आप सुनेंगे समाचार आकाशवाणी के इंद्रप्रस्थ चैनल से आप जुड़े हुए हैं।
1: ओके,
2: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। खबरां दे इस बुलेटिन दे नाल मैं यादविंदर सिंह। पहला सुनो बुलेटिन दियां खास खबरां। सुप्रीम कोर्ट ने 2,000 रुपए तो वध दे व्यक्ति तो व्यापारी यूपीआई लेन देन ते मर्चेंट डिस्काउंट रेट MDR लाउन दे केंद्र सरकार दे फैसले उत्ते रोक लाउन तो इनकार कर दिता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा विच विश्व आगुआ ने सिक्ख्या हुनर तकनालोजी अते रोजगार राही आलमी खुशहाली लियाउन लई वध रही नौजवान आबादी की समर्था उत्ते जोर दिता है। केंद्रीय किरत ते रोजगार मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने कहा है कि देश विच 100 करोड़ तो वध लोगों नूं समाजिक सुरक्षा का लाभ मिल रहा है। देश अज महान इनकलाबी शहीद आजम भगत सिंह की 119वीं जन्म वरेगंढ मना रहा है। एशियाई खेडां च भारत की ईशा सिंह ने औरतों के 25 मीटर पिस्टल व्यक्तिगत मुकाबले चांदी का तमगा जितया। भारत की मर्दां की क्रिकेट टीम भी सैमीफाइनल च पहुंची है। हुण खबरां विस्थार दे नाल। सुप्रीम कोर्ट ने अज 2,000 रुपए तो वध दे व्यक्ति तो व्यापारी UPI लेन देन उत्ते मर्चेंट डिस्काउंट रेट MDR लाउन दे केंद्र सरकार दे फैसले उत्ते रोक लाउन तो इनकार कर दिता है। यह फीस अगले महीने की 15 तरीक तो लागू होनी है। 2,000 रुपए तो वध दे UPI भुगतानों उत्ते MDR लाउन दे फैसले नूं चुनौती देने वाली पटीशन उत्ते सुनवाई करदिआं अदालत ने कहा कि यह मामला कानूनी नालों वधेरे तकनीकी है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र अते होर धिरां नूं 4 हफ्तिआं दे अंदर जवाबी हलफनामा दाखल करन दे निर्देश दित्ते ने। भारत अज सर्जिकल स्ट्राइक की 10वीं वरेगंढ मना रहा है। 28 अते 19 सितंबर 2016 की रात नूं फौज ने कंट्रोल रेखा के पार दहशतगर्दां के टिकाणियां खिलाफ निशानाबद्ध कार्रवाइयां कीतियां सन। यह कार्रवाई 18 सितंबर नूं उड़ी दहशतगर्दी हमले तो बाद की गई सी, जिस विच 18 भारतीय जवान शहीद हो गए सन। इस कार्रवाई ने दहशतगर्दी खिलाफ भारत की सुरक्षा नीति च तब्दीली की निशानदेही की। इस तो बाद 2019 च बालाकोट और 2025 च आपरेशन सिंदूर विच पाकिस्तान विरुद्ध कार्रवाइयां कीतियां गईयां। कल आकाशवाणी उत्ते प्रसारित अपने मन की बात प्रोग्राम

0: वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने भी कहा है कि मज़कूरा कानून भारतीय आईन के ऐन मुताबिक मुस्लिम ख़वातीन को बराबर के हुकूक देता है। कानून बनने के बाद से साल के दौरान तलाक़े सलासा के मामलों में 80% से ज़्यादा की गिरावट देखने में आई है। तीन तलाक की रोकथाम से मुतालिक कानून के तहत मुस्लिम ख़वातीन को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ मिल गया है, जो इससे पहले समाजी दबाव की वजह से खामोशी इख्तियार किए रहती थी। लखनऊ से सुशील चंद तिवारी की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं शोएबा।
1: खाम तेल की कीमतों में उछाल के तनाजुर में मुल्क के शेयर बाजारों में तकरीबन 1.3% की गिरावट देखने में आई है। सेंसेक्स में तकरीबन 1000 पॉइंट्स की गिरावट आई और ये 72972 पर आ गया। इसी तरह निफ्टी भी 299 पॉइंट्स की गिरावट के साथ 22842 पर आ गया। एशियन गेम्स 2026 में आज खवातीन के 25 मीटर पिस्टल इन्फरादी मुकाबले में भारत की ईशा सिंह ने चांदी का तमगा जीता। 21 साल निशानेबाज ने 38 पॉइंट्स के साथ दूसरा मकाम हासिल किया। भारतीय एथलीट पिंकी बालहारा ने खवातीन के अंडर 78 किलोग्राम के कुराश मुकाबले में कांसे का तमगा जीता। उन्होंने क्वार्टर फाइनल में जनूबी कोरिया की लिम गाराम को 3-0 से हराया। और आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। सुप्रीम कोर्ट ने यूपीआई लेनदेन पर एमडीआर यानी मर्चेंट डिस्काउंट रेट नाफिज करने के मरकजी सरकार के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। बैंकों की मुजवजा 3 रोजा मुल्कगीर हड़ताल जो आज से शुरू होना थी मुलतवी कर दी गई है। पाकिस्तान में दहशतगर्दों के ठिकानों पर भारत की सर्जिकल स्ट्राइक्स को आज 10 साल मुकम्मल हो रहे हैं। आज मुजाहिद आजादी शहीद भगत सिंह को उनकी यौम पैदाइश पर खराज अकीदत पेश किया जा रहा है। और जापान में जारी एशियाई खेलों में आज खवातीन के 25 मीटर पिस्टल मुकाबले और अंडर 78 कुराश मुकाबले में भारत ने चांदी और कांसे के तमगे जीते हैं। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।

0: Earlier, the Indian men's cricket team has entered the semi-final without even taking the field after its quarter-final against Afghanistan was abandoned due to inclement weather at Aichi Nagoya in Japan today. Benchmark domestic equity indices witnessed a sharp decline and were trading around 1.3% lower during the afternoon session today. The Sensex tumbled nearly 1,000 points, falling below the 73,000 mark. The Nifty shed 306 points to 22,835 when reports last came in. In the broader market at the National Stock Exchange, the mid-cap 100 index cracked 1.4% and the small-cap 100 index slid 1.6% a short while ago. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Supreme Court refuses to stay the centre's decision to impose merchant discount rate on UPI transactions. Proposed three-day nationwide bank strike, which was to begin today, deferred. India marks 10th anniversary of surgical strikes on terrorist hideouts in Pakistan. Nation remembers freedom fighter Shahid Bhagat Singh on his birth anniversary today. Sensex plunges nearly 1,000 points amid surge in crude oil prices. Nifty tanks 306 points. And in Asian Games, India bagged silver and bronze medals today in women's 25-meter pistol and under 78-kilogram kurash events. Details of these stories and more log on to our website www.newsonair.gov.in and News on AIR app. With that, we end the midday news.
1: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार सर्वोच्च न्यायालय ने यूपीआई लेनदेन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट लागू करने के केंद्र सरकार के फैसले पर रोक लगाने से इनकार किया। बैंकों की आज से शुरू होने वाली तीन दिन की प्रस्तावित राष्ट्रव्यापी हड़ताल स्थगित। भारत पाकिस्तान में आतंकवादी ठिकानों पर की गई सर्जिकल स्ट्राइक की 10वीं वर्षगांठ मना रहा है। शहीद आजम भगत सिंह की आज 119वीं जयंती। कच्चे तेल की कीमतों में उछाल के बीच सेंसेक्स में करीब 1000 अंकों की गिरावट। निफ्टी भी 299 अंक गिरा। और एशियाई खेलों में भारत ने आज महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल में रजत और अंडर 78 किलोग्राम कुराश स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। सर्वोच्च न्यायालय ने 2000 रुपए से अधिक के यूपीआई लेनदेन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट एमडीआर लागू करने के केंद्र सरकार के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। ये शुल्क 15 अक्टूबर से प्रभावी होने हैं। न्यायालय ने केंद्र सरकार भारतीय रिजर्व बैंक और अन्य प्रतिवादियों से जवाब मांगा है और 4 सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने कहा कि ये मुद्दा कानूनी से अधिक तकनीकी है। केंद्र सरकार की ओर से पेश हुए अपर सॉलिसिटर जनरल एन वेंकटरामन ने पीठ को बताया कि भुगतान गेटवे के 96% उपयोगकर्ता इससे मुक्त रहेंगे। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस ने घोषणा की है कि आज से शुरू होने वाली तीन दिन की राष्ट्रव्यापी बैंक हड़ताल स्थगित कर दी गई है। ये निर्णय भारतीय बैंक संघ के साथ हुए समझौते के बाद लिया गया। सोशल मीडिया पोस्ट में ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन ने कहा कि ये निर्णय कल रात भारतीय बैंक संघ और यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के बीच हड़ताल से संबंधित मुद्दों पर हुई बैठक के बाद लिया गया। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के कुछ अन्य यूनियनों और एसोसिएशनों ने 5 दिवसीय बैंकिंग प्रणाली को लागू करने और प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन पीएलआई योजना को वापस लेने की 2 प्रमुख मांगों को लेकर हड़ताल का आह्वान किया था। केंद्र सरकार कर्नाटका और महाराष्ट्र में सूखे की स्थिति का आकलन करने के लिए टीमें भेजेगी। नई दिल्ली में रबी फसल अभियान 2026 के लिए राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ये बात कही। संवाददाताओं से श्री चौहान ने कहा कि महाराष्ट्र और कर्नाटका सरकारों ने अपने अपने राज्यों के बड़े हिस्से में सूखा घोषित कर दिया है।
2: राज्य सरकारों ने महाराष्ट्र में बड़े हिस्से पर और कर्नाटक में भी बड़े हिस्से पर सूखा घोषित किया है। भारत सरकार राज्यों के साथ डट के खड़ी रहेगी

0: कर्नाटक में भी 3 अक्टूबर को टीम बना के भेज रहे हैं वहां की स्थिति के आकलन के लिए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी से बात हुई है तो भाभी हम टीम की तैयारी कर रहे हैं। मैं स्वयं भी उन राज्यों में जाके स्थिति देखूंगा और हम अपने किसानों के साथ राज्य सरकारों के साथ पूरी ताकत से खड़े रहेंगे इस परिस्थिति का मुकाबला करने के लिए।
1: श्री चौहान ने कहा कि शुरुआत में आशंका थी कि अल नीनो के प्रभाव से बुवाई का क्षेत्र कम हो सकता है और महत्वपूर्ण चुनौतियां उत्पन्न हो सकती है। उन्होंने देश भर में पर्याप्त मात्रा में उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई।
0: जो प्रयास किए भारत सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में खाद की कोई कमी नहीं आई, खाद की व्यवस्था करने के लिए सरकार कृत संकल्पित है। लेकिन हम ये जोर जरूर दे रहे हैं कि जितना जरूरी है उतने खाद का उपयोग, संतुलित उपयोग, उसके लिए खेत बचाओ अभियान हम फिर चलाएंगे ताकि सॉयल हेल्थ कार्ड में जो सिफारिश की है माटी में जो तत्व कम है उसके आधार पर कितना खाद चाहिए उतना खाद डाला जाए तो मिट्टी का स्वास्थ्य ठीक रहेगा।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी expert@AIRNewsHindi और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
1: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारत आज सर्जिकल स्ट्राइक की 10वीं वर्षगांठ मना रहा है। 28 और 29 सितंबर 2016 की रात सेना ने नियंत्रण रेखा के पार आतंकवादी ठिकानों पर लक्षित कार्रवाई की थी। 18 सितंबर को उरी आतंकी हमले के बाद ये कार्रवाई की गई थी। इसमें 18 जवान शहीद हुए थे। आकाशवाणी से कल मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2016 के सर्जिकल स्ट्राइक को एक महत्वपूर्ण पड़ाव बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले एक दशक में आतंकवाद से निपटने के भारत के तरीके में बदलाव आया है।
3: बीते एक दशक में बालाकोट की एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक भारत ने बार बार ये स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर आतंकवादी भारत पर आंख उठाएंगे तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। आतंकवादी हमलों ने भारत को लंबे समय तक चोट पहुंचाई है। पहले भी हर आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर कार्रवाई की मांग होती थी। अब आज का भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लेकर चल रहा है।
1: प्रधानमंत्री ने आज देशवासियों से जनगणना के लिए समय निकालने का आग्रह किया है। मन की बात कार्यक्रम में किए गए अपने आह्वान को याद करते हुए श्री मोदी ने कहा कि जनगणना में भाग लेना सभी नागरिकों का राष्ट्रीय कर्तव्य है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। उनकी यात्रा जनसेवा से देश सेवा के संकल्प और निरंतर जनसेवा की भावना से प्रेरित रही है। इसी सेवा और सुशासन की सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए लोगों के जीवन में बदलाव लाने का प्रयास किया जा रहा है। इस विशेष श्रृंखला में आज हम बात करेंगे कि 3 तलाक कानून कैसे मुस्लिम महिलाओं के जीवन में बदलाव लाने में मदद कर रहा है।
4: 3 तलाक की प्रथा से प्रभावित मुस्लिम महिलाओं को कानूनी सुरक्षा और अधिकार दिलाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम 2019 लागू किया। इस कानून के तहत तत्काल 3 तलाक को गैर कानूनी और दंडनीय बनाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ये कानून संविधान की भावना के अनुरूप मुस्लिम महिलाओं को समान अधिकार और न्याय सुनिश्चित कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
5: भारत के संविधान की भावना को, बाबा साहब आम्बेडकर की भावना को आदर करते हुए हमारी मुस्लिम बहनों को भी समान अधिकार मिले, उनके अंदर भी एक नया विश्वास पैदा हो, भारत की विकास यात्रा में वो भी सक्रिय भागीदार बने, इसलिए हमने इस महत्वपूर्ण निर्णय को किया।
4: मुस्लिम मामलों के विशेषज्ञ रजा रिजवी का कहना है कि 3 तलाक कानून ने मुस्लिम महिलाओं को उनके वैधानिक अधिकारों के प्रति जागरूक करने और उन्हें सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
6: ये कानून केवल एक कानूनी बदलाव नहीं है बल्कि महिला के सम्मान और उसके अधिकारों की रक्षा से जुड़ा विषय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने महिला सशक्तिकरण को विकास से जोड़ा।
4: मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम ने उन महिलाओं के लिए कानूनी सुरक्षा का प्रावधान किया है जो 3 तलाक की स्थिति में सामाजिक और पारिवारिक दबाव के कारण अपनी बात सामने नहीं रख पाती थीं। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: उत्तर प्रदेश का प्रतापगढ़ तेजी से बढ़ते आंवला उद्योग के लिए जाना जाता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कल मन की बात कार्यक्रम में आंवला उद्योग में प्रतापगढ़ के योगदान की सराहना की। आइए सुनते हैं इस पर हमारे संवाददाता।

0: की एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में कहा कि आंवले ने प्रतापगढ़ को एक मजबूत पहचान दी है। उन्होंने कहा कि प्रतापगढ़ के सावित्री फुले सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी महिलाओं के आंवले से बने उत्पाद आज ODOP के तहत नए बाजारों तक पहुंच रहे हैं, जिससे उनकी आय में बढ़ोतरी हुई है।
2: आंवले ने प्रतापगढ़ को एक मजबूत पहचान दी है और अब यही पुरानी पहचान यहाँ के किसानों और महिलाओं के लिए नए अवसर लेकर आ रही है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट यानी ODOP के माध्यम से यहाँ आंवले से जुड़े स्थानीय उद्यमों को बढ़ावा मिला है।
1: सावित्री फुले सेल्फ हेल्प ग्रुप की कमलेश कुमारी ने प्रधानमंत्री का आभार जताते हुए कहा,
3: प्रधानमंत्री को हम धन्यवाद देते हैं, सावित्री फुले स्वयं सहायता समूह बनाए हैं, आंवला का लड्डू मुरब्बा जूस बर्फी भी यही हमारा प्रोडक्ट बनता है।
1: प्रतापगढ़ जनपद में 196 से अधिक आंवले के उत्पाद की इकाइयां हैं और यहां बने उत्पाद देश के अलग अलग हिस्सों के साथ कई देशों में भेजे जा रहे हैं। ओम अवस्थी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: श्रम और रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि देश में 100 करोड़ से अधिक लोगों को सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिल रहा है। वे आज नई दिल्ली में आयोजित औद्योगिक संबंध और श्रम तथा पुरस्कार संबंधी राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे।
4: हम 25 करोड़ लोगों को SIC की हेल्थ सिक्योरिटी दे रहे हैं, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दे रहे हैं, 10 करोड़ किसान के अकाउंट में हर 4 महीने 2000 रुपया डालते हैं। आज देश के 10 स्टेट ऐसे हैं जो महिला के अकाउंट में प्रति महीने कोई न कोई 2000, 1500, 1200 ऐसी अमाउंट डालते हैं। तो मैंने कहा कि क्या सोशल सिक्योरिटी का पार्ट नहीं बन सकता और कैलकुलेशन चालू करा, तो उन्होंने स्वीकारा कि इंडिया आज 101 करोड़ यानी कि 68% लोगों को सोशल सिक्योरिटी देता है।
0: संयुक्त राष्ट्र महासभा में विश्व नेताओं ने शिक्षा, कौशल, प्रौद्योगिकी और रोजगार के माध्यम से वैश्विक समृद्धि को गति देने में युवा आबादी की क्षमता का उल्लेख किया। उन्होंने चेतावनी दी कि AI का बढ़ता उपयोग रोजगार को लेकर अनिश्चितता बढ़ा सकता है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि AI मानव सशक्तिकरण और आर्थिक समृद्धि के लिए परिवर्तनकारी शक्ति बन सकता है, लेकिन उन्होंने इसके दुरुपयोग से होने वाले नुकसानों के बारे में चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि देशों को अपनी राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुरूप AI मॉडल विकसित करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक की 11वीं वार्षिक बैठक और निवेशक संवाद 2026 में भाग लेने के लिए कतर की राजधानी दोहा में हैं। इस बैठक में सदस्य प्रतिनिधिमंडल, नीति निर्माता और अन्य संबंधित पक्ष बैंक की रणनीतिक दिशा, संचालन प्राथमिकताओं और भविष्य के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। देश आज शहीद आजम भगत सिंह की 119वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। भगत सिंह का जन्म आज ही के दिन वर्ष 1907 में पंजाब के लायलपुर जिले के बंगा गांव में हुआ था, जो अब पाकिस्तान में है।
5: शहीद आजम भगत सिंह के मन में देश की आजादी के लिए लड़ने का जज्बा अपने परिवार से ही मिला था। उनके दादा, पिता और चाचा सभी स्वतंत्रता आंदोलन में पूरी तरह सक्रिय थे। भगत सिंह खुद भी इस आंदोलन से जुड़े और देश की आजादी के लिए आवाज उठाने वाले क्रांतिकारी बन गए। अंग्रेजों के कठोर और दमनकारी कानूनों का विरोध करने के लिए उन्होंने साल 1929 में केंद्र विधानसभा में ऐसे बम फेंके जिससे किसी की जान न जाए। इसके बाद उन्होंने खुद को अंग्रेजों के हवाले कर दिया और गिरफ्तारी दी। साल 1931 में अंग्रेजों ने उन्हें फांसी दे दी। शहीद भगत सिंह की शहादत ने पूरे देश में गुस्से और प्रेरणा की एक जबरदस्त लहर पैदा कर दी, जिसने उनके बलिदान को ब्रिटिश शासन के खिलाफ प्रतिरोध का एक शक्तिशाली प्रतीक बना दिया। उनके अदम्य साहस ने देश के युवाओं में जोश भर दिया और भारत के स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा और गति दी, जिससे गुलामी की जंजीरों को तोड़ने को देशवासियों का संकल्प और अधिक मजबूत हो गया। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: कच्चे तेल की कीमतों में उछाल के बीच घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के सत्र में 1.3% की गिरावट दर्ज की गई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 956 अंक गिरकर 72,939 पर और निफ्टी 306 अंक लुढ़ककर 22,835 पर पहुंच गया। और अब एशियाई खेल खबरों के साथ हैं जागृति शर्मा।
6: जापान एशियाई खेलों में भारत की ईशा सिंह ने महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल व्यक्तिगत स्पर्धा में रजत पदक जीत लिया है। वहीं भारतीय एथलीट पिंकी बलहारा ने महिलाओं के अंडर 78 किलोग्राम कुराश स्पर्धा में कांस्य पदक हासिल किया। महिला मुक्केबाजी में लवलीना बोरगोहाइन ने 75 किलोग्राम भार वर्ग के क्वार्टर फाइनल में दक्षिण कोरिया की सियोंग सियोन को हराकर पदक पक्का कर लिया है। वहीं भारतीय क्रिकेट टीम सेमीफाइनल में पहुंच गई है। सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला नेपाल और श्रीलंका के बीच होने वाले क्वार्टर फाइनल के विजेता से होगा। एशियाई खेलों में भारत पदक तालिका में 12वें स्थान पर है। अब तक भारत कुल मिला

0: मिलाकर 39 पदक जीत चुका है, जिनमें 4 स्वर्ण, 17 रजत और 18 कांस्य पदक शामिल हैं।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एशियाई खेलों में 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में रजत पदक जीतने पर ईशा सिंह को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ने कहा कि ईशा सिंह के शानदार प्रदर्शन में उनके कौशल, सटीकता और निरंतरता की झलक दिखाई देती है। मौसम विभाग ने कल तक दक्षिण आंतरिक कर्नाटका, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। इस बीच आज दिल्ली के कुछ इलाकों में बूंदाबांदी हुई। विभाग के अनुसार कल तक केरलम, माहे, मध्य महाराष्ट्र, पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में गरज के साथ बिजली चमकने की संभावना है। वहीं अगले 2 दिनों के दौरान आंध्र प्रदेश में तेज हवाएं चल सकती हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सर्वोच्च न्यायालय ने यूपीआई लेन देन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट लागू करने के केंद्र सरकार के फैसले पर रोक लगाने से इनकार किया। बैंकों की आज से शुरू होने वाली 3 दिन की प्रस्तावित राष्ट्रव्यापी हड़ताल स्थगित। भारत पाकिस्तान में आतंकवादी ठिकानों पर की गई सर्जिकल स्ट्राइक की 10वीं वर्षगांठ मना रहा है। शहीद आजम भगत सिंह की आज 119वीं जयंती। कच्चे तेल की कीमतों में उछाल के बीच सेंसेक्स में करीब 1000 अंकों की गिरावट, निफ्टी भी 306 अंक गिरा। और एशियाई खेलों में भारत ने आज महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल में रजत और अंडर 78 किलोग्राम कुराश स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। ये जो प्रस्तुत है कार्यक्रम एक ही कलाकार।

श्रोताओं, कहते हैं कुछ आवाज़ें सिर्फ सुनाई नहीं देती, वो दिल में उतर जाती हैं। कुछ आवाज़ें सिर्फ गीत नहीं गाती, वो किसी दौर की पहचान बन जाती हैं। और कुछ आवाज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें सुनते ही हमारे सामने एक पूरा भारत, एक पूरा बचपन और यादों की पूरी दुनिया जीवंत हो जाती हैं। आज एक ही कलाकार में हम बात करेंगे सुर सम्राज्ञी की लता मंगेशकर जी के बारे में, क्योंकि आज हम उनकी बना रहे हैं जन्म जयंती कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ इस कार्यक्रम की होस्ट विजेता चतुर्वेदी। तो शुरुआत करते हैं एक प्यारे से नगमे के साथ।

श्रोताओं, आज इस कार्यक्रम में बात हो रही है लता मंगेशकर की, जिन्हें प्यार से लता दीदी, स्वर कोकिला और मेलोडी क्वीन जैसे नाम दिए गए। हालांकि उनके बारे में कुछ भी बताना सूरज को दिया दिखाने जैसा है, लेकिन आज क्योंकि उनकी जन्म जयंती है तो आइए उनको याद करते हैं। करीब 8 दशकों तक फैले उनके संगीत सफर ने भारतीय सिनेमा के संगीत को एक नई पहचान दी। भारतीय सिनेमा में उनका योगदान बेमिसाल रहा। 36 से ज़्यादा भाषाओं में गाने गाए और इनमें कुछ विदेशी भाषाएं भी शामिल थीं, लेकिन जिस आवाज़ को बाद में पूरी दुनिया ने सिर आँखों पर बैठाया, उस आवाज़ के पीछे संघर्ष की एक ऐसी कहानी है जो कम उम्र से शुरू हो जाती है। लता मंगेशकर का जन्म 28 सितंबर 1929 को इंदौर में हुआ। उनके पिता पंडित दीनानाथ मंगेशकर शास्त्रीय संगीत गायक होने के साथ साथ रंगमंच से भी जुड़े थे, इसलिए लता जी के लिए संगीत कोई बाहर से आया हुआ शौक नहीं था। संगीत उनके घर की सांसों में था। उनके पिता ही उनके शुरुआती गुरु बने और लता का मूल नाम अगर जाना जाए तो वो हेमा रखा गया था। बाद में उनके पिता ने नाटक के एक किरदार से प्रेरित होकर उनका नाम लता रख दिया था। लता मंगेशकर 5 भाई बहनों में सबसे बड़ी थी। उनके परिवार में आगे चलकर आशा भोसले, उषा मंगेशकर, मीना खाडीकर और हृदयनाथ मंगेशकर जैसे कलाकार भी हुए। यानी मंगेशकर परिवार भारतीय संगीत की दुनिया में अपने आप में एक संस्था बन गया। लता ने बहुत ही छोटी सी उम्र में ही अपने पिता से शास्त्रीय संगीत सीखना शुरू कर दिया। बचपन में वो अपने पिताजी के नाटकों में अभिनय भी किया करती थी, लेकिन धीरे धीरे उन्हें ये एहसास होने लगा कि उनका असली रास्ता अभिनय नहीं बल्कि संगीत है।

0: एक कदम लोकतंत्र के नाम।
1: यदि आपका नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं है तो फॉर्म 6 भरकर आज ही अपना नाम मतदाता सूची में पंजीकृत कराएं।
0: फॉर्म 7 गलत या अपात्र नाम पर आपत्ति दर्ज करने हेतु प्रावधान।
1: फॉर्म 8 से मतदाता सूची में अपनी जानकारी करें दुरुस्त बार बार।
0: फॉर्म 6, 7 और 8 भरें 30 सितंबर 2026 तक। मतदाता सूची को सही और अद्यतन बनाएं।
1: मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।
2: आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही कलाकार। श्रोताओं, बात हो रही है लता मंगेशकर जी की। साल 1942 का वक्त आया। लता की उम्र उस समय सिर्फ 13 वर्ष थी। इसी उम्र में उनके पिता पंडित दीनानाथ मंगेशकर का निधन हो गया। परिवार के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया। एक किशोरी के सामने जब सिर्फ अपना भविष्य बनाने की चुनौती नहीं थी बल्कि पूरे परिवार की जिम्मेदारी भी आ गई थी। लता ने फिल्मों में काम करना शुरू किया। उन्होंने अभिनय भी किया और गायन भी किया। 1942 में उन्होंने मराठी फिल्म पहली मंगला मौर में अपना अभिनय किया और इसी दौर में उन्होंने मराठी फिल्म कीर्ति हसाल के लिए अपनी शुरुआती गीत रिकॉर्ड करवाया। ये वही समय था जब एक किशोरी धीरे धीरे उस दुनिया में प्रवेश कर रही थी जहां आगे चलकर उसका नाम इतिहास में लिखा जाना था। लेकिन शुरुआत आसान नहीं थी। आज जिस आवाज़ की दुनिया के सबसे महान आवाज़ों में गिना जाता है, उसे शुरुआती दौर में आलोचनाओं का सामना भी करना पड़ा। उस समय फिल्म संगीत में कुछ अलग आवाज़ों का दौर था। उस समय शमशाद बेगम और सुरैया का दौर था और लता जी की आवाज़ अपेक्षाकृत पतली मानी जाती थी। कई लोगों को लगता था कि उनकी आवाज़ में फिल्मों के लिए गीत उपयुक्त नहीं होंगे। लेकिन यही लता मंगेशकर की कहानी हमें एक महत्वपूर्ण बात सिखाती है कि कभी कभी आपकी सबसे बड़ी कमजोरी आपकी सबसे बड़ी पहचान बन जाती है अगर आप उस पर काम करना शुरू कर दें। लता जी ने अपनी आवाज़ को बदलने की बजाय उसे तराशा। उन्होंने हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का गहन अभ्यास किया। मुंबई आने के बाद उन्होंने उस्ताद अमान अली खान से भी संगीत की शिक्षा ली और फिर धीरे धीरे उनकी आवाज़ ने अपना एक अलग स्वरूप ले लिया।

0: कार्यक्रम में वक्त है एक छोटे से अंतराल का।
1: एक कदम लोकतंत्र के नाम।
2: यदि आपका नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं है तो फॉर्म 6 भरकर आज ही अपना नाम मतदाता सूची में पंजीकृत कराएं।
1: फॉर्म 7 गलत या अपात्र नाम पर आपत्ति दर्ज करने हेतु प्रावधान।
2: फॉर्म 8 से मतदाता सूची में अपनी जानकारी करें दुरुस्त बार बार।
1: फॉर्म 6, 7 और 8 भरें 30 सितंबर 2026 तक। मतदाता सूची को सही और अद्यतन बनाएं।
2: मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।
0: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही कलाकार। बात हो रही है लता मंगेशकर जी की और मैं हूं कार्यक्रम में आपके साथ आज कार्यक्रम की होस्ट विजेता चतुर्वेदी। श्रोताओं, 1940 के दशक के मध्य में लता मंगेशकर का परिवार मुंबई आ गया। लता जी ने हिंदी फिल्मों में प्लेबैक गायन शुरू किया और फिर 1949 में आई फिल्म महल के गीत आएगा आने वाला ने उनकी आवाज को देश भर में पहचान दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये गीत सिर्फ एक लोकप्रिय गीत नहीं था, ये उस दौर का एक ऐसा मोड़ था जिसने फिल्म संगीत में महिला आवाज की नई ध्वनि को स्थापित किया। इसके बाद लता मंगेशकर की आवाज लगातार बड़े संगीतकारों और बड़ी फिल्मों से जुड़ती गई। अपने डिसिप्लिन के लिए जानी जाने वाली लता मंगेशकर की एक खास आदत थी कि वो रिकॉर्डिंग के लिए जब भी स्टूडियो में घुसती थी तो चप्पल बाहर ही छोड़ा करती थी। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्होंने स्टूडियो को हमेशा एक मंदिर का दर्जा दिया। उन्होंने अलग अलग भाषाओं में हजारों गीत रिकॉर्ड किए और कई पीढ़ियों को अभिनेत्रियों को अपनी आवाज दी। मधुबाला से लेकर नरगिस, मीना कुमारी, वैजयंती माला, शर्मिला टैगोर, हेमा मालिनी, रेखा श्रीदेवी और बाद की भी अन्य पीढ़ियों की अभिनेत्रियों की वो आवाज बने। यही कारण था कि लता की आवाज सिर्फ एक गायिका की आवाज नहीं थी। लता मंगेशकर जी ने भारतीय फिल्म संगीत के लगभग हर बड़े दौर को अपनी आवाज दी। उन्होंने नौशाद, शंकर जयकिशन, एसडी बर्मन, मदन मोहन, सलिल चौधरी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, आरडी बर्मन और बाद में एआर रहमान जैसे संगीतकारों के साथ भी काम किया और मदन मोहन जी के साथ तो उनका सहयोग विशेष रूप से याद किया जाता है। लता मंगेशकर जी की अगर पुरस्कारों की बात करेंगे तो सूची बहुत ही लंबी है, इस पर भी बात करते हैं, लेकिन फिलहाल सुन लेते हैं एक और प्यारा सा गीत।

श्वेता, उनकी अवार्ड्स और पुरस्कारों की अगर सूची की बात करेंगे तो कार्यक्रम भी छोटा पड़ जाएगा, लेकिन कुछ सम्मान ऐसे हैं जिन्हें विशेष रूप से याद किया जाना चाहिए। 1969 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। साल 1989 में उन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला। 1999 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया और फिर आया साल 2001 जब भारत सरकार ने उन्हें देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक भारत रत्न प्रदान किया। भारत रत्न की आधिकारिक अधिसूचना में लता दीनानाथ मंगेशकर का नाम कला संगीत के क्षेत्र में दर्ज है। उन्हें 3 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिले। उन्होंने 4 फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायिका पुरस्कार भी जीते और बाद में फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मान से भी सम्मानित हुई। उन्हें फ्रांस का प्रतिष्ठित ऑफिसर ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर सम्मान भी मिला, यानी सम्मान भारत में भी और भारत के बाहर भी। लता मंगेशकर के करियर का एक दिलचस्प पक्ष ये भी है कि उन्होंने एक समय फिल्म फेयर के सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायिका पुरस्कार की प्रतियोगिता से खुद को अलग कर लिया था ताकि नई पीढ़ियों को, नई गायिकाओं को आगे आने का अवसर मिले। ये कदम उनके लंबे करियर में एक अलग पहलू को सामने लेकर आता है। वो सिर्फ अपनी उपलब्धियों तक सीमित नहीं थी बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी जगह बनाने की बात करती थी।

और इसी बीच हमारे श्रोता भी हमसे जुड़ गए हैं व्हाट्सएप संदेश इन संदेशों के माध्यम से, तो आइए सुन लेते हैं, देखते हैं सबसे पहला संदेश हमारे पास किसका आया है। तो ये हमारे पास संदेश है धर्मेंद्र छीपा जी का, और लिखते हैं कि आज कार्यक्रम में पार्श्व गायिका स्वर कोकिल लता मंगेशकर जी के बारे में बात हो रही हैं। भोपालगढ़ राजस्थान से हैं हमारे श्रोता धर्मेंद्र छीपा, कपिल छीपा, ईशान छीपा और पूजा परिहार साथ में जुड़ रहे हैं। छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा, यशस्वी वर्मा, गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवीर जस्सी, सीता और गीता, संबलपुर कांकेर से फागूराम यादव, ज्योति यादव, ओजस्वी यादव, वर्डिंग खेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा, पहाड़गंज मुल्तानी ढाणा से अनिल मोहन, उषा मोहन, टिल्लू नायक और मधु नायक, और तुलसी मस्कीन जी का संदेश है बीना मस्कीन, डब्बू सम्राट, चैतन्य मस्कीन, मेघा मस्कीन, और चंडीगढ़ से हैं राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशु खुराना, गांव फ्रांसी जिला हिसार से राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी जुड़ रहे हैं, सुदर्शन मुखी, अनीता मुखी, सिमरन मुखी जुड़ रहे हैं, शांति नगर सोनीपत से, और अजीत भवसार जी का भी संदेश आया है, बहुत लंबा संदेश है उसको हम नहीं पढ़ सकते, वीरम गांव गुजरात से हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं हमारे श्रोता, नल्लेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से पी एस नुहावकर, निर्मला और विशाल नुहावकर भी जुड़ रहे हैं।

श्रोताओं, लता मंगेशकर भले ही आज हमारे बीच नहीं, लेकिन उनकी आवाज आज भी हमारे बीच है। जब कोई पुराना गीत बजता है तो सिर्फ संगीत नहीं बजता, उसके साथ एक दौर लौटता है। किसी को अपना बचपन याद आता है, किसी को अपनी पहली मोहब्बत। ऐसा था लता मंगेशकर की आवाज का जादू।

तो इसी गीत के साथ इस कार्यक्रम को अब करते हैं यहीं पर समाप्त, और अगले कार्यक्रम में आपके साथ जुड़ने आ रही हैं गोल्डन एरा के कुछ गीत लेकर अंजू पांडे।

जी, आपने बुलाया और हम चले आए। प्रोग्राम जिसका नाम है मैटिनी मेलोडीज। आप जुड़े हैं आकाशवाणी के इंद्रप्रस्थ चैनल के साथ। दोपहर के 3 बज चुके हैं, तो चलिए इस खूबसूरत से प्रोग्राम में, जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं हमारे भारतीय सिनेमा का जो गोल्डन युग था, उस युग के कुछ चुने हुए गीत। तो आज भी हम कुछ ऐसे ही गीत लेकर आए हैं, और साथ ही साथ आपके लिए एक सवाल भी हम लेकर आए हैं। तो वो सवाल कौन सा है, वो तो आपको इस गीत के बाद पता चल जाएगा। आप कागज़ और कलम लेकर बैठ जाइए, क्योंकि उस सवाल का जवाब आपको देना है, और जवाब आपको सूझ जाए तो आपको भेजना है मेल पर। मेल आईडी ipradiodelhi@gmail.com। तो अब शुरुआत करते हैं इस खूबसूरत से गीत के साथ, जिसे गाया है मदन मोहन जी ने, माफ़ कीजिएगा, लता जी ने। और इस गीत का आनंद लीजिए, उसके बाद आगे की बात।

जी हम तो आपको रोज ही बुलाते हैं, तो आप में से कुछ लोग तो रोज आते हैं लेकिन कुछ लोग पता नहीं कहाँ बिजी हो जाते हैं। लेकिन आज हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी आए और जो सवाल हम आपसे पूछ रहे हैं उसका जवाब भी झटपट हम तक पहुंचा दें। तो आप तैयार हैं ना? चलिए आपसे पूछती हूँ मैं आज का सवाल। ऑस्कर तक पहुंचने वाली भारत की पहली फिल्म कौन सी थी जिसमें एक माँ के संघर्ष और गांव की कहानी दिखाई गई थी? ये है आज का सवाल। एक बार फिर से मैं दोहरा देती हूँ, ऑस्कर तक पहुंचने वाली भारत की, ध्यान से सुनिएगा, पहली फिल्म कौन सी थी जिसमें एक माँ के संघर्ष और गांव की कहानी दिखाई गई है? तो जल्दी से आप अपने जवाब हमें मेल के जरिए भेज दीजिए। मेल आईडी है ipradiodelhi@gmail.com। फिलहाल आशा जी की आवाज़ में ये अगला नगमा।

आजादी मिलते ही हिंदी सिनेमा ने एक बड़ा बदलाव देखा और एक आधुनिक स्वतंत्र भारत के रूप में अपना सफर शुरू किया। 1950 के दशक की शुरुआत में फिल्म निर्माता भारत के स्वतंत्रता संग्राम से प्रेरित थे और वो विचारधारा आजादी के शुरुआती वर्षों में बनी फिल्मों में आपको साफ झलकती है। नया दौर, दो बीघा जमीन जैसी बड़ी हिट फिल्में रही और दर्शकों का ध्यान तुरंत अपनी और इन फिल्मों ने खींचा। सिर्फ इन फिल्मों के स्टार कास्ट की वजह से ही नहीं, बल्कि इनमें दिखाए गए सरल किरदारों और कथानकों ने भी उन्हें रातों रात हिट बना दिया। इनकी लोकप्रियता और जुड़ाव भारत और विदेश दोनों ही जगह इतनी ज्यादा रही कि आज भी लोग इन फिल्मों को याद करते हैं। हमने इसी तरीके से आपसे एक सवाल पूछा कि ऑस्कर तक पहुंचने वाली भारत की पहली फिल्म कौन सी थी जिसमें एक माँ के संघर्ष और गांव की कहानी दिखाई थी। अब आप लोग इतने ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं ना कि ढेर सारे सवाल जो हमने सवाल पूछा उसके जवाब हम तक पहुँच गए और वो भी बिल्कुल सही सही। तो चलिए अभी हम सवाल का जवाब नहीं बताएंगे क्योंकि हमारे बहुत सारे दोस्त अभी शायद सर्च कर रहे हैं, क्योंकि आजकल टेक्निक इतनी ज़्यादा हाई हो गई है कि आप तुरंत हर सवाल का जवाब पा सकते हैं। फिर भी उन लोगों के नाम हम ले ही रहे हैं जिन्होंने सही जवाब भेजा है। बिहारी कॉलोनी शाहदरा दिल्ली से तुलसी मस्कीन, बीना मस्कीन, डब्बू, चैतन्य और चंडीगढ़ से राहुल खुराना रचित जी हैं। लेकिन अभी आपने इस हमारे सवाल का जवाब नहीं दिया लेकिन आपका मेल हम तक पहुंच गया था इसलिए हमने शामिल कर लिया है। सबसे पहले जवाब हमारे पास पहुंचा है अजीत भापसर जी का, जो वीरंगांव गुजरात से प्रमिला जी के साथ हमारे साथ शामिल है। बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशन लाल देवंगन, कौशल्या और हेमलता जी डिंपल जी के साथ हमारे साथ सही जवाब के साथ जुड़े हुए हैं। अगला संदेश यह हमारे

साथ भोपाल से प्रीति मालवीय। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और कुछ और भी संदेश हम तक पहुंच रहे हैं, तो जो सवाल हमने पूछा है उसका जवाब अगर आपको आता है तो जल्दी से हमें हमारे मेल पर भेज दीजिए। मेल आईडी है ipradiodelhi@gmail.com। फिलहाल एक और खूबसूरत सा गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं, मोहम्मद रफ़ी और शारदा जी की आवाज़ में, जिसे हमने लिया है फिल्म सीमा से।

राज कपूर साहब को भारत का सबसे बड़ा शोमैन कहा जाता है और ये बिल्कुल सही भी है। निर्देशक के रूप में उनकी लोकप्रियता बहुत अधिक थी। श्री 420, अनाड़ी, आवारा ऐसे फिल्में हैं जो सदाबहार गीतों के साथ साथ राज कपूर और नरगिस की दमदार जोड़ी के लिए भी जाने जाते हैं। उनकी फिल्मों की जो कहानियाँ थीं वो एक अलग हटकर होती थी। कल्पना कीजिए 1950 के दशक में जब हमारा देश अभी युवा था, तब नकली दवाओं की

वितरण, संपत्ति विवादों जैसे जो मुद्दे थे उन पर कई सारी फिल्में बनी जिन्हें आजकल हम शायद ही देख पाते हैं। गुरुदत्त, बिमल रॉय और महबूब खान को भी हम उतना ही सम्मान देंगे, उतनी ही उनकी तारीफ करेंगे कि उन्होंने इस तरीके के जो विषय थे उन पर फिल्में बनाने की सोची। आपके सवाल, हमने जो सवाल पूछा उसके जवाब हम तक पहुंच रहे हैं। देखते हैं कि और कौन कौन इस लिस्ट में शामिल हो गया है। ये हैं योगेंद्र नायक जी और इनके साथ गीता नायक, ये कासगंज उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए हैं हमारे साथ। ऊपरकोट मोहला चौखंडी बुलंदशहर से मोहम्मद सैद अब्बासी निगत, परवीन शहनवाज, सरफराज परिवार के सभी सदस्य हैं, लेकिन हम आपसे नाराज़ हैं क्योंकि आपने हमारे सवाल का जवाब अभी तक नहीं भेजा है। मेरठ से दिग्दर्शन और कविता जी हमारे साथ हैं और ये हैं सूरत से अदिति शाह। क्या बात है, सही जवाब आपने भेजा है अदिति जी, और हम इंतज़ार कर रहे हैं बाकी के भी जो जवाब हैं वो हम तक पहुंच जाएं। अगला गीत हमने चुना है काला पानी फिल्म से आशा जी की आवाज़ में। एक बार फिर हम अपना सवाल दोहरा देते हैं। ऑस्कर तक पहुंचने वाली भारत की पहली फिल्म कौन सी थी जिसमें एक माँ के संघर्ष और गांव की कहानी दिखाई गई थी।

हमारा हिंदी फिल्मों का जो गोल्डन इरा है वाकई कमाल का है, और शायद ये वक्त दोबारा से ना आ पाए, क्योंकि उस वक्त की जो फिल्में थी, नायक थे, अदाकारा थी, संगीतकार थे, उनमें एक अलग ही जादू था और वो जादू आज भी बरकरार है। अब देखिए ना, आप ये जो गीत सुन रहे हैं ऐसा लग रहा है कि सीधे दिल में उतर रहे हैं। यही तो खासियत है इस युग की। इस दौर को भारतीय सिनेमा का सबसे रचनात्मक और बेहतरीन समय कहा जाता है, क्योंकि इसमें कला, समाज और संगीत का अनूठा संगम देखने को

उच्च भट्टी बिलासपुर छत्तीसगढ़ से मुकेश गोस्वामी, मधु आशी और शिवन्या गोस्वामी हमारे साथ जुड़े हुए हैं सही जवाब के साथ। तो अब वक्त हो गया है कि आपको हम बता दें कि आज का जो सवाल हमने आपसे पूछा था उसका जवाब क्या था। आपने जितने भी लोगों ने जवाब दिया सभी के जवाब बिल्कुल सही है। हमारा सवाल था, ऑस्कर तक पहुंचने वाली भारत की पहली फिल्म कौन सी थी जिसमें एक माँ के संघर्ष और गांव की कहानी दिखाई गई थी। जवाब है, जैसा कि आप सबने दिया, मदर इंडिया। जी हाँ, 1957 में रिलीज फिल्म मदर इंडिया, इसको जिसको निर्देशित किया था महबूब खान ने, और इसे बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म कैटेगरी में ऑस्कर के लिए नामांकित किया था, और ये पहली ऐसी फिल्म थी जिसे नॉमिनेशन मिला था। तो चलिए अब चलते चलते आपको हम बनाडे की आवाज़ में इसी फिल्म से ये गीत सुनवाते हैं, और अब अपनी दोस्त एंड होस्ट अंजू पांडे को भी अनुमति दीजिए। लेकिन हाँ, भूलिएगा मत, 30 तारीख यानी कि परसों आपकी और मेरी मुलाकात एक बार फिर होगी। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, और हमें अपनी यादों में बसाए रखिए। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम मैटिनी मेलोडीज, आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। 3:30 हुए हैं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम उर्दू मजलिस।

0: इनमें हिम्मत नहीं होती थी, तो फिल्मी सितारे में हमने वैसे ही भेजा। फिल्मी सितारे में हमारे चार पांच अफसाने शाये हुए,
1: पहले फिल्मी के ज़माने में,
0: इस वक्त BA का ज़माना था।
1: जी
0: तो इस तरीके से मैंने शुरू किया। बाद में जब MPhil में हम आए,
1: जी
0: तब हमने तनकीद लिखनी शुरू की, अल्फाज में भी छपे मेरे।
1: जी जी।
0: और दिलचस्प बात यह कि अल्फाज में उस वक्त अलीगढ़ से ही निकलता था, उसके एडिटर थे प्रोफेसर नूरुल हसन नकवी साहब और प्रोफेसर कमलुल हुदा फरीदी, उनके मुआविन थे।
1: जी जी।
0: तो एक अफसाना सीनियर का होता था, एक नए लिखने वालों का। तो मेरा अफसाना उन्होंने शाये किया था इंतज़ार हुसैन के अफसाने के साथ, तो मुझे बड़ी खुशी हुई। और फिर यह कि एक अफसाना पढ़ने का मौका मिला मुझे, उर्दू मौला का जलसा होता था वहाँ, तालिब इल्मों की अंजुमन थी। ये प्रोग्राम इस तरह से मुनाकिद किया गया था कि जॉन एलिया और परवीन शाकिर आई हुई थी हिंदुस्तान, तो उन्हें मधु किया गया था वहाँ, उसमें पढ़ा हमने, तो वहाँ भी बहुत पसंद किया गया। और काजी अब्दुस्सत्तार साहब ने मेरी बड़ी हौसला अफजाई की कि अच्छा लिखते रहो। और एक दिलचस्प वाक्य आपको सुनाएं कि काजी अब्दुस्सत्तार साहब के सामने मैंने ये दूसरी तहरीर पढ़ी थी।
1: अच्छा।
0: जो पहली तहरीर सुनाई थी वो भी उर्दू मौला के जलसे में ही, उसमें भी काजी अब्दुस्सत्तार साहब थे, प्रोफेसर अबुल कलाम कासमी साहब थे और फारसी के वारिस किरमानी साहब थे, इस तरीके से अजरमी दुख्त सफवी थी। तो वहाँ जो भी प्रोग्राम होता था बड़े बड़े असातिज़ा आते थे, तो उसमें मैंने अफसाने के बजाय एक मजमून पढ़ा था, फहश लिटरेचर और हमारा मुआशरा।
1: जी।
0: तो जब काजी अब्दुस्सत्तार साहब आए अपनी सदारती तकरीर करने के लिए, तो उन्होंने कहा कि मियाँ ये उम्र इस तरह के मजमून लिखने की नहीं है, साइकिल उठाइए, अब्दुल्ला कॉलेज जाइए, चक्कर लगाइए, उसके बाद कुछ अच्छी चीज़ लिखिए, अफसाने वगैरह लिखिए। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा, और शायद वो काजी अब्दुस्सत्तार साहब इस तरह की बात नहीं कहते
1: जी।
0: तो मैं उसी तरह के इस्लाही मजामी लिखता रहता। तो काजी अब्दुस्सत्तार साहब के कहने की वजह से मेरा जहन जरा इस तरफ आया कि नहीं, मुझे अफसाने लिखने चाहिए
1: लिखने।
0: और उसके बाद हमने अफसाने लिखने शुरू किए।
1: जो तख्लीकी जहन के लोग रहे, शायर रहे या अफसाना नगार रहे, तनकीद की गिरफ्त में आए तो वो अपनी तख्लीकियत भूल गए या उस पर कम ध्यान दिया। मिसाल के तौर पर प्रोफेसर आले अहमद सुरूर साहब, बड़े अच्छे शायर लेकिन नक्कात की हैसियत से जाने जाते हैं। प्रोफेसर शमीम हनफी, बड़े अच्छे शायर लेकिन नक्कात की हैसियत से जाने जाते हैं। शमसुर्रहमान फारूकी भी शायरी करते थे लेकिन शायर की हैसियत से शोहरत नहीं है। आप ख़ुद नक्कात भी हैं, तो आपकी तनकीद ने आपकी इस तख्लीकी सलाहियत को कहाँ कहाँ और कैसे मुतासिर किया है?
0: ज़ाहिर है जब तनकीद आप लिखने लगते हैं तो तख्लीक की तरफ से तकरीबन हट जाते हैं। तनकीद लिखने का मतलब यह है कि फिर आपने जब इस तरह के मजामीन लिखने शुरू किए तो आपकी बहुत सी मसरूफियात बढ़ जाती हैं, सेमिनार हैं, रसायल हैं, फिर फरमाइशी मजमून लिखना पड़ता है, सेमिनार के लिए तैयारी करनी पड़ती है, तो तख्लीकी काम तो इसे मुतासिर होता है।
1: जी।
0: लेकिन मुझे लगता है कि तख्लीक से नक्काद को ज़्यादा फ़ायदा होता है। वो नक्काद ज़्यादा बेहतर हुए हैं जो तख्लीककार हैं। ये मंटो से शुरू करके देख लीजिए आप, जब असमत चौकताई का अफसाना लिहाफ आया तो मंटो से मिलने गई, वो मंटो ने कहा कि आपका अफसाना बड़ा अच्छा है लेकिन उसमें आखिरी जुमला जो है कि कोई मुझे लाख रुपये भी दे तो मैं ये ना बताऊं कि मैंने लिहाफ के अंदर क्या देखा, इसको अगर आप हटा दें तो आपका अफसाना बहुत अच्छा होगा। असमत चौकताई को उस वक्त ये बात बुरी लगी क्योंकि उन्होंने अफसाना लिखा था, अफसाना निगार को अपना एक एक लफ्ज़ प्यारा होता है, तो उनको लगा ये तो गैर ज़रूरी बात कह रहे मंटो। लेकिन बाद में उनको एहसास हुआ तो वो अब जो हम अफसाना पढ़ते हैं लिहाफ, तो उससे वो जुमला हटा हुआ है। और सही बात यह है कि उस जुमले के खारिज करने के बाद ही वो अफसाना लिहाफ लिहाफ बना है। सैयद मोहम्मद अशरफ की भी बाज़ तनकीदी तहरीर पढ़ करके देख लीजिए, या मुमताज़ शीरीं थी, या इस तरह खुद प्रोफेसर मोहम्मद हसन, शमसुर्रहमान फारूकी, तो इनको तनकीद की वजह से तख्लीक इनकी मुतासिर हुई होगी, बिला शुबा हुई होगी, लेकिन तख्लीक से इनकी तनकीद को फ़ायदा बहुत हुआ। और मेरे ख्याल से शमसुर्रहमान फारूकी की सबसे बड़ी खूबी यही थी कि वो बेसिकली तख्लीक निगार थे। उनकी बारीकियों से जो आदमी अच्छी तरह वाकिफ़ हो तो उनकी तनकीद तो अच्छी होगी, क्योंकि तनकीद का तमाम तरदार व मदार तख्लीक पे ही होता है। तो मुझे भी लगा कि तख्लीक जो हमने शुरू में की अफसाने के हवाले से, नज़में तो खैर बाद में लिखनी शुरू की, तो उसका मुझको फ़ायदा हुआ तनकीद लिखने में और काफ़ी मदद मिली। तो यही वजह है कि मैं कोशिश करता हूँ कि हर चीज़ को नई जहत से देखूँ।
1: आपकी किताब है नज़माने, अब ये सबको चौंकाने वाली किताब है, इसलिए कि एक तो अफसाने या नज़्म, और नज़्म और अफसाने को मिला के आपने एक नई चीज़ बनाई नज़माने, तो एक नया तजर्बा भी है। ये नज़माने क्या है और ये कैसे ख्याल आया आपको?
0: जी हाँ, असल में ये हुआ कि इस तरह की इस्तिलाहात साजी का ज़माना है, लोग करते रहते हैं। जैसे फिक्शन की तनकीद को लोग क्रिक्शन कहने लगे, यानी क्रिटिसिज्म और फिक्शन। नज़माने जब आप पढ़ेंगे तो इसकी जितनी नज़में आप पढ़ेंगे

0: छोटी हो या बड़ी हो, तो उसमें एक अफसाना आपको ज़रूर मिलेगा।
1: जी
0: तो इसीलिए हमने सोचा कि नज़्म प्लस अफसाने,
1: जी
0: तो नज़माने कर दें, इसीलिए हमने इसका नाम नज़माने रखा। और मेरे जहन में ये आया कि ये नाम आमतौर से इस तरह का रखते नहीं हैं लोग, और आप देखेंगे कि उसमें जितनी नज़में हैं उसमें
1: जी
0: कोई ना कोई अफसाने की खूबू आपको ज़रूर मिल जाएगी।
1: अब्बास साहब, आप अफसाने भी लिखते रहे, नज़में भी लिखते रहे, जब शायरी शुरू की आपने, हमारे यहाँ गज़ल का गलबा था, गज़ल सबसे मकबूल सिन्फ़ सुखन रही। आम तौर पे शायर जब शायरी का आगाज़ करते हैं तो गज़लें कहते हैं, क्या आपने गज़लें कही हैं इब्तदा में, उसके बाद नज़मों की तरफ आए, या इब्तदा से ही सिर्फ नज़मों की तरफ रुझान रहा आप?
0: नहीं, मैंने कभी गज़ल नहीं कही। और अख्तरुल ईमान साहब ने अपने किसी इंटरव्यू में कहा था,
1: जी
0: लोगों ने उनसे भी पूछा कि आपने गज़लें क्यों नहीं लिखी, नज़में सिर्फ लिखी,
1: जी
0: तो उनका जवाब यह था कि गज़ल अपने सेचुरेशन पॉइंट पे पहुंच चुकी थी गालिब के ज़माने में,
1: जी
0: तो उससे ज़्यादा कोई कुछ कर नहीं सकता था गज़ल में। तो इसी वजह से हमने सोचा गालिब से तो मुकाबला हो नहीं सकता है, तो नज़में शुरू की। तो मुझे ये लगा कि नज़्म मेरे लिए कहनी ज़्यादा आसान है। आप ये भी देखेंगे कि पाबंद नज़में हमने बहुत कम कही हैं,
1: जी
0: उसकी वजह यह है कि उरूज़ मुझे लगा कि यह ख़ासा मुश्किल फ़न है,
1: जी
0: इसमें काफ़ी पाबंदियाँ भी हैं और मुश्किल भी है, तो
1: जी
0: आसान तरीक़ा क्यों न चुन लिया जाए। आज़ाद नज़में, मुर्रा नज़में, नसरी नज़में इस तरीके की हैं।
1: तो क्या ही अच्छा होता है कि इस मौके से अगर आप अपनी कोई नज़्म सुना देते हमें। मुख्तसर नज़में भी कहीं आपने, तवील नज़में भी लिखी हैं आपने, कोई मुख्तसर सी नज़्म अगर इस मौके से सुना दें तो बड़ी इनायत हो।
0: चलिए एक बहुत छोटी सी नज़्म आपको सुनाते हैं, इसका उनवान है चलो अब इश्क करते हैं।
1: चलो अब इश्क करते हैं।
0: हमेशा पढ़ना लिखना भी बहुत अच्छा नहीं होता, फसाना शायरी तदरीस आखिर कब तलक यूं ही, उमूरे खानादारी महफिल इल्म अदब को त्याग देते हैं, ये सोशल मीडिया की बेतुकी बातों तमाशों से रिहाई पा ही लेते हैं, और दुनिया के अलायक से मुनज़्ज़ह बावजू होकर चलो अब इश्क
1: चलो अब
0: करते
1: इश्क
0: हैं।
1: करते हैं, अच्छा है इस बावजू इश्क करने का। बहुत खूब, अच्छी खूबसूरत नज्म है।
0: और ये कोई बहुत बड़ी शायरी है नहीं हमारी, तो बस ये जायका तब्दील करने के लिए मुझे लगा कि तनकीद की तरफ आदमी कब तक रहे, तख्लीक को भी कुछ राह देनी चाहिए
1: तो
0: अपनी
1: कभी कभी
0: जिंदगी
1: अफसाने
0: में।
1: भी लिख लेते हैं और कभी नज्में भी।
0: जी
1: अफसानों शायरी से अलग हटके, आपकी जो तदरीसी खिदमात है उससे अलग हटके, एक बात और मेरे जहन में कि एक हिंदुस्तान का बहुत बड़ा इदारा है उर्दू का, जिसे हम कौमी काउंसिल बराए फरोगे उर्दू जबान के नाम से जानते हैं, हुकूमत हिंद का ये बड़ा इदारा है, इस इदारे से भी आपकी वाबस्तगी रही है, इससे आपकी कब वाबस्तगी हुई और किस शक्ल में हुई, और उसे क्या कुछ खूबसूरत यादें आपकी वाबस्ता हैं?
0: उसके जो वाइस चेयरमैन कहलाते हैं ना, वाइस चेयरमैन प्रोफेसर शमसुर्रहमान फारूकी थे,
1: जी
0: और डायरेक्टर हो गए थे प्रोफेसर अली जावेद साहब, तो इसकी जगह निकली प्रिंसिपल पब्लिकेशन ऑफिसर के लिए, तो हमने अप्लाई किया और हमारे कुछ साथियों ने अप्लाई किया,
1: जी
0: इंटरव्यू में मेरा सिलेक्शन हो गया। इदारत में मखमूर सईदी साहब थे, उस ज़माने में ये था कि हम प्रिंसिपल पब्लिकेशन ऑफिसर थे, और डायरेक्टर तक जो भी फाइल जाती है या किताब से मुतालिक, पब्लिशिंग से मुतालिक जितनी चीज़ें तय होती हैं वो प्रिंसिपल पब्लिकेशन ऑफिसर ही करता था।
1: जी
0: और हमारे ज़माने में काफ़ी प्रोग्राम भी हुए,
1: जी
0: मसलन नॉर्थ ईस्ट में, मणिपुर में, आसाम में, शिलोंग में, इस तरह के काफ़ी प्रोग्राम हुए। और ये जो अभी उर्दू भवन बना हुआ है नया वाला, तो उसके नोडल ऑफिसर हम ही थे कि बिल्डिंग कैसे बननी है, क्या क्या होना है, तो वो हम देख रेख करते थे उसका, मेरी निगरानी में बना था वो। हुआ ये कि जब अली जावेद साहब रहे, अली जावेद साहब के जाने के बाद कुछ दिनों तक डायरेक्टर होकर के रश्मि चौधरी आई, वो थी, उसके बाद फिर हमीदुल्ला भट्ट साहब आए, तो कुछ दिनों तक इनके साथ हम रहे, तो इस तरीके से हमें काम करने का और बहुत कुछ सीखने का, समझने का मौका मिला कि जो एक अदबी दुनिया होती है या तदरीसी दुनिया होती है उससे यह दुनिया किस तरह से मुख्तलिफ है। तो बहुत सारे तजुर्बात हुए, नए नए मुशाहदात हुए, तो बहुत कुछ सीखने जानने का मौका मिला मुझे।
1: बस अब आपसे बड़ी अच्छी गुफ्तगू हो रही है, मेरा तो दिल चाह रहा है कि ये गुफ्तगू यूं ही जारी रहे, हम सुनते रहें आपको। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में और शोबे उर्दू के बारे में आपसे ज़रूर कुछ पूछूंगा, लेकिन उससे पहले मेरा दिल चाहता है कि मैं दो तीन चार सवाल बिल्कुल छोटे से, जिनका एक जुमले में आप जवाब दे सकते हैं। आप एक अफसाना निगार हैं, शायर हैं, लेकिन आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में शोबे उर्दू के सदर भी हैं, बड़ा शोबा है आपका और उर्दू की बड़ी पढ़ाई वहाँ पर हो रही है। मैं आपसे एक सवाल जो पूछना चाह रहा हूँ वो मैं आपकी पसंद के बारे में पूछूंगा। मिसाल के तौर पे आपसे पूछूं कि आपका पसंदीदा अफसाना निगार कौन है?
0: सुरेंद्र प्रकाश।
1: आपका पसंदीदा नावल निगार कौन है?
0: मेरा पसंदीदा नावल निगार शमसुर्रहमान फारूकी, एक ही नावल अगरचे उन्होंने लिखा है।
1: आपके पसंदीदा कौन है उर्दू के नक्काद?
0: اردو کے نقاد میں میں سب سے زیادہ پسند کرتا ہوں

0: और लड़की में यू नो व्हाट आई मीन।
1: माय गुडनेस, कौन है वो, क्या नाम है उनका?
0: तुमको बता देता हूँ लेकिन देखो यानी समझी।
1: ओफो, हद है, कान में बोलो।

0: कल जब लड़का कॉलेज आया लड़की भी साथ आई।
1: अच्छा?
0: मैंने पूछा ये सब क्या है,
1: क्या बोले हो?
2: बोलेंगे क्या,
0: लड़का काफी झेप गया और लड़की भी चरमाई।
3: जब से दोनों एक हुए हैं ये होता है अक्सर, लड़की का जब नाम पुकारा लड़का बोला यस सर।

0: खेल खिलाड़ी खेलों का आईना।
1: खेल खिलाड़ी सुनने वाले सभी श्रोताओं को नवीन कुमार शर्मा का नमस्कार। आज जापान के आइची नागोया में चल रहे एशियाई खेलों में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी है, पदकों का सिलसिला कायम है और मेरे साथ हैं
2: शिवांश रक्षित। नमस्कार।
1: तो शिवांश, आज आइची नागोया में जो हुआ उनका जो शानदार प्रदर्शन है, बात ईशा सिंह की करें, शूटिंग में उन्होंने बेहद रोमांचक मुकाबले में उनकी टक्कर हुई चीन की शूटर से और 5 शूट ऑफ उन्होंने उस मुकाबले में खेले और अंततः सिल्वर मेडल अपने कब्जे में करने में सफल रही। इसके अलावा भी कुराश में भी पदक है, ट्रैक एंड फील्ड से भी पदकों का एक सिलसिला जारी है और अभी इवेंट चल रहे हैं। जैसे अपडेट हमें मिलेगी हम जरूर आपको अवगत कराएंगे। इसके अलावा भी शानदार प्रदर्शन है, हॉकी में भी मुकाबला बांग्लादेश से होना है, इसमें भी आपको अपडेट कराएंगे। लेकिन फिलहाल अभी तक जो पदक आए हैं और क्या सिलसिला है और कैसा मुकाबला रहा शूटिंग में, इन सब पर पेश है ये रिपोर्ट।
3: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।
1: जापान के आईची नगोया में चल रहे एशियाई खेलों में भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन जारी है। निशानेबाजी में ईशा सिंह ने रजत पदक जीतकर देश का गौरव बढ़ाया है, वहीं कुराश में भी भारत की झोली में पदक आ गया है। मुक्केबाजी के रिंग में भी बॉक्सरों का दमदार प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, 5 भारतीय बॉक्सर सेमीफाइनल में पहुंचकर पदक पक्का कर चुके हैं। उधर स्क्वैश में भी भारतीय खिलाड़ियों का अभियान लगातार जारी है, व्यक्तिगत स्पर्धाओं में 3 पदक जीतने के बाद अब टीम स्पर्धा में भी भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार शुरुआत की है। कुल मिलाकर भारतीय खिलाड़ियों के हौसले बुलंद है, पदकों की उम्मीदें लगातार बढ़ रही है। आइए नजर डालते हैं एशियाई खेलों में भारत के आज के प्रदर्शन पर। निशानेबाजी में भारत की ईशा सिंह ने महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल व्यक्तिगत स्पर्धा में बेहद कड़े मुकाबले में रजत पदक अपने नाम किया। महज एक निशाने से वह स्वर्ण पदक हासिल नहीं कर सकी, लेकिन लगातार 5 शूट ऑफ का यह मुकाबला वाकई बेहद कांटेदार था। किस साल की ईशा इस वर्ग की मौजूदा विश्व की नंबर 1 शूटर है। उन्होंने रजत पदक की होड़ में बने रहने के लिए 3 शूट ऑफ जीते, इसके बाद स्वर्ण पदक के मुकाबले के लिए उन्हें चीन की शियाओ जियारुई शुआन के साथ 2 और शूट ऑफ से गुजरना पड़ा। निर्धारित सीरीज के बाद ईशा और चीनी शूटर दोनों के 38-38 अंक थे, लेकिन अंतिम निशाने में ईशा चूक गई और उन्हें दूसरे स्थान से संतोष करना पड़ा। जीत के बाद ईशा ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा,
4: Go for a really good meal. Me and my coach Jonathan, we're big time foodies, so we're gonna go and have a lavish meal. Yeah, I gave quite a show to the audience. Thank you. But I think, of course, I was not expecting it to go like this. I had to really strive and linger for the medal. But I think this was meant to be memorable, and that is why it went like that. But I'm really grateful for the experience. Looking back, I think I had fun. In my case, it was very helpful because my hand was getting unexpectedly tired and very tight towards the match. I think if it wasn't for those breaks and those errors that happened, maybe it looked like breaking my zone, but it actually helped me. So maybe call it God's grace that it was meant to happen.
1: उत्तर कोरिया की किम हियोन सुक ने शूट ऑफ में हारने के बाद 34 अंक के साथ कांस्य पदक जीता। इससे पहले 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता मनु बाकर 25 मीटर पिस्टल की इस स्पर्धा के फाइनल में जगह नहीं बना सकी। मनु 589 अंक के साथ 11वें स्थान पर रही, जो फाइनल के लिए नाकाफी था। ईशा ने क्वालिफिकेशन में 580 अंक जुटाए थे। मनु इससे पहले 10 मीटर एयर पिस्टल में भी पदक जीतने में नाकाम रही थी। भारतीय महिला टीम भी पदक की दौड़ में थी, लेकिन राही सरनोबत की एक चूक टीम पर भारी पड़ी। प्रत्येक सीरीज में 5 निशाने लगाने होते हैं, राही ने चौथी सीरीज में 39 अंक ही बनाए, इसके बाद पदक की उम्मीदें खत्म हो गई। सरनोबत 568 अंक के साथ 30वें स्थान पर रही। कुराश में भारत की पिंकी बलहारा ने महिलाओं के 78 किलोग्राम से कम भार वर्ग में कांस्य पदक अपने नाम किया। उन्होंने सेमीफाइनल में पहुंचकर अपना मेडल सुनिश्चित किया, हालांकि सेमीफाइनल में उन्हें दक्षिण कोरिया की सुमिन मो से 0-5 से हार मिली। पिंकी ने क्वार्टर फाइनल में दक्षिण कोरिया की लिम गराम को 3-0 से हराया था। यह एशियाई खेलों में कुराश में पिंकी का दूसरा पदक है। उन्होंने 2018 के जकार्ता एशियाई खेलों में 52 किलोग्राम से कम भार वर्ग में सिल्वर मेडल लिया था। स्क्वैश में भी शानदार प्रदर्शन जारी है। भारतीय पुरुष स्क्वैश टीम ने पूल ए में चीन को 3-0 से, जबकि महिला टीम ने शुरुआती झटकों से उभरकर पूल सी में चीन को 2-1 से हराया। पुरुष टीम में सूरजचंद, वीर चौटरानी, वेलावन, सेंथिल कुमार ने अपने अपने मुकाबले जीते। सूरज ने चीन के डू शाओ चियान को 11-4, 11-3, 12-10 से 30 मिनट में पराजित किया। वीर ने यू हाईजेन को 20 मिनट में 11-5, 11-5, 11-3 से हराया और भारत की बढ़त दोगुनी कर दी। उसके बाद सेंथिल कुमार ने जो पेंगलिन को 11-3, 11-2, 11-4 से मात दे दी। महिला टीम में शामिल समीना रियाज को जीवान यिन के खिलाफ 5

0: खेमू के मुकाबले में 11-8, 11-6, 9-11, 9-11, 12-14 से हार मिली। इसके बाद तन्वी खन्ना ने झांग यूनिंग को 11-3, 11-5, 11-5 से हरा कर भारत की वापसी कराई। उन्होंने सिर्फ 17 मिनट में ये मुकाबला जीत लिया। अनुभवी जोशना चिनप्पा ने इसके बाद लियू जियू को 22 मिनट में 12-10, 11-4, 11-6 से हराकर भारत को 2-1 से जीत दिला दी। इससे पहले व्यक्तिगत मुकाबले में अनंत सिंह, अभय सिंह रजत पदक और मिश्रित युगल में जोशना संतिल कुमार की जोड़ी कांस्य पदक दिला चुकी है। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम खराब मौसम के कारण अफगानिस्तान के खिलाफ क्वार्टर फाइनल रद्द होने से मैदान पर उतरे बिना ही सेमीफाइनल में पहुंच गई। भारतीय टीम को बेहतर रैंकिंग के कारण आगे बढ़ने का मौका मिला। भारतीय टीम T20 अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग में शीर्ष पर है, जबकि अफगानिस्तान 10वें स्थान पर है। इसी तरह अन्य क्वार्टर फाइनल में पाकिस्तान की टीम भी बेहतर रैंकिंग के कारण सेमीफाइनल में पहुंच गई। उसका भी हांगकांग के खिलाफ होने वाला मुकाबला बारिश के कारण रद्द हो गया। नागोया में पिछले कई दिनों से बारिश हो रही है, कम ओवरों का मैच भी संभव नहीं था। भारत का सामना मंगलवार को यहां नेपाल और श्रीलंका के बीच होने वाले मैच के विजेता से होगा। अगर यह मैच भी रद्द हुआ तो भारत और श्रीलंका के बीच सेमीफाइनल मुकाबला होगा। भारतीय टीम की कप्तानी श्रेयस अय्यर कर रहे हैं, जबकि कोचिंग की जिम्मेदारी VVS लक्ष्मण संभाल रहे हैं। भारतीय टीम में तेज गेंदबाज बुमराह और 15 साल के वैभव सूर्यवंशी सहित कई स्टार क्रिकेटर मौजूद हैं। मुक्केबाजी में ओलंपिक कांस्य पदक विजेता लवलीना बोरगोहेन और राष्ट्रमंडल खेलों की चैंपियन मुक्केबाज प्रिया गनगास ने क्वार्टर फाइनल में जीत के साथ सेमीफाइनल में पहुंचकर 2 और पदक पक्के कर लिए। 3 मुक्केबाज अंकुश पंघाल 80 किलो भार वर्ग, नरेंद्र बरवाल 90 प्लस भार वर्ग पुरुष वर्ग से और महिला वर्ग से प्रवीण हुड्डा 65 भार वर्ग में पहले ही अंतिम 4 में पहुंच चुके हैं। लवलीना ने 75 भार वर्ग में दक्षिण कोरिया के सियोंग सियोन को क्वार्टर फाइनल में 5-0 से हराया। लवलीना ने एशियाई खेलों में अपना लगातार दूसरा पदक तय किया है। पिछली बार रजत पदक जीता था। प्रिया ने 60 किलो के क्वार्टर फाइनल में तजाकिस्तान की मिजगोना सामादोवा को 5-0 से हराया। महिला युगल टेनिस में अंकिता रैना और ऋतुजा भोंसले कजाकिस्तान की एलेना डालिना और यूलिया पुतिनसेवा से 7-5, 3-6, 5-10 से हार गईं। पहला सेट भारतीय जोड़ी ने जीता, लेकिन दूसरे सेट में कजाकिस्तानी जोड़ी ने वापसी की, लेकिन निर्णायक सेट के टाई ब्रेकर में हार गई। अभी अंकिता और ऋतुजा के पास मिश्रित युगल में मौका है। पुरुष एकल में सुमित नागल दक्षिण कोरिया के होंग सियाई चान के खिलाफ पहले सेट में 3-2 से आगे थे, जब बारिश के कारण खेल रोकना पड़ा। मैच अब कल यानी मंगलवार को होगा। नागल हाल ही में सियोल में डेविस कप में अपने दोनों एकल मुकाबले कोरियाई खिलाड़ियों से हार गए थे। स्पेक्टेकुलर के महिला युगल में भारतीय टीम ग्रुप चरण में हारकर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं कर सकी। मैनुन सुक्रू और लेहर तुम्बी देवी इलांगबाम की जोड़ी जापान से 1-2 से हार गई। इससे पहले दक्षिण कोरिया और फिलीपींस ने भी भारतीय टीम को 2-0 से हराया था। हर ग्रुप से शीर्ष 2 टीमें सेमीफाइनल में पहुंचती हैं। एशियाई खेल में तीरंदाजों का भी शानदार प्रदर्शन जारी है। कंपाउंड वर्ग में तीरंदाजी में साहिल जाधव, गणेश मणिरत्नम और कुशल दलाल की भारतीय पुरुष टीम ने भूटान को कल 235-232 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। सेमीफाइनल में उनका मुकाबला दक्षिण कोरिया से होगा। कंपाउंड की महिला टीम में चिकिता तनिपुर, ज्योति सुरेखा मैनम और प्रतीका प्रदीप की भारतीय महिला टीम ने कजाकिस्तान को 233-230 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। उनका सामना भी दक्षिण कोरिया से होना है। कंपाउंड मिश्रित टीम भारत की मजबूत दावेदारी है। कंपाउंड मिश्रित टीम में चिकिता तनिपार्थी और साहिल जाधव की जोड़ी ने शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने क्वार्टर फाइनल में कजाकिस्तान को 159-154 से मात दी। कंपाउंड मिश्रित टीम स्पर्धा का महत्व इसलिए भी बढ़ गया है क्योंकि यह स्पर्धा लॉस एंजलिस 2028 ओलंपिक में पहली बार शामिल होगी। एकल मिश्रित टीम में धीरज बोमा देवरा और कुमकुम अनिल मोहर की जोड़ी ने भी लगातार 2 जीत हासिल की। प्री क्वार्टर में UAE को 6-0 से हराया, क्वार्टर फाइनल में वियतनाम को 6-0 से मात दी।
1: एशियन गेम्स 2026 आईटी नगोया।
0: भारत के इस प्रदर्शन पर हमने बात की जानी मानी खेल पत्रकार मोना पार्थसारथी से, तो क्या कहा उन्होंने आइए जानते हैं।
2: बिल्कुल, बहुत ही करीबी मुकाबला था जो महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में, और यहाँ पर गौर करने वाली बात है कि काफी समय से हम शूटिंग में गोल्ड, जो एक गोल्ड आया है अभी तक, काफी इंतजार था और आज एकदम लग रहा था कि ईशा जो है वो गोल्ड दिलाएंगी, लेकिन उनकी तरफ से काफी कोशिश भी रही, 5 शूट ऑफ लगातार चले हैं और आखिर में जब एक निशाना जो उनका चूका उसके बाद उनको सिल्वर से संतोष करना पड़ा और वो बोली भी कि मेरे करियर का सबसे लंबा मुकाबला था और आखिर में मेरे हाथ दुखने लगे थे। तो यहाँ पर बिल्कुल बहुत ही करीबी एक मुकाबला था और खुशी की बात यह है कि यहाँ पर वो सिल्वर जीतने में कामयाब रही, क्योंकि मनु भाकर से उम्मीदें थी, इसी वर्ग में वो उतरी थी और पदक फाइनल में प्रवेश नहीं कर पाई थी, तो सारी नजरें ईशा पर लगी हुई थी और वो अपेक्षाओं पर बिल्कुल खरी उतरी।
3: जी बिल्कुल, मनु भाकर से भी एक उम्मीद की जा रही थी, इसको कहीं ना कहीं एक दिन की भी बात होती है या कहीं ना कहीं आप एक उम्मीदों का दबाव हो जाता है।
2: जी देखिए, इतने वेटरन खिलाड़ी है, 2 ओलंपिक मेडल जीत चुकी है, तो दबाव खेलने के लिए तो ये लोग ट्रेन होते हैं, लेकिन दिन की बात जो

0: जी आपने कहा कि वो बिल्कुल सही बात है, ये मुकाबला इतना कड़ा था चीनी कोरियाई शूटर्स पे, और वहां पर कहीं लगता है क्वालिफिकेशन में ही थोड़े से हेर फेर से ही आपकी रैंकिंग चेंज हो जाती है। तो मुझे लगता है मनु के साथ भी ऐसे ही कुछ हुआ, क्योंकि 11वें स्थान पर रही थी वो क्वालिफिकेशन में, जो उनके स्टैचर की शूटर के हिसाब से देखा जाए तो बहुत ही बिलो पार परफॉर्मेंस रहा है।
1: जी, और राही सरनोबत भी उतना बेहतर नहीं कर पाई।
0: बल्कि राही जो 2018 में गोल्ड मेडल ले चुकी हैं और टीम स्पर्धा में भी पदक की ओर बढ़ रहा था, लेकिन वहां राही की एक गलती हुई जिसकी वजह से पदक की दौड़ से भारत बाहर हो गया। तो
1: निशानेबाजी के अलावा बात करें, स्क्वैश में हमने 3 मेडल लिए हैं, 2 हमारे खिलाड़ी फाइनल में पहुंचे दोनों वर्गों के, अनाहत सिंह, अभय सिंह। इसके अलावा जोशना चिनप्पा लगातार मेडल जीतती हैं एशियाई खेलों में, यहाँ भी उनका मेडल रहा। हालांकि टीम स्पर्धा में भी भारत ने दोनों वर्गों में अच्छा किया।
0: जी बिल्कुल, बहुत अच्छा किया, और सबसे बड़ी बात है कि हम जब मेडल टेली देख रहे हैं उसमें चाइना का जिस तरह से दबदबा दिखाई दे रहा है, तो आज भारतीय पुरुष टीम ने चाइना को ही हराया और महिला टीम ने भी चाइना को हराया। पुरुष टीम का मुकाबला तो बिल्कुल एक तरफा ही रहा, 3-0 से भारत ने जीत दर्ज की है। महिला टीम में जरूर एक मुकाबला हमने गवाया, लेकिन उसके बाद वापसी करते हुए 2-1 से जीत दर्ज की, तो एक बहुत ही अच्छा टीम स्पर्धा में शुरुआत रही।
1: खासतौर से ये ओलंपिक इवेंट हो रहा है तो कहीं ना कहीं ये जो प्रदर्शन है इससे एक मनोबल मजबूत होता है। हालांकि अगर डायरेक्ट क्वालिफाई कर जाते तो एक अलग सोने पे सुहागा हो जाता।
0: जी बिल्कुल, अभय और अनाहत से तो यही उम्मीदें थी, और लग रहा था दोनों के फॉर्म को देखते हुए कि वो यहाँ से सीधे ओलंपिक क्वालिफिकेशन लेंगे, गोल्ड मेडल जीतेंगे, लेकिन फाइनल में जाकर उनका वो जो लय है वो कायम नहीं रह सकी, और रजत से संतोष करना पड़ा और सीधे क्वालिफाई करने का मौका भी चला गया।
1: जी बिल्कुल, और अगर बॉक्सिंग की बात करें तो वहां भी भारतीय पंच का दम नजर आ रहा है। जिस तरह से अभी हमारे 5 मुक्केबाज पहुंच गए हैं सेमीफाइनल में, पदक सुनिश्चित कर लिए हैं। आज लवलीना और प्रिया ने जीत हासिल की है, पहले अंकुश है, अरविंद हुड्डा है, इसके अलावा
0: जी
1: नरेंद्र बरवाल है, वो पहुंच चुके हैं सेमीफाइनल में।
0: उम्मीद यही करेंगे कि जो पदक का रंग है वो पीला हो, क्योंकि बहुत इंतजार करना पड़ रहा है। सिल्वर और ब्रॉन्ज तो लगातार हर रोज आ ही रहे हैं, लवलीना से खास तौर पर उम्मीद होगी, क्योंकि जापान उनके लिए लकी रहा है। याद होगा हम सभी को कि टोक्यो में उन्होंने ओलंपिक मेडल जीता था जापान में ही, और अभी यहाँ पर जिस अंदाज में वो जीत कर आगे गई है, 5-0 से उन्होंने कोरियाई मुक्केबाज को हराया है, तो अच्छे फॉर्म में है। और उसके बाद प्रिया ने पिछड़ने के बाद 60 किलो क्वार्टर फाइनल में जिस तरह से वापसी की है, तो यहाँ उम्मीद प्रिया और लवलीना से तो जरूर होगी। लवलीना का सामना अब 70 किलो में उतरी है वर्ल्ड चैंपियन कजाक मुक्केबाज से होगा, तो थोड़ी सी कठिन फाइट होगी। जो उनके मुक्केबाज प्रतिद्वंद्वी है वो 70 किलो में वर्ल्ड चैंपियन रही है, तो यहाँ पर देखना होगा कि वो कैसे सामंजस्य बिठाती है। और जैसे आपने कहा, परवीन हुड्डा, अंकुश पंघाल, नरेंद्र बेरवाल सब पदक जरूर पक्के कर चुके हैं, और उम्मीद यही करेंगे कि बॉक्सिंग रिंग से जो है वो हमें सोने के तमगे, पीले तमगे मिले।
1: जी बिल्कुल, पदक की बात है तो कुराश में हमने जीता है, पिंकी।
0: जी पिंकी बलहारा ने महिलाओं के 78 किलो से कम भार वर्ग में दक्षिण कोरिया की सुमोन मो को हराकर पदक अपने नाम किया, और एशियाई खेलों में ये पिंकी का दूसरा पदक है। आपको याद होगा जकार्ता में 2018 में भी उन्होंने 52 किलो से कम भार वर्ग में पदक जीता था, और वो डेब्यू था कुराश का इन खेलों में। तो पिंकी ने बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया, और दिल्ली में जेएनयू के पास में जो नेब सराय में वहाँ अकेडमी में ये प्रैक्टिस करती हैं, और लगातार काफी अनुभवी खिलाड़ी हैं, तो अपेक्षा थी उनसे पदक की, और उस पर बिल्कुल खरे उतरते हुए उन्होंने ये पदक जीता। एथलेटिक्स में तो आज काफी बिजी डे है, क्योंकि बैक टू बैक लगातार काफी सारे आज फाइनल होने हैं। हर्डल्स है, स्टीपल चेस है, लॉन्ग जंप है, फिर रिले टीम्स के हैं मुकाबले।
1: जिस तरह प्रदर्शन चल रहा है, शानदार प्रदर्शन है, और उम्मीद करते हैं कि ये प्रदर्शन ऐसे ही जारी रहेगा और भारत का पदक तालिका में स्थान और ऊपर आएगा, और भारतीय खिलाड़ी ऐसे ही पदक जिताते रहेंगे। और उम्मीद तो ये की जानी चाहिए कि स्वर्ण पदकों की संख्या भी और बढ़ेगी।
0: जी बिल्कुल, यही उम्मीद है। और हॉकी और जिस फॉर्म में टीम चल रही है, दोनों महिला और पुरुष टीमें, तो हॉकी के मैदान से भी 2 गोल्ड मेडल आने की पूरी उम्मीद।
1: गोल्ड की बात की आपने तो महिला टीम ने जिताया है, नारी शक्ति का दम दिखा है वहाँ क्रिकेट में, और यहाँ पुरुष टीम का मुकाबला हालांकि बिना बारिश के ही समाप्त हो गया, सेमीफाइनल में पहुंच गई है टीम बेहतर रैंकिंग के कारण।
0: खेल कर पहुंचने की जो फीलिंग होती है वो थोड़ी अलग ही होती है।

0: कितनी पुरानी है, उसका लास्ट इंस्पेक्शन कब हुआ, रियल टाइम, और वो जियो लोकेटेड है, उसका लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड सब उसमें दिया हुआ है। उसके माध्यम से आप सीधे देख सकते हैं कि कौन से गोडाउन में कौन सा माल, कौन सा दलहन, कौन सा तिलहन किस वर्षों का रखा हुआ है। इसके अलावा एक हम लोगों ने कल्याणकारी बनाया कि किसान से हम उनका दलहन तिलहन तो ले रहे हैं, लेकिन आज जो वही किसान भाई या बहन, उनके अगर बच्चे अगर वो किसी प्रतियोगिता में भाग लेना चाहते हैं, मेधावी हैं, लेकिन पैसे की कमी के कारण वो नहीं आगे पढ़ पा रहे हैं, तो चेयरमैन साहब के निर्देशन में ये निर्णय लिया कि नेफेड अपना शुद्ध लाभ का 1% उन मेधावी छात्रों के छात्रवृत्ति के लिए यूज करेगा। और मुझे बताते हुए खुशी है कि उस स्कीम का भी उद्घाटन माननीय सहकारिता मंत्री ने कर चुका, उसमें ऑलरेडी कुछ लोगों को हम लोग ने छात्रवृत्ति दी भी है। और मैं आप लोग से आग्रह करूंगा कि जो भी हमारे ऐसे किसान भाई हैं जो ई समृद्धि से जुड़े हुए हैं और उनके बच्चे को अगर कोई आने वाले पढ़ाई में अगर वो मेधावी हैं तो उनको 1,00,000 तक की स्कॉलरशिप हम लोग विभिन्न स्कीम में देते हैं, जिसमें वो मेडिकल की पढ़ाई करना चाहे, इंजीनियरिंग की पढ़ाई करना चाहे, सिविल सर्विसेज की पढ़ाई करना चाहे, या फिर अगर सीबीएसई या स्टेट बोर्ड में भी उनको अगर 90% से ऊपर नंबर आ रहे हैं 11th 12th करना चाहे, उनको अप टू 1,00,000 रुपीस हम लोग स्कॉलरशिप नेफेड अपने संसाधनों से देगा, कि किसान भाई अपने पैसों की कमी के कारण अपने बच्चों को पढ़ाने में ऐसा ना हो कि वो पढ़ा ना पाए।
1: नेफेड के प्रबंध निदेशक दीपक अग्रवाल द्वारा सहकार बंधुओं के समक्ष 69वीं सामान्य निकाय की बैठक का वार्षिक एजेंडा प्रस्तुत किया गया, जिसका सभी ने हाथ उठाकर समर्थन किया।
0: आज का जो प्रमुख उद्देश्य है कि जो एजीएम है उसके जो फॉर्मल एजेंडे हैं उसको मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। इसमें हम लोग जो वर्तमान वित्तीय वर्ष चल रहा है उसमें हमारी जो अनुमानित जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा एक्सपेंडिचर का, उसका अनुमोदन हर बार एजीएम से कराते हैं। तो जो इस वर्ष का हम लोगों ने अनुमानित जो टर्नओवर रखा है वो करीब करीब 45,000 करोड़ का रखा है, और जो शुद्ध लाभ हम लोग अपेक्षित कर रहे हैं इस बार 567 करोड़ कर रहे हैं। तो ये जो एनुअल बजट है वर्ष 2026-27 का, मैं एजीएम से अनुरोध करना चाहूंगा कि एस्टिमेटेड हमारा बजट एनुअल बजट को अनुमोदित करें। फीफा हमारी एक सब्सिडरी संस्था है जो 1274 जो हमारे एफपीओस को हैंडल करते हैं उसका काम करती है, वो 100% नेफेड की सब्सिडरी संस्था है। तो उसका भी जो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो भी हमारी जो प्रमोटर जो संस्था है नेफेड उसके समक्ष रखा जाना होता है, तो वो आपके समक्ष रखा गया है वर्ष फाइनेंशियल ईयर 25-26 का फीफा का फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसमें फीफा हमारी एक सब्सिडरी संस्था है 1274 जो हमारे एफपीओस को हैंडल करते हैं उसका काम करती है, वो 100% नेफेड की सब्सिडरी संस्था है। तो उसका भी जो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो भी हमारी जो प्रमोटर जो संस्था है नेफेड उसके समक्ष रखा जाना होता है, तो वो आपके समक्ष रखा गया है वर्ष फाइनेंशियल ईयर 25-26 का फीफा का फाइनेंशियल स्टेटमेंट।
1: और अंत में नेफेड के उपाध्यक्ष तरलोक सिंह ने सभी का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहा,
2: बहुत ही सत्कार जो चेयरमैन साहब जेठा भाई अहिर जी, मोहन भाई कुंडारिया जी, पूर्व चेयरमैन बजिंदर सिंह जी, श्री चंद्रपाल जी, अशोक ठाकुर जी और मेरे नेफेड बोर्ड के मौजूदा सभी सदस्यगण और कोने कोने से आए किसान भाई बहनों, मीडिया के साथियों और नेफेड के कर्मचारीगण, जैसा कि आपके सुझाव से बढ़कर कल्याण योजना के तहत 1% नेफेड ने किया है, तो आपका जो भी सुझाव होता है, जो भी समस्या होती है, नेफेड का बोर्ड, नेफेड के कर्मचारी उसको समाधान करने के लिए तत्पर रहते हैं। जो भी आपके मन में विचार हैं उनका सम्मान करते हुए आप सभी को मैं 69 वार्षिक जो सम्मेलन है एजीएम है उसमें आए हूँ, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।
1: और इसी के साथ नई दिल्ली के भारत मंडपम में नेफेड की 69वीं सामान्य निकाय की बैठक पर आधारित यह रेडियो रिपोर्ट अब सम्पन्न होती है। प्रस्तुति सहयोग दिनेश कुमार, संयोजन शिवनंदन लाल, प्रस्तुतकर्ता तुषार पाराशर।
3: तो अभी आप सुन रहे थे 29वां एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग की बिल्कुल रिपोर्ट सुन रहे थे। और निरंकार जी, अब भाई ये बताइए कि अब हम गीत की ओर बढ़े या फिर बहुत सारी चीजें हमारे दिमाग में है क्योंकि आज भगत सिंह का जन्मदिन भी है।
4: बिल्कुल, हमने अपने लोकरंजनी कार्यक्रम में भी जिक्र किया था कि आज शहीद भगत सिंह जी का जन्म दिन है और उनका जन्म 28 सितंबर 1907 में पंजाब के बंगा गाँव में हुआ था, जो अब पाकिस्तान में है। और उन्होंने क्रांतिकारी थे, वो हमारे आंदोलन में उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और देश को आज़ाद कराने के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। आज शहीद भगत सिंह हम सभी युवाओं के आदर्श हैं और हम उन्हें आज ये सभी याद कर रहे हैं। तो सुनते हैं उन्हीं से, जीवन से उनसे जुड़ा हुआ ये एक देशभक्ति गीत।

उस गौत में मर गया।

0: और मंजीत बहन, अभी हमारे
1: जी
0: भाई सुन रहे थे ये देशभक्ति गीत, और इसमें कलाकार थे यशपाल। और इसी के साथ हमारा आज का ग्राम संसार कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। सुनने वाले सब बहन भाइयों को राम
1: राम
0: राम।
1: राम।
0: इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे तुषार पाराशर और संयोजक शिवनंदन लाल।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम ग्राम संसार। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। 7 बजने को है, अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे समाचार। नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। भारत और संयुक्त अरब अमीरात स्थानीय मुद्रा में व्यापार के निपटान, भुगतान और संदेश प्रणालियों के एकीकरण और केंद्रीय बैंक के डिजिटल मुद्राओं से संबंधित पहलों के समय पर कार्यान्वयन के लिए कदम उठाने पर सहमत हुए हैं। दोनों पक्षों ने आज मुंबई में निवेश संबंधी भारत यूएई उच्च स्तरीय संयुक्त कार्यबल की 14वीं बैठक के दौरान इस समझौते पर सहमति जताई।

0: बैठक की सह अध्यक्षता वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और अबूधाबी निवेश प्राधिकरण के प्रबंध निदेशक शेख हामिद बिन जायद अल नहयान ने की। श्री गोयल ने कहा कि दोनों देशों के बीच निवेश बढ़ाने के लिए ऊर्जा, उद्योग, बुनियादी ढांचा और स्टार्टअप जैसे क्षेत्रों की पहचान की गई है।
1: Annually, we have been meeting regularly.
2: हम सालाना और नियमित रूप से बैठकें करते रहे हैं और दोनों पक्षों के व्यापारिक समूहों की संतुष्टि के अनुसार ठोस और महत्वपूर्ण मुद्दों का समाधान कर रहे हैं। आज हमने अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, पोत निर्माण, आधुनिक बंदरगाहों के विकास, खाद्य सुरक्षा, विशेष रूप से खाड़ी क्षेत्र के लिए कृषि नवाचार, लॉजिस्टिक्स के विस्तार, AI और उभरती प्रौद्योगिकियों पर मिलकर काम करने, ऊर्जा सुरक्षा के लिए बेहतर समन्वय स्थापित करने तथा फिनटेक क्षेत्र में अपने सहयोग का विस्तार करने जैसे क्षेत्रों में साझेदारी को बढ़ाने पर भी चर्चा की है।
1: एक्सपेंडिंग आवर कोऑपरेशन इन द फिनटेक सेक्टर।
0: विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा है कि मानव अंतरिक्ष उड़ान, स्टार्टअप और नए अंतरिक्ष पारिस्थितिकी तंत्र पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत फ्रांस अंतरिक्ष सहयोग ने एक नए चरण में प्रवेश किया है। डॉक्टर सिंह ने आज नई दिल्ली में फ्रांस के उच्च शिक्षा, अनुसंधान और अंतरिक्ष मंत्री फिलिप बैप्टिस्ट के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक के दौरान ये बात कही। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि देश ने पश्चिम एशिया में जारी संकट और होर्मुज जलडमरू मध्य में व्यवधान के बावजूद कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की आपूर्ति में आई चुनौतियों का अब तक सफलतापूर्वक सामना किया है। कोलकाता में मर्चेंट्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में श्री पुरी ने ये बात कही। उन्होंने आश्वासन दिया कि सरकार स्थिति पर लगातार नजर रख रही है और ये सुनिश्चित करेगी कि आपूर्ति में आए व्यवधान नियंत्रण से बाहर न हो। सरकार ने आज नई दिल्ली में पशुधन बीमा योजना पोर्टल की शुरुआत की। ये पोर्टल पशुधन बीमा के लिए एक एकीकृत डिजिटल मंच उपलब्ध कराएगा। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य पशुधन बीमा सेवाओं को अधिक पारदर्शी, प्रभावी और सुलभ बनाना है। संवाददाताओं से बातचीत में श्री सिंह ने कहा कि अब किसान बीमा के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे और पूरी प्रक्रिया की डिजिटल माध्यम से निगरानी की जाएगी। ये पोर्टल हिंदी और अंग्रेजी के अलावा 11 क्षेत्रीय भाषाओं में भी उपलब्ध होगा। सर्वोच्च न्यायालय ने 2,000 रुपये से अधिक के UPI लेनदेन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट MDR लागू करने के केंद्र सरकार के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। ये शुल्क 15 अक्टूबर से प्रभावी होने हैं। न्यायालय ने केंद्र सरकार, रिजर्व बैंक और अन्य प्रतिवादियों से जवाब मांगा है और 4 सप्ताह के अंदर अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया है। न्यायालय ने कहा कि यह मुद्दा कानूनी से अधिक तकनीकी है। देश में इस वर्ष अगस्त में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP द्वारा मापे गए औद्योगिक उत्पादन में वार्षिक आधार पर 8% की वृद्धि हुई। सरकार की ओर से जारी ताजा आंकड़ों से संकेत मिलता है कि औद्योगिक गतिविधियां का विस्तार स्वस्थ गति से जारी है। जापान एशिया खेलों में भारत ने आज भी पदक जीतने का सिलसिला जारी रखा है। निशानेबाजी, क्रिकेट, कुराश, एथलेटिक्स और मुक्केबाजी में खिलाड़ियों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। भारत ने आज अपने खाते में 8 और पदक जोड़े हैं। पुरुष क्रिकेट टीम भी सेमीफाइनल में पहुंच गई है। लंबी दूरी के धावक गुलवीर सिंह ने पुरुषों की 1500 मीटर दौड़ की फाइनल में व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के साथ रजत पदक जीता। वहीं महिलाओं की 5000 मीटर फाइनल में पारुल चौधरी ने कांस्य पदक हासिल किया। भाला फेंक स्पर्धा में यशवीर सिंह ने रजत पदक देश के नाम किया। भारत के ही रोहित यादव ने कांस्य पदक अपने नाम किया। पदक तालिका में भारत 4 स्वर्ण, 20 रजत और 21 कांस्य सहित कुल 45 पदकों के साथ 12वें स्थान पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, DRM 810 किलो हर्ट्स पर। संध्या के 7:05 हुए हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम कृषि जगत।

0: कृषि जगत कार्यक्रम सुनने वाले सब बहन भाइयों को राम
1: राम, राम।
0: मंजीत बहन
1: जी, निरंकार भाई,
0: भाई आज जो कृषि से जुड़ी जानकारी हमारे पास है, आज हम भाइयों से बातचीत करेंगे कृषि संबंध में। और हम जानते हैं कि जो पानी की हम जब बात करते हैं, बिना पानी के कोई भी फसल उगाना मुश्किल ही नहीं बल्कि असंभव है। इसीलिए पानी बहुत कीमती है, उसका बचाव करना जरूरी है। और कई फसलें ऐसी हैं जिनमें आप कम पानी से भी अच्छी उपज ले सकते हैं। हमारे देश के कुछ बारानी इलाके हैं, उनमें हम उन्हीं फसलों को शामिल करते हैं जिससे कि पानी की कम जरूरत के साथ भी हमें अच्छा उत्पादन मिल सके। और जब हम पलेवा करते हैं या हम अपने खेत की तैयारी अच्छी से करना चाहते हैं तो उसमें पानी की खपत बहुत होती है। लेकिन जो ज़मीन के अंदर जैसे इस समय बारिश हो रही है या पहली फसल की सिंचाई के बाद थोड़ी नमी बची है, तो ऐसी नमी को हम बचा कर रखते हैं मल्चिंग करके। और उस नमी के अंदर ही हम अगर सरसों और चने की फसल को लेना चाहते हैं, उसकी बिजाई कर देते हैं, तो अंकुरण के बाद वो फसलें हमें अच्छा उत्पादन दे सकती है। क्योंकि सरसों और चना ऐसी फसलें हैं जिनमें बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है, और चने के लिए तो बहुत ज़्यादा भूमि की तैयारी करने की भी ज़रूरत नहीं होती है, और ये हमें अच्छा उत्पादन दे देती हैं। तो जो संरक्षित मृदा है उसकी नमी से हम अपने खेत की तैयारी करके अच्छी फसल ले सकते हैं। तो ये कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए ताकि हम पानी की बचत करते हुए फसलों का उत्पादन भी अच्छे से ले सकें। और इसके अलावा जो हम जानते हैं कि हमारे किसान भाई इस समय रबी फसल की बिजाई की तैयारी कर रहे होंगे, क्योंकि अभी सितंबर समाप्त होने को है और जो खड़ी फसलें हैं उनका भी ध्यान रखना है। सब्जी की फसलें भी इस समय खेतों में होगी, तो हमारे किसान भाई इस बात का ध्यान रखें कि पर्याप्त नमी बनी रहे, और ज़रूरत से ज़्यादा पानी देने से बहुत अच्छी फसल नहीं होगी, ये भी हम बताना चाहेंगे। ज़रूरी है, अगर ज़्यादा फसल पानी आप देते हैं तो कई बार फसल को अधिक नमी से नुकसान भी हो सकता है। इसलिए जो सिफारिश वैज्ञानिक करते हैं उसी तरह से आपको इस्तेमाल करना चाहिए। और पानी की जब हम बात करते हैं तो स्प्रिंकलर विधि है, टपक विधि है, ये बताया जाता है कि आप इसका इस्तेमाल करके कम पानी का इस्तेमाल करते हुए भी भरपूर उत्पादन ले सकते हैं। और भरपूर उत्पादन आपको मिलेगा, साथ साथ गुणवत्ता भी आपकी फसल की अच्छी होगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा नमी में भी बीमारियां बढ़ती हैं। और इसी तरह से अगर उर्वरक भी ज़्यादा मात्रा में आप देते हैं उसका भी नुकसान होता है। बार बार हम कार्यक्रम में बताते हैं कि वैज्ञानिक जो आपको सलाह देते हैं, जब आप उसके मुताबिक अपनी कृषि को करते हैं आपका खर्चा भी कम आता है और उत्पादकता और गुणवत्ता दोनों ही आपको अच्छी मिलती है।
1: बिल्कुल सही कहा आपने। और संरक्षित मृदा की हम बात करें, नमी में सरसों और चने की सफल बुआई करके और बरानी या फिर कम सिंचाई वाले क्षेत्रों में भी बंपर पैदावार की जा सकती है। और खेत की तैयारी की बात करें और नमी संरक्षण की बात करें तो कम या फिर शून्य जुताई, यानी कि खेत की जो बार बार जुताई करने के लिए जो मिट्टी जो होती है वो नमी पड़ जाती है और हवा में वो उड़ भी जाती है, तो उसका भी हमें खास ख्याल रखना चाहिए। और पाटा लगाना, यानी कि जुताई के तुरंत बाद खेत में भारी पाटा जरूर चलाएं और मिट्टी की ऊपरी परत समतल हो जाती है जिसकी वजह से उसको फायदा मिलता है। मल्चिंग की, जैसा कि आपने बताया, मल्चिंग बहुत जरूरी है हमारी उपज के लिए भी। और सरसों की बात करें, सरसों की सफल बुआई की अगर हम बात करें तो सही समय जो है वो अक्टूबर का हो जाता है, जो कि आने वाला है। और बीज की बात करें, बीज दर और उपचार भी हमें बहुत आवश्यक है। किसी भी अगर हम कोई भी उपज लेते हैं तो उसके लिए हमें अच्छा बीज जरूर लेना चाहिए और उसको उपचार करके ही हमें अपने खेत में लगाना चाहिए। और अगर हम बुआई की बात करें तो गहराई और दूरी का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। उर्वरक प्रबंधन का भी हमें समय समय पर नाइट्रोजन और फॉस्फोरस के साथ साथ सल्फर गंधक उनका भी प्रयोग करना चाहिए, ताकि जो हमारी सरसों की जो फसल है वो बेहद उनके लिए जरूरी है और जिससे कि हमें अच्छी मात्रा में हमें सरसों मिल पाएगी। और चने की बात करें तो चने का सही समय भी अक्टूबर और नवंबर के बीच का होता है, और मिट्टी के अंदर नमी की जरूर जांच कराई ली जाए और गहरी और गुड़ाई की जाए, यानी कि जो गुड़ाई करेंगे तो हमारी जो मिट्टी है वो अच्छे से हर तरीके से उनमें जितनी भी जरूरतमंद की चीजें होती है वो हमारी मिट्टी में पहुंचेगी और अच्छी उपज मिलेगी, और बीज की दर और फासला भी इसमें भी बहुत जरूरी है। तो निरंकार भाई क्या कहते हैं कि और किन-किन बातों का हमारे जो किसान भाई बहन है उनको ध्यान रखने की जरूरत है?
0: हाँ, आपने विस्तार से जिक्र कर ही दिया है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनका ध्यान रख करके हमारे किसान भाई सफल उत्पादन ले सकते हैं। और जब आप बात करते हैं, हम संतुलित बात की, चाहे वो खाद है चाहे बिजली पानी है, इनका संतुलित उपयोग करके हम अपना खर्चा कम कर सकते हैं। जब खर्चा कम होगा तो आपकी आमदनी अपने आप ही
1: बढ़
0: बढ़
1: जाएगी,
0: जाएगी।
1: बिल्कुल।
0: तो आमदनी आपको बढ़ानी है, गुणवत्ता आपको बढ़ानी है। और अब बता दें कि केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने आज दिल्ली में 2 दिवसीय राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन रबी अभियान 2026 का शुभारंभ किया, और इसमें राज्यों को स्पष्ट उनका तालमेल बना रहे, वैज्ञानिक योजनाएं बनाए, जमीनी निगरानी के साथ साथ रबी सीजन की तैयारी पूरी करने का उन्होंने आह्वान किया। उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन, अनिश्चित बारिश और पानी की कमी जैसी चुनौतियों के बीच अब पुराने तरीकों को नहीं बल्कि डेटा आधारित योजना और केंद्र राज्य साझेदारी से भी खाद्य सुरक्षा और किसान आय के लक्ष्य पूरे होंगे। तो जो ये कार्यक्रम हुआ है, इस पर एक रेडियो रिपोर्ट अपने किसान भाइयों को हम सुनवाते हैं। तो आइए सुनते हैं रबी रबी अभियान पर ये रेडियो रिपोर्ट।
2: दिनांक 28 सितंबर 2026 को नई दिल्ली स्थित भारत रत्न सी सुब्रमण्यम सभागार NASC परिसर पूसा में भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा रबी अभियान 2026 के लिए भारतीय कृषि सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन का उद्घाटन केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा किया गया, और इसमें केंद्र और राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारी और अन्य हितधारक आगामी रबी मौसम की प्रमुख प्राथमिकताओं और तैयारियों पर विचार विमर्श करने के लिए एकत्रित हो रहे हैं। इस 2 दिवसीय सम्मेलन में केंद्र राज्य तालमेल को मजबूत करने तथा कृषि उत्पादन, उत्पादकता, स्थिरता और किसानों की आय बढ़ाने के लिए एक समन्वित और परिणाम उन्मुख रणनीति बनाने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। कार्यक्रम की शुरुआत में श्री संजय कुमार अग्रवाल, संयुक्त सचिव कृषि एवं किसान कल्याण विभाग भारत सरकार ने इस अभियान की प्राथमिकताओं और कार्यक्रम की रूपरेखा स्पष्ट करते हुए अपने संबोधन में कहा,
3: मैं सबसे पहले इस कार्यक्रम में उपस्थित माननीय कृषि एवं कल्याण मंत्री का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं, साथ ही माननीय राज्य मंत्रीगण का भी हार्दिक स्वागत करता हूं। मंच पर उपस्थित सभी वरीय पदाधिकारीगण, यहां उपस्थित सभी राज्यों से आए वरीय पदाधिकारीगण, वैज्ञानिकगण और विभिन्न योजनाओं को संचालित करने वाले सभी संचालकगण, आज के इस कार्यक्रम में आप सबकी सहभागिता ये दिखा रही है कि हम सब एक देश एक टीम के रूप में काम कर रहे हैं। राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन रबी अभियान की जो रूपरेखा है राज्यों के द्वारा प्रस्तुतिकरण किया जाएगा, और इस राज्यों के प्रस्तुतिकरण का उद्देश्य है कि राज्य अपनी बात बता सके, अपनी जो अच्छी बातें वो बताए, कोई चुनौती आ रही है उसके बारे में बताए। तो इसको लेकर के सभी राज्यों के द्वारा प्रस्तुतिकरण किया जाएगा, और कल इस मंच से कुछ प्रस्तुतिकरण होंगे और सभी राज्यों के कृषि मंत्री भी उपस्थित रहेंगे और वो अपनी बात और अपने राज्यों का जो स्थिति है उसके बारे में प्रस्तुतिकरण करेंगे। तो इतनी बड़ी संख्या में आप सबने सहभागिता की, मैं आप सबका पुनः स्वागत करता हूँ।
2: डॉक्टर ML जाट, DGICAR और सचिव डेयर ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा,
4: 2047 की जो हम परिकल्पना कर रहे हैं उसके कॉन्टेक्स्ट में बहुत इम्पोर्टेंट है। आत्मनिर्भरता, डाइवर्सिफिकेशन, क्लाइमेट रेजिलियंस, सस्टेनेबिलिटी, डिजिटल एग्रीकल्चर, रिस्क रिडक्शन, ये सारे के सारे विषय बहुत महत्वपूर्ण है। डाइवर्सिफिकेशन की हम बात करते हैं तो हमारा मुख्य जो फोकस है वो ऑयल सीड और पल्सेज पे है, और आने वाली रबी सीजन में इस पे हमें काफी फोकस करने की जरूरत है। डाइवर्सिफिकेशन और इंटेंसिफिकेशन दोनों साथ चलते हैं, तो मुझे लगता है कि हमें फोकस्ड एजेंडा पे काम करना है। जैसे एक एरिया है जो राइस फेलो का है, जो हमें इंटेंसिफिकेशन की तरफ ले जाता है, आत्मनिर्भरता की तरफ ले जाता है। हम सब लोग राइस फेलो पे काम करते हैं, लेकिन सारे इकट्ठित होकर टारगेटेड वे में यदि इस पे फोकस करेंगे रबी में, तो हमें कुछ सफलता मिलेगी। एक मुझे लगता है काफी महत्वपूर्ण है, लेकिन उसके लिए पूरा पैकेजिंग, कौन सी क्रॉप कहाँ पे, कौन सी वैरायटी, उसका सीड, कौन सा मैकेनाइजेशन, उसमें बायोलॉजिकल सॉल्यूशन, सीड ट्रीटमेंट के, ये

0: में थोड़ा सा इश्यू है, और स्पेशली जैसे प्राइवेट सेक्टर की बजाय पब्लिक सेक्टर का इंडेंट काफी ज्यादा आता है, लेकिन यदि सीड शेयर की बात करते हैं तो प्राइवेट सेक्टर का शेयर ज्यादा तो इंडेंट नहीं आता, तो सीड कहां से आता है? मुझे लगता है इस पे भी थोड़ा सा मंथन चिंतन होना चाहिए। एक हमारा रबी के लिए सबसे महत्वपूर्ण विषय है क्रॉप रेजिड्यू मैनेजमेंट के ऊपर थोड़ा फोकस करने की जरूरत है ताकि हमारी सही रूपरेखा बन पाए। हमारे ICR के लोग स्टेट्स के डिस्पोजल पे हैं, तो जिन जिन स्टेट्स में अभी थोड़ा स्लो प्रोग्रेस है उनमें थोड़ा फोकस करने की जरूरत है। एक हमें बेस्ट प्रैक्टिसेज अभी एलनिनो के कॉन्टेक्स्ट में ही यदि हम देखें तो कई सारे स्टेट्स ने बहुत अच्छा काम किया है। आगे की रबी की परिस्थिति भी क्योंकि बारिश को देखते हुए जैसी होने वाली है तो हमारी प्रिपेयरनेस उसके कॉन्टेक्स्ट में क्या होनी चाहिए उस पर थोड़ा सा काम करने की जरूरत है। फर्टिलाइजर आत्मनिर्भरता मुझे लगता है सबसे बड़ा एक विषय है, और उसके लिए एक अप्रोच नहीं एक इंटीग्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ जाने की जरूरत है। उसमें अभी जनरल जो फर्टिलाइजर रिकमेंडेशन है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे वो भी रिवाइज हुई है, उसके ऊपर भी काफी बड़ा एक फोकस है। मुझे लगता है इस पे ध्यान देने की जरूरत है, लेकिन उसके अलावा जो हमारे इंडिजिनस सोर्सेज हैं, बायोलॉजिकल्स हैं, क्रॉप रेजिड्यूज हैं, उनका सही उपयोग करके सॉइल हेल्थ को ठीक करके कैसे हम फर्टिलाइजर का डिपेंडेंस जो इम्पोर्ट है उस पे कम कर सकते हैं।
1: श्री अतीश चंद्रा, सचिव कृषि एवं किसान कल्याण विभाग भारत सरकार ने सम्मेलन की पृष्ठभूमि और आगामी रबी अभियान की प्रमुख प्राथमिकताओं पर अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा।
2: देखिए, रबी कॉन्फ्रेंस एक टाइम टेस्टेड व्यवस्था रही है। इसका जो मुख्य उद्देश्य यही रहता है कि हम जो सीजन हमारा गुजरा है उसको देखें और आगे जो हमारा सीजन आने वाला है उसको हम कैसे उत्कृष्ट रूप से इम्प्लीमेंट करें। सभी ने देखा है कि इस बार जो हमारा खरीफ सीजन गुजरा है वो काफ़ी चुनौतीपूर्ण रहा है, स्पेशली जो रेनफेड एरियाज हैं वहाँ पे राज्यों को काफ़ी दिक्कत हुआ। पहले तो क्रॉप कवरेज इंश्योर करने में और बाद में अब क्रॉप के सर्वाइवल का जो एक चुनौतीपूर्ण समय चल रहा है, और जो रबी सीजन है वो भी जो रेनफेड एरिया है उसके लिए एक चुनौतीपूर्ण रहेगा। और उसमें जो हमारी प्राथमिकताएँ हैं कृषि की वो बहुत वेल लेड आउट है। देखिए, हम लोग ने सीरियल्स प्रोडक्शन में बहुत अच्छा इस देश ने परफॉर्म किया है और हम लोग ने काफ़ी आत्मनिर्भरता भी हासिल की है, लेकिन वहीं हमारा जो पल्सेज, ऑयल सीड्स, हमारा हॉर्टिकल्चर रिक्वायरमेंट है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का, वो उसमें हम अभी भी बहुत बड़ा आयात कर रहे हैं। तो जो पहली बात है सेल्फ सफिशिएंसी की जो हमारी प्राथमिकता है, और उसी के संग डाइवर्सिफिकेशन उसी से जुड़ा हुआ मुद्दा है। अगर हमको सेल्फ सफिशिएंट बनना है तो हमको डाइवर्सिफाई करना होगा, और डाइवर्सिफाई करने के लिए जो चैलेंजेस हैं उनको हमको सामना करना पड़ेगा। वो चाहे हमारे रिसर्च पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस के चैलेंजेस हैं, वो हमारे जो क्लाइमेट रेजिलियंस के चैलेंजेस हैं, जो उससे रिलेटेड इनकम के चैलेंजेस हैं, उन सब को हमको सरकमेंट करना पड़ेगा, उन सबको एड्रेस करना पड़ेगा। तो ये हमारे रबी सीजन में भी आने वाले समय में हमारे लिए बहुत ही चुनौतीपूर्ण होने वाला है, क्योंकि जो मॉइस्चर है वो काफ़ी चैलेंज रहेगा इन स्टेट्स जहाँ पर लॉन्ग पीरियड्स ऑफ स्ट्रेस रहा है, यहाँ पे डेफिसिट रही है रेन की, तो वहाँ पे हमको अपने रबी सीजन को कैलिब्रेट करना होगा। जो दूसरा है कि जब हम डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं तो हमको सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को बनाना होगा। जो थर्ड हमारा मुख्य देश रहा है प्राथमिकता में वो है इंफ्रास्ट्रक्चर का। हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में अभी भी बहुत सारे गैप्स हैं, चाहे वो प्री प्रोडक्शन हो या पोस्ट प्रोडक्शन हो, और खासकर पोस्ट प्रोडक्शन में जो हमारे ऑन द फार्म लॉसेस हैं उसको लगातार कम करने की जरूरत है, तो उसके लिए हमको अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को मॉडर्नाइज करना होगा।
1: माननीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने संबोधन में कहा।
3: भारत सरकार के कृषि राज्य मंत्री आदरणीय भागीरथ चौधरी जी, आदरणीय रामनाथ ठाकुर जी, कृषि सचिव अतीश चंद्रा जी, डीजी ICR और सचिव डेयर ML जाट जी, और राज्य से आए हुए सभी अधिकारी मित्रों, सबसे पहले आज मैं शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी, सुखदेव जी और राजगुरु जी के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूँ। आज रवि की कॉन्फ्रेंस के लिए मित्रों हम यहाँ उपस्थित हैं। आप जानते हैं कि कृषि, अनाज, फल, सब्जियाँ, ये भारत जैसे विशाल देश के लिए कितनी महत्वपूर्ण है। उत्पादन में जो वृद्धि हुई है वो अभूतपूर्व है। कृषि विकास दर में 50% की वृद्धि हुई है, लेकिन काम करने की जरूरत और है। अब रबी की जब हम बात करते हैं तो खरीफ, जिसमें बहुत चिंता थी मन में, क्लाइमेट चेंज के जो प्रभाव है, एक तरफ महाराष्ट्र से, कर्नाटक से, तेलंगाना से,

0: अब बड़े हिस्सों में सूखे का संकट है, तो अभी कल खबर आई कि यूपी में कई मौत इसलिए हो गई कि भारी बारिश के कारण हो गई। क्लाइमेट चेंज के असर साफ नजर आ रहे हैं। अलनीनो के प्रभाव के कारण हम चिंतित थे, लेकिन मैं इस बात के लिए बधाई दूंगा आप सबको, पूरी टीम को, लगभग खरीफ की बुआई का लक्ष्य हमने पूरा कर लिया। हाँ, फसलें जरूर प्रभावित है कई जगह। मैं आज इस बैठक में ही आपको आग्रह करना चाहता हूं कि खरीफ की फसल का कुछ जगह खराब होने के खतरे पैदा हुए हैं। कर्नाटक ने भी सूखा डिक्लेयर किया है, महाराष्ट्र ने भी, लगभग दो तिहाई राज्य में उन्होंने अपने यहाँ राज्य के स्तर पर सूखा घोषित किया है। मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ राज्यों को, केंद्र सरकार आपके साथ डट के खड़ी है। 3 अक्टूबर को कर्नाटक में केंद्रीय टीम भेजेंगे सूखे का अध्ययन करने के लिए। जहाँ संकट है वहाँ मिलकर मुकाबला करना है और रबी की तैयारी भी करनी है। और रबी की तैयारी की जो कुछ प्रमुख चीजें हैं, कुछ जगह बारिश बहुत अच्छी हुई है, कुछ जगह एवरेज से कम है, लेकिन पानी बहुत इतना गिरता है कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता बोनी पर। उन राज्यों के मित्रों को भी मेरा कहना है कि आप रबी की प्लानिंग पूरे साइंटिफिक तरीके से कीजिए, और जिन हिस्सों में देश के कम पानी है वहाँ कितना पानी की उपलब्धता है, नमी कितनी है, सिंचाई के पानी के लिए अभी से प्रबंध करें। मुझे लगता है कि इस समय जल बजट बनाने की जरूरत है। जहाँ पानी सीमित है उस पानी का उपयोग कैसे करें, उस पानी को देखते हुए कौन सी फसलों की हम सलाह दें, प्लानिंग करें। और तैयारियों में मैं समझता हूँ कि देर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अब हम रबी की बुआई के मुहाने पे खड़े हैं एकदम। रेनफेड इलाके में तो जल्दी अब बोनी शुरू हो जाएगी, और जो रेनफेड नहीं है और सिंचाई की व्यवस्था है उसकी तैयारी हम अलग से रखें। दूसरे जो हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए पानी के बाद, मिट्टी में हम नमी कैसे बचाएं और समय पर बुआई कैसे करें। फिर जर्मिनेशन ठीक नहीं होगा, उत्पादन ठीक नहीं आएगा, और इसलिए समय पर सारी तैयारी कर लीजिए। और मैं ये मानता हूं कि तैयारी के लिए सबसे जरूरी चीज़ है बीज, और बीज की तैयारी उपयुक्त बीज, उपयुक्त किस्म, पानी को देखते हुए। जहाँ भरपूर पानी है वहाँ आप देखिए कौन सी किस्म, जहाँ पानी की कमी है वहाँ कौन सी किस्म का बीज आपको चाहिए। कई बार मुझे तकलीफ होती है कहते हुए कि कुछ राज्य पर्याप्त मात्रा में ना तो बीज की डिमांड करते हैं ना बीज उठाते हैं, और कई जगह बीज का वितरण इतनी देरी से होता है कि जब तक वो बीज आते हैं तब तक बोनी हो जाती है, फिर वो बीज जो बहुत उपयोगी है। और इसके बाद आप अभी से ये तैयारी भी करिए, अब हमने दलहन में तय किया है कि तुअर मसूर उड़द पूरी खरीदेंगे, लेकिन कई जगह खरीद की तैयारी ढंग से होती नहीं है, इसलिए तैयारी परफेक्ट और पूरी करें। बीज की उपलब्धता, उसका उठान, उसका उनका वितरण, इसका पूरा रोड मैप बनना चाहिए समयबद्ध। मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा राज्य में आप एक मजबूत टीम एग्रीकल्चर बनाइए। केबीके को जोड़ने की बात हुई है, एफपीओएच को जोड़िए। एक जो बात अभी डाइवर्सिफिकेशन की कही थी, अब डाइवर्सिफिकेशन करना तो ये राइस फैलो पे काम अभी से करना पड़ेगा भाई, हर एक राज्य, विशेषकर पूर्वी भारत के राज्य। मेरा आग्रह है राइस फैलो में आप दलहन की बोनी की पूरी रणनीति बनाइए, उपलब्ध नमी की आवश्यकता को देखते हुए। तो मुझे लगता कि हमारे सम्मेलन परिणाम मूलक हो पाएगा। और एक मुझे लगता है हर सप्ताह हमने एक सिस्टम यहाँ विकसित करने की कोशिश की है कि एक साप्ताहिक समीक्षा करते हैं हम, जिसमें फसलों की क्या स्थिति उसकी जानकारी लेते हैं, फसलों की स्थिति, मार्केट के रेट, बीमारी का अटैक, रियल टाइम में सारी चीज पता चलनी चाहिए। एक और अपनी ड्यूटी है कि उर्वरकों का संतुलित इस्तेमाल, लेकिन संतुलित उपयोग हो, ये हमारी राज्य की भी ड्यूटी है भाई। सॉइल हेल्थ कार्ड का उपयोग क्यों नहीं होना चाहिए, इसका भी आप ध्यान रखें। खेत बचाओ अभियान हमने खरीफ की फसल में चलाया था, रबी की फसल के लिए भी खेत बचाओ अभियान चलना चाहिए। माटी भी बचाना है, मित्र कीटों को भी बचाना है, इसलिए संतुलित इस्तेमाल कैसा हो इसकी कोशिश आप कीजिए। इसलिए ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो जरूरी है। प्राकृतिक खेती के लिए भी एक मौका है, हम इस समय रबी में प्राकृतिक उत्पादों के लिए रुझान बहुत तेजी से बढ़ा है, किसान भी आगे आए, लेकिन राज्यों को अपने प्राकृतिक उत्पाद की मार्केटिंग, ब्रांडिंग करनी पड़ेगी। हमको कोशिश करना पड़ेगा कि इस दिशा में भी हम काम करें।
1: इसी के साथ रबी अभियान 2026 के लिए

0: भारतीय कृषि सम्मेलन के उद्घाटन सत्र पर आधारित यह रेडियो रिपोर्ट अब संपन्न होती है। प्रस्तुति सहयोग विशाल कुमार, दिनेश कुमार मीणा, संयोजक शिवनंदन लाल, प्रस्तुतकर्ता तुषार पाराशर।
1: तो भाइयों बहनों, और अभी आप सुन रहे थे रेडियो रिपोर्ट जो कि रबी अभियान 2026 पर राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन पर थी, जो कि नास कॉम्प्लेक्स के अंदर इसका आज से शुभारंभ हो चुका है और ये कल तक चलेगा।
2: बिल्कुल, और अब हमारे जो किसान भाई हैं उन्हें इंतजार होगा मनोरंजन का, तो क्या सुनवा रहे हैं?
1: बिल्कुल, अब हम सुनवाएंगे जो कलाकार हैं भूपेंद्र सिंह की आवाज में ये गीत।

0: तो अभी आप कलाकार सुन रहे थे भूपिंदर सिंह की आवाज में, नर से ज्यादा धानी। और अभी हम आपको बता दें, जिस तरह से हम आप सभी जानते हैं कि अलग अलग दिवस आज हम मना रहे हैं, और आज विश्व रेबीज दिवस के साथ साथ अगर हम बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक सूचना तक पहुंच दिवस भी आज यानी कि 28 सितंबर को मनाते हैं, और यूनेस्को द्वारा 17 नवंबर 2015 को इस दिवस की घोषणा कर दी गई थी, और 2016 से इसको मनाया जाने लग गया था, और 2019 में संयुक्त महासभा ने भी इसे आधिकारिक रूप से मान्यता दे दी थी। और उद्देश्य की बात करें तो इसका मुख्य उद्देश्य है कि समाज में सूचना के अधिकार के महत्व को समझाना, जानकारी जो है वो सही जगह पर पहुंचाना, मुफ्त में और आसान पहुंच सुनिश्चित करना है, और ताकि लोकतांत्रिक व समावेशी समाज का निर्माण हो सके। और महत्वपूर्ण बात यह है कि इन दिन जो ये जो दिन हम आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, उसका मुख्य उद्देश्य यही है कि सही इन्फॉर्मेशन और सटीक जानकारी पाना, और इंसान को जो बुनियादी अधिकार भी है, और जिससे कि वह अपने जीवन और समाज के बारे में एक सही फैसला भी ले सके।
1: और हम अपने कार्यक्रम के माध्यम से सटीक जानकारी आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं, और अगर उससे हमारा एक भी श्रोता लाभान्वित होता है तो हमें बहुत खुशी होती है। तो आप हमारे कार्यक्रम को सुनते रहिए और अपनी प्रतिक्रियाएं भी हमें भेजते रहिए। और मंजीत बहन, अब हमारे जो घड़ी से मिल रहा है इशारा कि कार्यक्रम का समय समाप्त होने को है हमारा, तो भाइयों से हम इजाज़त लेते हैं। सभी सुनने वाले बहन भाइयों को राम
0: राम
1: राम।
0: राम,
1: इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे तुषार पाराशर
0: और संयोजक शिवनंदन लाल।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम कृषि जगत, ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। 7:35 हुए हैं, आइए सुनते हैं गजल एवं कव्वाली पर आधारित कार्यक्रम। आरंभ में आइए सुनते हैं गजल जगजीत सिंह की आवाज में।

0: ला लोन आसानी से पाओ,
1: कार नहीं तो मेरी फोटो तो ले लो।
0: आप कौन?
2: RBI कहता है,
3: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
4: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं वैष्णवी। मुख्य समाचार। दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत नोटिस पाने वाले मतदाताओं से बूथ स्तर के अधिकारी उनके घरों से दस्तावेज एकत्र करेंगे। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत कल से दिल्ली के कॉलेजों, विश्वविद्यालयों और अन्य शिक्षण संस्थानों में युवा मतदाताओं के पंजीकरण के लिए विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे। दिल्ली में वायु प्रदूषण नियंत्रण के उपायों की समीक्षा, तोड़फोड़ और

0: निर्माण कार्यों पर 1 नवंबर से 31 जनवरी तक प्रतिबंध। सरकार ने सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत दिल्ली उद्योग मित्र पोर्टल का शुभारंभ किया और दिल्ली सरकार और भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के बीच सांस्कृतिक शैक्षणिक सहयोग पर समझौता। अब समाचार विस्तार से। दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के अंतर्गत जिन मतदाताओं को विसंगतियों के संबंध में नोटिस जारी किए गए हैं, बूथ स्तर के अधिकारी उनके घरों से दस्तावेज एकत्र करेंगे। एक आधिकारिक बयान के अनुसार इस कदम का उद्देश्य मतदाताओं के लिए सुनवाई प्रक्रिया को आसान बनाना तथा उनके निर्वाचन पंजीकरण अधिकारियों और सहायक निर्वाचन पंजीकरण अधिकारियों के कार्यालयों में जाने की जरूरत कम करना है। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत कल से दिल्ली के कॉलेजों, विश्वविद्यालयों और अन्य शिक्षण संस्थानों में युवा मतदाताओं के पंजीकरण के लिए विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी ने विद्यार्थियों से इन शिविरों का लाभ उठाकर मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराने और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लेने की अपील की है। ये शिविर बुधवार तक चलेंगे। मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय के अनुसार दावे और आपत्तियां 30 अक्टूबर तक दाखिल की जा सकती है। दावों और आपत्तियों पर नोटिस और उनके निपटारे की प्रक्रिया 30 नवंबर तक जारी रहेगी। अंतिम मतदाता सूची अब 4 दिसंबर को प्रकाशित की जाएगी। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में राष्ट्रीय राजधानी में वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के उपायों की समीक्षा की गई। बैठक में श्री यादव ने दिल्ली के 37 चिन्हित प्रदूषण स्थलों पर 10 अक्टूबर तक जनभागीदारी कार्यक्रम आयोजित करने और संबंधित पक्षों को शामिल करने पर बल दिया। दिल्ली सरकार ने 1 नवंबर से 31 जनवरी तक तोड़फोड़ और निर्माण कार्यों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की भी घोषणा की है। एक रिपोर्ट।
1: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार ने वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए कई कदम उठाए हैं। उन्होंने शमशान घाटों से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए तकनीकी उपाय तलाशने और विद्युत शवदाह गृहों के बारे में लोगों को जागरूक करने की आवश्यकता पर भी बल दिया। कार्य योजना के अंतर्गत दिल्ली के 500 पेट्रोल पंप पर PUC प्रमाण पत्र नहीं तो ईंधन नहीं व्यवस्था लागू की जाएगी, जहां स्वचालित नंबर प्लेट पहचान प्रणाली उपलब्ध है। धूल प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए सड़कों के पुनर्विकास और फुटपाथ निर्माण का काम तेज किया जाएगा। इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2026 और परिवर्तन योजना को बढ़ावा देने के लिए पंजीकरण अभियान और जन भागीदारी शिविर आयोजित किए जाएंगे। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए प्रशांत कुमार।
0: नगर निगम ने अनधिकृत निर्माण तथा दिल्ली के मास्टर प्लान और भवन उपनियमों के उल्लंघन के खिलाफ जारी प्रवर्तन अभियान के अंतर्गत 29 ध्वस्तीकरण कार्रवाई की। इसके साथ ही 10 संपत्तियों को सील किया गया और 7 ध्वस्तीकरण आदेश जारी किए गए। नगर निगम ने फील्ड अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे कड़ी निगरानी बनाए रखें और दिल्ली मास्टर प्लान, भवन उपनियमों तथा अन्य संबंधित नियमों के लागू प्रावधानों के अनुसार उल्लंघनों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई करें। नगर निगम ने कहा कि ये प्रवर्तन अभियान राजधानी के सभी 12 जोनों में जारी रहेगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं।
2: आपको हर खबर से रखे अपडेट, expert@AIRnews हिंदी और पब्लिक पर @AIRnews अलर्ट्स को फॉलो करें।
0: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत दिल्ली उद्योग मित्र पोर्टल का शुभारंभ किया। ये पोर्टल दिल्ली में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के इकोसिस्टम को मजबूत करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। इसके माध्यम से उद्यमियों, व्यापारियों, MSME, स्टार्टअप्स, औद्योगिक इकाइयां और निवेशकों को विभिन्न सरकारी सेवाओं और अनुमतियों तक एक ही डिजिटल इंटरफेस के माध्यम से आसान पहुंच मिलेगी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार आगे भी पोर्टल में और अधिक सेवाओं को जोड़ने, प्रक्रियाओं को सरल बनाने और डिजिटल प्रवर्तन को मजबूत करने के लिए निरंतर कार्य करेगी। दिल्ली के उद्योग मंत्री मंजेंद्र सिंह सिरसा ने कहा कि अभी तक 15 विभागों को पोर्टल से जोड़ा जा चुका है।
3: सभी दिल्ली डिपार्टमेंट्स को अब तक हमने 15 डिपार्टमेंट्स ऑन बोर्ड ले लिए हैं, 50 से ज्यादा सर्विसेज कर दी हैं, अगले महीने तक 100 से ज्यादा सर्विसेज

0: और 21 डिपार्टमेंट जो हैं वो इसके ऊपर ले लिए जाएंगे।
1: सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत वडनगर से वाराणसी इतर जा रही बाइक यात्रा आज दिल्ली बॉर्डर पहुंची। इस अवसर पर यात्रियों का स्वागत करते हुए दिल्ली के कला और संस्कृति मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा कि ये यात्रा मार्ग में निरंतर सामाजिक कार्यों को बढ़ावा दे रही है।
2: इस यात्रा का सबसे शानदार पक्ष ये है कि सेवा संकल्प अभियान के तहत यात्रा निकली है और जहां भी जा रहे हैं वहां सेवा के कार्यों को कर रहे हैं। अब दिल्ली में भी आते ही यहां से सीधा वृक्षारोपण के कार्यक्रम के लिए गए हैं, उसके बाद हनुमान मंदिर में स्वच्छता अभियान भी सभी यात्री करेंगे।
1: इसके बाद यात्रा वाराणसी के लिए पुनः प्रस्थान करेगी। दिल्ली के उप महापौर डॉक्टर मोनिका पंत ने आज गिरधर लाल अस्पताल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने अस्पताल में मरीजों को उपलब्ध कराई जा रही स्वास्थ्य सुविधाओं, दवाओं की उपलब्धता, स्वच्छता व्यवस्था तथा चिकित्सा और सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर का जायजा लिया। इस अवसर पर डॉक्टर पंत ने बताया कि अस्पताल के सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर और सुदृढ़ बनाने के लिए लगभग 4 करोड़ रूपये की राशि का प्रावधान किया गया है। उप महापौर ने अस्पताल प्रशासन को निर्देश दिया कि उपलब्ध संसाधनों का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित किया जाए तथा अस्पताल में स्वच्छता, दवा उपलब्धता तथा उपचार संबंधी व्यवस्थाओं के नियमित समीक्षा की जाए। विश्व रेबीज दिवस के अवसर पर आज नई दिल्ली नगर पालिका परिषद NDMC के पशु चिकित्सा विभाग द्वारा निःशुल्क रेबीज जागरूकता और टीकाकरण शिविर का आयोजन किया गया। NDMC ने बताया कि इस शिविर में पालतू पशुओं के लिए निशुल्क स्वास्थ्य जांच, एंटी रेबिस टीकाकरण और पशु चिकित्सा परामर्श की सुविधा प्रदान की गई। साथ ही पशुओं की देखभाल और रेबिस की रोकथाम को लेकर लोगों को जागरूक किया गया। केंद्र सरकार ने आज नई दिल्ली में पशुधन बीमा योजना पोर्टल की शुरुआत की। ये पोर्टल पशुधन बीमा के लिए एक एकीकृत डिजिटल मंच उपलब्ध कराएगा। इसके माध्यम से पशुपालन और डेयरी विभाग की पशुधन बीमा योजना के अंतर्गत बीमित पशुओं की पॉलिसी जारी करने, बीमा दावों के निपटारे, निगरानी और रिपोर्ट तैयार करने की प्रक्रिया को आसान बनाया जा सकेगा। विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने पेरू की यात्रा के दौरान लीमा में भारतीय समुदाय के सदस्यों के साथ संवाद किया। इस अवसर पर श्री गुप्ता ने पेरू और पड़ोसी बाजारों में भारतीय व्यवसायों की उपस्थिति के विस्तार की संभावनाओं पर विचार विमर्श किया। उन्होंने कहा कि विदेशों में रह रहे भारतीय केवल आर्थिक योगदान देने तक सीमित नहीं है, बल्कि वे भारत की संस्कृति, परंपराओं और विरासत के महत्वपूर्ण प्रतिनिधि भी हैं, जो भारत और पेरू के लोगों के बीच संबंधों को और मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। श्रम और रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा है कि देश में 100 करोड़ से अधिक लोगों को सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिल रहा है। वे आज नई दिल्ली में आयोजित औद्योगिक संबंध और श्रम तथा पुरस्कार संबंधी राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे।
3: हम 25 करोड़ लोगों को SIC की हेल्थ सिक्योरिटी दे रहे हैं, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दे रहे हैं, 10 करोड़ किसान के अकाउंट में हर 4 महीने 2000 रुपया डालते हैं। आज देश के 10 स्टेट ऐसे हैं जो महिला के अकाउंट में प्रति महीने कोई न कोई 2000, 1500, 1200 ऐसी अमाउंट डालते हैं। तो मैंने कहा कि क्या सोशल सिक्योरिटी का पार्ट नहीं बन सकता और कैलकुलेशन चालू करा, तो उन्होंने स्वीकारा कि इंडिया आज 101 करोड़ यानी कि 68% लोगों को सोशल सिक्योरिटी देता है।
1: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं।
4: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी expert@AIRNewsHindi और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
1: सरकार ने राजधानी की समृद्ध कला, सांस्कृतिक विरासत, पर्यटन और शैक्षणिक क्षेत्र को वैश्विक स्तर पर नई पहचान दिलाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल की शुरुआत की। इस पहल के अंतर्गत दिल्ली सरकार और भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ICCR ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। इसका मुख्य उद्देश्य संस्थागत साझेदारी को स्थापित कर सांस्कृतिक और शैक्षणिक सहयोग को बढ़ावा देना है। एक रिपोर्ट।
5: दिल्ली सरकार ने बताया कि इस समझौते के अंतर्गत राजधानी के स्थापित और युवा कलाकारों को ICCR की प्रतिष्ठित होराइजन सीरीज और अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक महोत्सवों में सहभागिता का सीधा अवसर मिलेगा। इसके साथ ही ICCR के विशिष्ट शैक्षणिक आगंतुक कार्यक्रम के अंतर्गत आने वाले विदेशी अतिथियों और विद्वानों की

0: जबानी दिल्ली में की जाएगी। इस समझौता में ICCR से जुड़े विदेशी छात्रों के लिए राजधानी में अध्ययन शिविर का आयोजन भी किया जाएगा, जिससे राजधानी के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा मिले। वहीं दिल्ली में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक दलों की भागीदारी के लिए आवश्यक खर्च दिल्ली सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। प्रादेशिक समाचार के लिए सौम्या शरण।
1: दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने मादक पदार्थ तस्करी मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि आरोपी के पास से 2.5 किलोग्राम से अधिक मादक पदार्थ बरामद किया गया। दिल्ली पुलिस ने कहा कि ये गिरफ्तारी ऑपरेशन कवच के अंतर्गत की गई है। देश आज शहीद आजम भगत सिंह की 119वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। भगत सिंह का जन्म आज ही के दिन वर्ष 1907 में पंजाब के लायलपुर जिले के बंगा गांव में हुआ था, जो अब पाकिस्तान में है।
2: शहीद आजम भगत सिंह के मन में देश की आजादी के लिए लड़ने का जज्बा अपने परिवार से ही मिला था। उनके दादा, पिता और चाचा सभी स्वतंत्रता आंदोलन में पूरी तरह सक्रिय थे। भगत सिंह खुद भी इस आंदोलन से जुड़े और देश की आजादी के लिए आवाज उठाने वाले क्रांतिकारी बन गए। अंग्रेजों के कठोर और दमनकारी कानूनों का विरोध करने के लिए उन्होंने साल 1929 में केंद्र विधानसभा में ऐसे बम फेंके जिससे किसी की जान न जाए। इसके बाद उन्होंने खुद को अंग्रेजों के हवाले कर दिया और गिरफ्तारी दी। साल 1931 में अंग्रेजों ने उन्हें फांसी दे दी। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने स्वतंत्रता सेनानी शहीद भगत सिंह की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्रीमती गुप्ता ने कहा कि भगत सिंह भारत के शौर्य, साहस और स्वाभिमान की अमर चेतना है। दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद आज दिल्ली की विश्वविद्यालय के शहीद राजगुरु कॉलेज ऑफ अप्लाइड साइंसेज फॉर वुमेन के 35वें वार्षिक दिवस समारोह में शामिल हुए। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सूद ने कहा कि ऐसे अवसर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, महिला सशक्तिकरण और आने वाली पीढ़ी में नेतृत्व क्षमता विकसित करने के महत्व को दर्शाते हैं। उन्होंने कॉलेज के विद्यार्थियों और शिक्षकों को निरंतर सफलता और भविष्य में अनेक नई उपलब्धियों के लिए शुभकामनाएं दी। राजधानी दिल्ली में आज बादल छाए रहे और कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हुई। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 28.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, वहीं न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। कल आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है, वहीं कल का अधिकतम तापमान 31 से 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 21 से 23 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत नोटिस पाने वाले मतदाताओं के से बूथ स्तर के अधिकारी उनके घरों से दस्तावेज एकत्र करेंगे। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत कल से दिल्ली के कॉलेजों, विश्वविद्यालयों और अन्य शिक्षण संस्थानों में युवा मतदाताओं के पंजीकरण के लिए विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे। दिल्ली में वायु प्रदूषण नियंत्रण के उपायों की समीक्षा, तोड़फोड़ और निर्माण कार्यों पर 1 नवंबर से 31 जनवरी तक प्रतिबंध। सरकार ने सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत दिल्ली उद्योग मित्र पोर्टल का शुभारंभ किया और दिल्ली सरकार और भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के बीच सांस्कृतिक शैक्षणिक सहयोग पर समझौता। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, डीआरएम 810 किलो हर्ट्स पर। रात्रि के 8 बजे हैं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम गीत मालिका। आरंभ में आइए सुनते हैं आशिकी 2 फिल्म का ये गीत। आवाजें हैं पलक मुच्छल और अरिजीत सिंह की। गीत के बोल लिखे हैं इरशाद कामिल ने और संगीत से सवारा है जीत गांगुली ने।

अगला गीत हमने लिया है कुछ ना कहो फिल्म से, जिसे आवाजें दी है उदित नारायण और कविता कृष्णमूर्ति ने। गीतकार हैं जावेद अख्तर और संगीतकार शंकर एहसान लॉय।

0: एक कदम लोकतंत्र के नाम।
1: यदि आपका नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं है तो फॉर्म 6 भरकर आज ही अपना नाम मतदाता सूची में पंजीकृत कराएं।
0: फॉर्म 7 गलत या अपात्र नाम पर आपत्ति दर्ज करने हेतु प्रावधान।
1: फॉर्म 8 से मतदाता सूची में अपनी जानकारी करें दुरुस्त बार बार।
0: फॉर्म 6, 7 और 8 भरें 30 सितंबर 2026 तक। मतदाता सूची को सही और अद्यतन बनाएं।
1: मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।
2: श्रोताओं, कार्यक्रम गीत मालिका में अब आइए सुनते हैं फिल्म मैंने प्यार किया का ये गीत। स्वर है लता मंगेशकर का।

0: एक कदम लोकतंत्र के नाम।
1: यदि आपका नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं है तो फॉर्म 6 भरकर आज ही अपना नाम मतदाता सूची में पंजीकृत कराएं।
0: फॉर्म 7 गलत या अपात्र नाम पर आपत्ति दर्ज करने हेतु प्रावधान।
1: फॉर्म 8 से मतदाता सूची में अपनी जानकारी करें दुरुस्त बार बार।
0: फॉर्म 6, 7 और 8 भरें 30 सितंबर 2026 तक। मतदाता सूची को सही और अद्यतन बनाएं।
1: मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।
2: आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत मालिका। तो अब आइए सुनते हैं अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाजों में ये गीत। फिल्म है कसूर।

यारा दिलदारा, इस फिल्म का गीत आइए सुनते हैं उदित नारायण और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ों में। मजरू सुल्तानपुरी के लिखे इस गीत को संगीतबद्ध किया है जतिन ललित ने।

1920 इविल रिटर्न्स, इस फिल्म का गीत आइए सुनते हैं महालक्ष्मी अय्यर की स्वर में। गीत शकील आजमी का लिखा है और संगीत चिरंतन भट्ट द्वारा रचित है।

0: आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीत मालिका। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। 8:45 होने को हैं। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं कनकलता। गृहमंत्री अमित शाह का आतंकवाद से निपटने के लिए मजबूत तंत्र बनाने का आह्वान। प्रत्यर्पण पोर्टल शुरू। भारत और संयुक्त अरब अमीरात स्थानीय मुद्रा में व्यापार उपायों को लागू करने पर सहमत। दोनों देशों का 2032 तक द्विपक्षीय व्यापार को 200 अरब डॉलर करने का लक्ष्य। केंद्रीय दल सूखे की स्थिति का आकलन करने के लिए कर्नाटका और महाराष्ट्र का दौरा करेगा। पशुधन बीमा दावों और निगरानी को सुव्यवस्थित करने के लिए पशुधन बीमा पोर्टल शुरू। भारत और मंगोलिया के बीच सीधी उड़ान सेवा शुरू। सेंसेक्स 6 महीने के निचले स्तर पर पहुंचा, 72,772 पर बंद। एशियाई खेलों में भारत ने 8 और पदक जीते। पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में यशवीर ने रजत और श्रीशंकर मुरली ने लंबी कूद। गुलबीर सिंह ने 1500 मीटर दौड़ तथा ईशा सिंह ने निशानेबाजी में रजत पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय आतंकरोधी नीति और रणनीति प्रहार सम्मेलन का उद्घाटन किया। सम्मेलन में प्रहार के 7 स्तंभों पर चर्चा हुई। इनमें आतंकवाद की रोकथाम, उससे निपटने की कार्रवाई, आंतरिक क्षमताओं का एकीकरण, मानवाधिकार, आतंकवाद के लिए अनुकूल परिस्थितियों को कम करना, अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों में समन्वय तथा पूरे समाज की भागीदारी से पुनर्प्राप्ति और लचीलापन शामिल है।
2: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने आतंकवाद के सभी रूपों के खिलाफ कतई बर्दाश्त न करने की नीति अपनाई है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2019 से 2026 के बीच सरकार 36 देशों से 288 भगोड़े अपराधियों को भारत वापस लाई है। श्री शाह ने नया प्रत्यर्पण पोर्टल भी शुरू किया। ये विदेशों में मौजूद भगोड़ों को भारत वापस लाने के प्रयासों में समन्वय और तेजी लाने में मदद करेगा। उन्होंने राज्य पुलिस बलों से केंद्रीय एजेंसियों के साथ मिलकर काम करने के लिए समर्पित टीमें गठित करने का आग्रह किया। भानु प्रताप की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
1: भारत और संयुक्त अरब अमीरात स्थानीय मुद्रा में व्यापार के निपटान, भुगतान और संदेश प्रणालियों के एकीकरण और केंद्रीय बैंक की डिजिटल मुद्राओं से संबंधित पहलों के समय पर क्रियान्वयन के लिए कदम उठाने पर सहमत हुए हैं। दोनों पक्षों ने आज मुंबई में निवेश संबंधी भारत यूएई उच्च स्तरीय संयुक्त कार्यबल की 14वीं बैठक के दौरान इस समझौते पर सहमति जताई। बैठक की अध्यक्षता वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और अबुधाबी निवेश प्राधिकरण के प्रबंध निदेशक शेख हामिद बिन जायद अल नहयान ने की। श्री गोयल ने कहा कि दोनों देशों के बीच निवेश बढ़ाने के लिए ऊर्जा, उद्योग, बुनियादी ढांचा और स्टार्टअप जैसे क्षेत्रों की पहचान की गई है।
3: Annually, we have been meeting regularly.
4: हम सालाना और नियमित रूप से बैठकें करते रहे हैं और दोनों पक्षों के व्यापारिक समूहों की संतुष्टि के अनुसार ठोस और महत्वपूर्ण मुद्दों का समाधान कर रहे हैं। आज हमने अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, पोत निर्माण, आधुनिक बंदरगाहों के विकास, खाद्य सुरक्षा, विशेष रूप से खाड़ी क्षेत्र के लिए कृषि नवाचार, लॉजिस्टिक्स के विस्तार, AI और उभरती प्रौद्योगिकियों पर मिलकर काम करने, ऊर्जा सुरक्षा के लिए बेहतर समन्वय स्थापित करने तथा फिनटेक क्षेत्र में अपने सहयोग का विस्तार करने जैसे क्षेत्रों में साझेदारी को बढ़ाने पर भी चर्चा की है।
3: एक्सपैंडिंग आवर कोऑपरेशन इन द फिनटेक सेक्टर।
1: भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच द्विपक्षीय व्यापार वित्त वर्ष 2025-26 में 101 अरब 25 करोड़ डॉलर तक पहुंच गया, जबकि गैर तेल व्यापार 2025 में 76 अरब 20 करोड़ डॉलर रहा। दोनों पक्ष 2032 तक द्विपक्षीय व्यापार में 200 अरब डॉलर के साझा लक्ष्य की ओर अग्रसर हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि देश ने पश्चिम एशिया में जारी संकट और होर्मुज जलडमरू मध्य में व्यवधान के बावजूद कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की आपूर्ति में आई चुनौतियों का अब तक सफलतापूर्वक सामना किया है। कोलकाता में मर्चेंट्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में श्री पुरी ने ये बात कही। उन्होंने आश्वासन दिया कि सरकार स्थिति पर लगातार नजर रख रही है और ये सुनिश्चित करेगी कि आपूर्ति में आए व्यवधान नियंत्रण से बाहर न हों। केंद्र सरकार कर्नाटक और महाराष्ट्र में सूखे की स्थिति का आकलन करने के लिए टीम भेजेगी। नई दिल्ली में रबी फसल अभियान 2026 के लिए राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ये बात कही। संवाददाताओं से श्री चौहान ने कहा कि महाराष्ट्र और कर्नाटक सरकारों ने अपने अपने राज्यों के बड़े हिस्से में सूखा घोषित किया है।
5: राज्य सरकारों ने महाराष्ट्र में बड़े हिस्से पर और कर्नाटक में भी बड़े हिस्से पर सूखा घोषित किया है। भारत सरकार राज्यों के साथ डट के खड़ी रहेगी। कर्नाटक में भी 3 अक्टूबर को टीम बना के भेज रहे हैं वहां की स्थिति के आकलन के लिए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी से बात हुई है तो भाभी हम टीम की तैयारी कर रहे हैं। मैं स्वयं भी उन राज्यों में जाके स्थिति देखूंगा और हम अपने किसानों के साथ राज्य सरकारों के साथ पूरी ताकत से खड़े रहेंगे इस परिस्थिति का मुकाबला करने के लिए।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
6: और ज्यादा खबरों के लिए expert@AIRNewsHindi को फॉलो करें और YouTube पर न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने आज नई दिल्ली में पशुधन बीमा पोर्टल की शुरुआत की। ये पोर्टल पशुधन बीमा के लिए एक एकीकृत डिजिटल मंच उपलब्ध कराएगा। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य पशुधन बीमा सेवाओं को अधिक पारदर्शी, प्रभावी और सुलभ बनाना है। एक रिपोर्ट।
7: पशुधन बीमा पोर्टल से देश में पशुधन बीमा कार्यक्रमों के बेहतर तालमेल, रियल टाइम मॉनिटरिंग और डेटा आधारित प्रबंधन में मदद मिलेगी। इससे पूरे देश में पशुपालकों को बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराए जा सकेंगे। श्री सिंह ने कहा कि ये पोर्टल किसानों की आजीविका की सुरक्षा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस विजन को पूरा करने की दिशा में एक अहम कदम है।
8: इस बीमा पोर्टल का लाभ किसानों को उठाना चाहिए। किसानों के लिए एक समस्या थी, दुर्घटना हो जाए, कोई बीमारी से पशु की मौत हो जाए तो उनकी आजीविका पर सीधा असर पड़ता था और उनकी आजीविका

0: अमेरिका को सुरक्षित करने के लिए यह बीमा योजना प्रधानमंत्री जी ने 2014 में देश के सभी जिलों में चलाया। आज उसको आगे बढ़ाने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए पोर्टल लॉन्च किया गया है।
1: ये पोर्टल हिंदी और अंग्रेजी के अलावा 11 क्षेत्रीय भाषाओं में भी उपलब्ध होगा। शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि बेहतर सड़क बुनियादी ढांचे के कारण देश की माल ढुलाई लागत में कमी आई है। श्री गडकरी नई दिल्ली में एक निजी मीडिया सम्मेलन में बोल रहे थे।
3: So if you want to make more export,
4: अगर हमें निर्यात को बढ़ाना है तो हमें लॉजिस्टिक लागत को कम करना होगा। आर्थिक संस्थानों द्वारा किए गए विशेष शोध और IIM बेंगलोर, IIT कानपुर तथा IIT मद्रास की एक रिपोर्ट से ये स्पष्ट संकेत मिलता है कि भारत में लॉजिस्टिक लागत में 6% की कमी आई है। पहले ये लगभग 16% थी और एक वर्ष पहले मिली रिपोर्ट के अनुसार सड़कों के बेहतर निर्माण के कारण इसमें 10% की कमी आई है।
3: 6% so it comes to 10% one year before.
2: सर्वोच्च न्यायालय ने 2,000 रूपए से अधिक के UPI लेन देन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट MDR लागू करने के केंद्र सरकार के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। ये शुल्क 15 अक्टूबर से प्रभावी होने हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देशवासियों से जनगणना के लिए समय निकालने का आग्रह किया। कल मन की बात कार्यक्रम में किए गए अपने आह्वान को दोहराते हुए श्री मोदी ने कहा कि जनगणना में भाग लेना सभी नागरिकों का राष्ट्रीय कर्तव्य है। उन्होंने कहा कि इस भागीदारी से देश के भविष्य की सही तस्वीर सामने आती है। भारत आज सर्जिकल स्ट्राइक की 10वीं वर्षगांठ मना रहा है। 28 और 29 सितंबर 2016 की रात सेना ने नियंत्रण रेखा के पार आतंकवादी ठिकानों पर लक्षित कार्रवाई की थी। ये कार्रवाई 18 सितंबर को उरी आतंकी हमले के बाद की गई थी। इसमें 18 जवान शहीद हुए थे। आकाशवाणी से कल मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2016 के सर्जिकल स्ट्राइक को एक महत्वपूर्ण पड़ाव बताया।
5: बीते एक दशक में बालाकोट की एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक भारत ने बार बार ये स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर आतंकवादी भारत पर आंख उठाएंगे तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। आतंकवादी हमलों ने भारत को लंबे समय तक चोट पहुंचाई है। पहले भी हर आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर कार्रवाई की मांग होती थी। अब आज का भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लेकर चल रहा है।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा के क्षेत्र में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। ये जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और लगातार जारी रहने वाले समर्पण से संभव हुआ है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार भारत को वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से ये समर्पण लोगों की जिंदगी बदल रहा है। आज अपनी विशेष श्रृंखला में हम बात कर रहे हैं कि सहकारिता मंत्रालय के माध्यम से इस संकल्प को कैसे वास्तविकता में बदला गया।
6: भारत के सहकारी क्षेत्र में 8.5 लाख से अधिक पंजीकृत समितियां शामिल हैं, जिनसे 32 करोड़ से ज्यादा लोग जुड़े हैं। यह क्षेत्र खेती के ऋण, डेयरी, चीनी, मत्स्य पालन, आवास और विपणन जैसे क्षेत्रों में फैला है और ग्रामीण भारत के लगभग 98% हिस्से को कवर करता है। साल 2021 तक इसके लिए कोई अलग से मंत्रालय नहीं था। इसकी जिम्मेदारी कृषि मंत्रालय के पास थी, जो अलग अलग विभागों और राज्यों में बंटी हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जुलाई 2021 में भारत में पहली बार एक अलग सहकारिता मंत्रालय बनाया गया। इस मंत्रालय ने राष्ट्रीय सहकारिता डेटाबेस तैयार किया ताकि जानकारी प्राप्त की जा सके कि जमीनी स्तर पर वास्तव में कितनी समितियां काम कर रही हैं। इसके अलावा बहुराज्य सहकारी समितियों के लिए नए नियम बनाए गए। प्राथमिक कृषि ऋण समितियों का डिजिटलीकरण किया गया। साथ ही सहकारी बैंकों को सीधे सरकारी योजना के तहत मिलने वाले पैसों से भी जोड़ दिया गया। नई दिल्ली में आयोजित वैश्विक सहकारिता सम्मेलन 2024 को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सहकार से समृद्धि के दृष्टिकोण को रेखांकित किया और कहा कि यह लाखों गांवों, महिलाओं और किसानों की समृद्धि का मार्ग प्रशस्त कर रहा है।
5: आज भारत में हम सरकार और सहकार की शक्ति को एक साथ जोड़कर भारत को विकसित बनाने में जुटे हैं। हम सहकार से समृद्धि के मंत्र पर चल रहे हैं। भारत में आज 8 लाख यानी 800,000 सहकारी समितियां हैं। यानी दुनिया की हर चौथी सहकारी समिति आज भारत में है।
6: भारत टैक्सी भी सहकारिता मंत्रालय की एक महत्वपूर्ण पहल है। ये सहकारी मॉडल पर आधारित एक चालक केंद्रित गतिशीलता मंच है। इसका उद्देश्य जनता को सस्ती, सुरक्षित और विश्वसनीय परिवहन सेवाएं प्रदान करते हुए चालकों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। भारत टैक्सी में शामिल होने के बाद अपने सकारात्मक अनुभवों को साझा करते हुए राजीव कुमार नाम के एक चालक ने सभी साथी चालकों से भारत टैक्सी को अपनाने और सहयोग

0: के माध्यम से समृद्धि के इस मिशन को आगे बढ़ाने का आह्वान किया।
1: मैं सभी से रिक्वेस्ट ये करूंगा ड्राइवर भाई सारथी भाइयों से कि सभी सहकार बाहर टैक्सी से जुड़े और इसमें ज्यादा से ज्यादा काम करें। सहकारिता का ये है सहकार से समृद्धि की ओर, तो इसको भी समझने की जरूरत है। जो रीजन है कि लोगों के उत्थान के लिए जो कार्य कर रहे हैं उसमें सहकारिता में अपनी भागीदारी निभाई है।
0: पिछले 5 वर्षों में सहकारिता मंत्रालय ने सहकारी समितियों को समावेशी विकास के इंजन के रूप में बदल दिया है। जैसे जैसे भारत समावेशी और सतत विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है, सहकारी समितियां समान विकास और मजबूती को बढ़ावा देना जारी रखेंगी। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। भारत और मंगोलिया के बीच आज से सीधी विमान सेवा शुरू हो गई है। नई दिल्ली और उलान बटार के बीच नियमित उड़ान शुरू होने से दोनों राजधानियों के बीच यात्रा का समय करीब 5 घंटे रह जाएगा। मंगोलिया की हुनू एयर द्वारा संचालित ये सेवा हर सोमवार को उपलब्ध होगी। इससे पहले यात्रियों को पेइचिंग या इंचियोन जैसे स्थानों पर विमान बदलना पड़ता था और यात्रा में लगभग 13 से 18 घंटे लगते थे। सीधी विमान सेवा से पर्यटन, चिकित्सा और व्यापार सहित कई क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच आवागमन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। इस सेवा की घोषणा पिछले वर्ष अक्टूबर में नई दिल्ली में मंगोलिया के राष्ट्रपति यू घुरिल सुख और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबद्ध संवाददाता सम्मेलन के दौरान की गई थी। जापान एशियाई खेलों में भारत ने आज भी पदक जीतने का सिलसिला जारी रखा है। निशानेबाजी, क्रिकेट, कुराश, एथलेटिक्स और मुक्केबाजी में खिलाड़ियों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। भारत ने आज अपने खाते में 8 और पदक जोड़े हैं। पुरुष क्रिकेट टीम भी सेमीफाइनल में पहुंच गई है। लंबी दूरी के धावक गुलवीर सिंह ने पुरुषों की 1500 मीटर दौड़ के फाइनल में 3:36.72 के व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के साथ रजत पदक जीता। भालाफेंक स्पर्धा में यशवीर सिंह ने 85.14 मीटर के शानदार थ्रो के साथ रजत पदक देश के नाम किया। निशानेबाजी में ईशा सिंह ने महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में रजत पदक जीता। सेंसेक्स 6 महीने के निचले स्तर पर पहुंच गया है। 1124 अंक घटकर 72772 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 360 अंक गिरकर 22780 दर्ज हुआ। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृहमंत्री अमित शाह का आतंकवाद से निपटने के लिए मजबूत तंत्र बनाने का आह्वान। प्रत्यर्पण पोर्टल शुरू। भारत और संयुक्त अरब अमीरात स्थानीय मुद्रा में व्यापार उपायों को लागू करने पर सहमत। केंद्रीय दल सूखे की स्थिति का आकलन करने के लिए कर्नाटका और महाराष्ट्र का दौरा करेगा। पशुधन बीमा दावों और निगरानी को सुव्यवस्थित करने के लिए पशुधन बीमा पोर्टल शुरू। भारत और मंगोलिया के बीच सीधी उड़ान सेवा शुरू। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: Good evening. This is Akashvani. I am Zaira Mujtaba with the news at 9. The headlines. Home Minister Amit Shah calls for stronger mechanism to combat terrorism, launches new extradition portal. India and UAE agree to implement initiatives for trade in local currency, aim to boost bilateral trade to $200 billion by 2032. Central teams to visit Karnataka and Maharashtra to assess drought situation. Government launches Pashudhan Bima portal to streamline livestock insurance claims and monitoring. Non-stop flight between India and Mongolia takes off. Sensex hits a 6-month low to close at 72,772. And at Asian Games 2026, India add 8 more medals. In men's javelin throw, Yashveer Singh takes silver. Sri Shankar Murali in long jump, Gulveer Singh in 1500 meter race and Isha Singh in shooting also strike silver. And now the news in detail. Union Home Minister Amit Shah today inaugurated the conference on Prahar, National CT Policy and Strategy in New Delhi. The conference deliberated upon the 7 pillars of Prahar, including prevention, response, aggregating internal capacities, human rights, attenuating conditions for terrorism, aligning international efforts and recovery and resilience through a whole-of-society approach. Speaking on the occasion, the Home Minister said the government has adopted a zero-tolerance policy against all forms and manifestations of terrorism. He highlighted that

आदाब, ये आकाशवाणी है खबरों के साथ, मैं मोहम्मद अम्मार। वजीर दाखला अमित शाह ने दहशतगर्दी से निपटने के लिए मजीद मुस्तहकम निजाम वजा करने पर जोर दिया है। उन्होंने हवालगी के नए पोर्टल का आगाज किया। भारत और मुत्तहिदा अरब इमारात ने मकामी करेंसी में तजारत से मुताल्लिक इकदामात नाफिज करने पर इत्तेफाक किया है, जिसका मकसद 2032 तक बाहमी तजारत को 200 अरब डॉलर तक पहुंचाना है। मरकजी टीमें कर्नाटक और महाराष्ट्र में खुश्कसाली के हालात का जायजा लेने के लिए दोनों रियासतों का दौरा करेंगी। हुकूमत ने पशुधन बीमा पोर्टल शुरू किया है, जिसका मकसद मवेशियों का बीमा, दावों और निगरानी के निजाम को आसान और मुअस्सर बनाना है। भारत और मंगोलिया के दरमियान बराह रास्त परवाज शुरू हो गई है। सेंसेक्स 6 माह की कमतरीन सतह पर पहुंच गया और ये 72,772 पर बंद हुआ। और एशियाई खेलों 2026 में भारत ने मजीद 8 तमगे हासिल किए हैं। मर्दों के नेजा फेंकने के मुकाबले में यशवीर सिंह ने चांदी का तमगा जीता। श्री शंकर मुरली ने लॉन्ग जंप, गुलवीर सिंह ने 1500 मीटर की दौड़ और ईशा सिंह ने निशानेबाजी में चांदी के तमगे हासिल किए। अब खबरें तफसील से। मरकजी वजीर दाखला अमित शाह ने आज नई दिल्ली में परहार सीटी पॉलिसी और हिकमत अमली से मुतालिक कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह किया। ये कॉन्फ्रेंस परहार के 7 कलीदी सतूनों पर गौर खौज करेगी, जिनमें रोकथाम, जवाबी रद्दअमल, दाखिली सलाहियत में इजाफा, इंसानी हकूक, दहशतगर्दी के हालात में कमी, समाज के हमागीर नजरिए के तहत बैन अक्वामी कोशिशों से हमाहंगी, बाजियाबी और मुजाहमत शामिल हैं। इस मौके पर तकरीब से खिताब करते हुए जनाब शाह ने कहा कि वजीर आजम

0: रियासतों से 350 अफराद को गिरफ्तार किया गया। दहशतगर्दी के खतरात से निपटने के लिए किए जा रहे इकदाम का जिक्र करते हुए वजीर दाखिला ने फ्रेमवर्क के हर सतह पर इंसदाद दहशतगर्दी के खुदकार जवाबी रद्दअमल को इदारा जाती शक्ल देने की वकालत की। जनाब शाह ने हवालगी से मुतालिक नए पोर्टल का भी आगाज किया जो बैरून ममालिक से मफरूर मुलजमीन को वापस लाने की कोशिशों को तेज करेगा और उन्हें मुताबकत पैदा करेगा। भारत और मुत्तहदा अरब अमारात मकामी करंसियों में तिजारत की अदायगियों से मुतालिक इकदामात के बरवक्त नफाज पर राजी हो गए हैं। इनमें अदायगी और मैचिंग सिस्टम को मजबूत करना और सेंट्रल बैंक डिजिटल करंसियां शामिल हैं। आज मुंबई में सरमायाकारी पर भारत मुत्तहदा अरब अमारात आला सतही मुश्तरका टास्क फोर्स की 14वीं मीटिंग के दौरान दोनों फरीक इस मुआहदे पर पहुंचे। कॉमर्स और सनतों के वजीर पीयूष गोयल और अबूजबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी ADIA के मैनेजिंग डायरेक्टर शेख हामिद बिन जायद अन्नहयान ने मुश्तरका तौर पर इस मीटिंग की सदारत की। कॉमर्स और सनतों की वजारत ने अपने बयान में कहा है कि ये मामलात अहम हैं क्योंकि इनसे दो तरफा तिजारत और सरमायाकारी ज्यादा मुअसर काबिल रसाई और पायदार हो सकती है। तवानाई सनत लॉजिस्टिक्स बुनियादी ढांचा टेक्नोलॉजी और मसनू जहानत खला खुराक की यकीनी फराहमी ज़रई इख्तिरात और स्टार्टअप इकोसिस्टम वो शोबे हैं जिनमें दो तरफा सरमायाकारी को फरोग दिया जा सकता है। मीटिंग के बाद नामनिगारों से गुफ्तगू करते हुए जनाब गोयल ने कहा कि भारत ने इस साल अशिया और खिदमात की मजमू बरामदात के हजम को गुज़श्ता साल के 863 अरब अमरीकी डॉलर से बढ़ाकर 1 खरब अमरीकी डॉलर करने का निशाना मुकर्रर किया है। जनाब गोयल ने कहा कि जामع इक्तिसादी साझेदारी मुआहदे के तहत भारत और मुत्तहदा अरब अमारात के दरमियान दो तरफा तिजारत दुगनी होकर तकरीबन 100 अरब डॉलर अमरीकी डॉलर तक जा पहुंची है। दोनों ममालिक साल 2032 तक दो तरफा तिजारत को 200 अरब अमरीकी डॉलर तक ले जाना चाहते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि फूड प्रोसेसिंग और बरामदात में वसीतर इश्तराक से भारतीय किसानों को यकीनी तौर पर बाजार मिलेंगे, साथ ही नौजवानों और एमएसएमईज के लिए रोजगार के मौके फराहम होंगे। जनाब गोयल ने मजीद कहा कि भारत और मुत्तहदा अरब अमारात तवानाई की यकीनी फराहमी को मुस्तहकम करने के लिए स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम जखायर LNG और LPG सप्लाई और जेर समंदर मुमकिना गैस पाइपलाइन के मैदान में ताउन के इम्कान तलाश कर रहे हैं। बहरी शोबे में जदीद बंदरगाहों बहरी जहाज साजी बहरी जहाजों की मरम्मत और कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग में इश्तराक पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। मरकजी हुकूमत कर्नाटक और महाराष्ट्र में खुश्क साली की सूरतहाल का जायजा लेने के लिए अपनी टीमें रवाना करेगी। ज़राअत और किसानों की बहबूद के मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में रबी मुहिम 2026 से मुतालिक कौमी ज़रई कॉन्फ्रेंस के इफ्तिताही इजलास के बाद नामनिगारों से बात करते हुए कहा कि महाराष्ट्र और कर्नाटक की हुकूमतों ने अपनी रियासतों के बड़े हिस्सों में खुश्क साली का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि खुश्क साली की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए 3 अक्टूबर को मरकजी टीम कर्नाटक भेजी जाएगी। वजीर मौसूफ ने कहा कि इस मुश्किल हालात में मरकजी हुकूमत रियासतों के साथ पूरी मजबूती से खड़ी है।
1: राज्य सरकारों ने महाराष्ट्र में बड़े हिस्से पर और कर्नाटक में भी बड़े हिस्से पर सूखा घोषित किया है। भारत सरकार राज्यों के साथ डट के खड़ी रहेगी। कर्नाटक में भी 3 अक्टूबर को टीम बना के भेज रहे हैं वहाँ की स्थिति के आकलन के लिए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी से बात हुई है तो भाभी हम टीम की तैयारी कर रहे हैं। मैं स्वयं भी उन राज्यों में जाके स्थिति देखूंगा और हम अपने किसानों के साथ राज्य सरकारों के साथ पूरी ताकत से खड़े रहेंगे इस परिस्थिति का मुकाबला करने के।
0: जनाब चौहान ने मजीद कहा कि इब्तदाई तौर पर ये खदशात थे कि अनिनों के असरात से काश्तकारी का रकबा कम हो सकता है और बड़ी मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। ताहम वजीर मौसूफ ने कहा कि मुल्क ने खरीफ की फसलों की बुआई के तकरीबन तमाम मुकर्रा अहदाफ हासिल कर लिए हैं। जनाब चौहान ने मुल्क भर में खादों की मुनासिब दस्तियाबी को यकीनी बनाने के हुकूमत के अज्म का यादा किया। उन्होंने मुश्किल हालात के बावजूद मुनासिब मकदार में खाद की दस्तियाबी यकीनी बनाने के लिए वजीर आजम नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया। वजीर मौसूफ ने खाद के मुतवाजन इस्तेमाल की अहमियत पर जोर दिया ताकि जमीन की जरखेजी को बरकरार रखा जा सके। उन्होंने ऐलान किया कि मुल्क भर में खेत बचाओ अभियान चलाया जाएगा। इस मुहिम का मकसद ये यकीनी बनाना है कि खाद का इस्तेमाल सॉइल हेल्थ कार्ड यानी मिट्टी की जरखेजी से मुतालिक कार्ड में पेश की गई सिफारिशात के मुताबिक किया जाए और खासतौर पर मिट्टी में मौजूद गजाई अज्जा की कमी को दूर किया जाए। हुकूमत ने आज नई दिल्ली में पशुधन बीमा पोर्टल का आगाज किया। ये पोर्टल बीमा पॉलिसी جاری کرنے سے متعلق معاملات، دعووں، نگرانی اور رپورٹنگ کو آسان بناتے ہوئے مویشیوں کے لیے ایک ہی جگہ مربوط ڈیجیٹل

0: बीमा प्लेटफॉर्म फ्राहम करेगा। मवेशी परवरी और डेयरी के महकमे की मवेशियों की बीमा स्कीम के तहत बीमा किए गए मवेशियों के लिए यह मुमकिन हो सकेगा। इस मौके पर खिताब करते हुए माही परवरी, मवेशी परवरी और डेयरी के मरकजी वजीर राजीव रंजन सिंह ने कहा कि इस पहल का मकसद मवेशियों की बीमा खिदमात को ज्यादा शफाफ, मुअस्सर, काबिल रसाई और टेक्नोलॉजी पर मबनी बनाना है। साथ ही मवेशियों के हामिल किसानों और उनकी गुजर बसर की पायदारी को मदद करने की खातिर जोखिम से मुतल्लिक तहफ्फुज को तकवीत देना है। तफसील हमारे नामनिगार से।
1: पशुधन बीमा पोर्टल मुल्क भर में मवेशियों के बीमा प्रोग्रामों में खिदमात की बेहतर फराहमी में तआवुन करते हुए बेहतर तालमेल, बरवक्त निगरानी और डेटा पर मबनी इंतजाम में मदद करेगा। जनाब सिंह ने कहा कि यह पोर्टल किसानों की गुजर बसर के तहफ्फुज की जानिब अहम कदम है और किसान की आमदनी बढ़ाने, उसके ज़रई असासों और मवेशियों के तहफ्फुज और टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को फ़रोग देने के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के नज़रिए की तकमील करता है। जनाब राजीव रंजन सिंह ने कहा कि इस पोर्टल के जरिए किसान अब अपनी बीमा दरख्वास्तें ऑनलाइन दाखिल कर सकेंगे, वहीं इस पूरे अमल की डिजिटल निगरानी की जाएगी।
2: इस बीमा पोर्टल का लाभ किसानों को उठाना चाहिए। किसानों के लिए एक समस्या थी, दुर्घटना हो जाए, कोई बीमारी से पशु की मौत हो जाए तो उनकी आजीविका पर सीधा असर पड़ता था और उनकी आजीविका को सुरक्षित करने के लिए यह बीमा योजना प्रधानमंत्री जी ने 2014 में देश के सभी जिलों में चलाया। आज उसको आगे बढ़ाने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए पोर्टल लॉन्च किया गया है।
1: पशुधन बीमा पोर्टल हिंदी और अंग्रेजी समेत 11 मुकामी जबानों में भी दस्तियाब होगा, जिससे मवेशियों के मालिक किसान उनकी अपनी जबान में मालूमात और खिदमात तक रसाई हासिल कर सकेंगे। नई दिल्ली से शिवांग मिश्रा की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए जमीर रजवी।
0: ये खबरें आकाशवाणी से नश्र की जा रही हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की अवामी खिदमात के 25 बरस मुकम्मल हो रहे हैं, जो जनसेवा से देश सेवा के मंत्र पर मबनी है और इस अंथक अजम का सिलसिला जारी है। सेवा और सुशासन के इस नजरिए के तहत हुकूमत 2047 तक विकसित भारत के मकसद को हासिल करने की खातिर अंथक काम कर रही है। आज अपनी खसूसी सीरीज में हम तस्करा कर रहे हैं कि इमदाद बाहमी की वजारत के जरिए इस नजरिए को किस तरह बरूए कार लाया जा रहा है।
3: भारत के इमदाद बाहमी के शोबे में 8.5 लाख से ज्यादा रजिस्टर्ड सोसाइटियां शामिल हैं, जिनके 32 करोड़ से ज्यादा मेंबरान हैं। ये सोसाइटियां कर्ज, डेयरी, चीनी, माही परवरी, मकानात और मार्केटिंग समेत मुख्तलिफ शोबों से वाबस्ता हैं और मुल्क के देही इलाकों के तकरीबन 98% हिस्से का अहाता करती हैं। साल 2021 तक इमदाद बाहमी की खातिर अलग से कोई वजारत नहीं थी। इसकी जिम्मेदारी वजारत ज़राअत के पास थी, जो मुख्तलिफ महकमों और रियासतों में तकसीम थी, जबकि बेशतर बुनियादी सोसाइटियां अब भी कागजों पर अपने रिकॉर्ड रखती थीं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में जुलाई 2021 में इमदाद बाहमी की वजारत की तश्कील अमल में आई। इस वजारत ने मुल्क में अपनी नौईयत का पहला कौमी कोऑपरेटिव डेटाबेस तैयार किया, ताकि मुल्क में मौजूद इमदाद बाहमी के इदारों का दुरुस्त रिकॉर्ड मुरतब किया जा सके। इसके अलावा बैन रियासती कोऑपरेटिव सोसाइटियों के लिए एक फ्रेमवर्क तैयार किया गया और बुनियादी जरई कर्ज सोसाइटीज पीएसीज को कंप्यूटराइज करने के लिए माली मदद फराहम की गई। वजारत ने कोऑपरेटिव बैंकों को फवाइद की बराह रास्त मुंतकली डीबीटी के निजाम से भी मुंसलिक किया। 2024 में नई दिल्ली में मुनक्किदा आलमी कोऑपरेटिव कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने सहकार से समृद्धि का नजरिया पेश किया और कहा कि यह लाखों गांवों, खवातीन और किसानों के लिए खुशहाली की राह हमवार कर रहा है।
4: आज भारत में हम सरकार और सहकार की शक्ति को एक साथ जोड़कर भारत को विकसित बनाने में जुटे हैं। हम सहकार से समृद्धि के मंत्र पर चल रहे हैं। भारत में आज 8 लाख यानी 800,000 सहकारी समितियां हैं, यानी दुनिया की हर चौथी सहकारी समिति आज भारत में है।
3: नई दिल्ली से अमन यादव की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं फुरकान खान।
0: कल से दिल्ली भर के कॉलेजों, यूनिवर्सिटियों और दिगर तालीमी इदारों में नौजवान वोटरों के इंदराज के लिए खसूसी कैंप मुनक़िद किए जाएंगे। ये कैंप वोटर फेरिस्त की खसूसी जामे नजरसानी SIR 2026 के तहत लगाए जा रहे हैं। दिल्ली के चीफ इलेक्टोरल ऑफिस ने तलबा से अपील की है कि वो इस मौके से फायदा उठाते हुए वोटर फेरिस्त में अपना नाम दर्ज कराएं और जमहूरी अमल में हिस्सा लें। ये खसूसी कैंप बुध तक जारी रहेंगे। भारत और मंगोलिया के दरमियान आज से बराह रास्त प्रवास शुरू हो गई है। नई दिल्ली और उलान बातार के दरमियान बाकायदा तौर पर प्रवास का आगाज किया गया। इस सर्विस के शुरू होने से दोनों राजधानी के दरमियान सफर का वक्त कम होकर तकरीबन 5 घंटे हो जाएगा। ये प्रवास मंगोलिया

की फजाई कंपनी हुन्नू एयर के जरिए चलाई जा रही है और हर पीर को दस्तयाब रहेगी। इस नए फजाई रास्ते से उन मुसाफिरों के सफर का वक्त नुमाया तौर पर कम हो जाएगा जो इससे पहले बीजिंग या इंचियोन जैसे मकामात पर परवाज तब्दील करके सफर करते थे। इस सफर में आमतौर पर 13 से 18 घंटे लगते थे। बुनियादी घरेलू इशारे में आज 1.5% की गिरावट दर्ज की गई। सेंसेक्स में 1,124 पॉइंट्स की गिरावट दर्ज की गई और वो गुज़िश्ता 6 महीनों के सबसे निचले मकाम पर पहुंच गया। निफ्टी में भी गिरावट दर्ज की गई और वो 22,800 से नीचे बंद हुआ। इस गिरावट के असबाब खाम तेल की कीमत में इजाफा, खित्ते की सियासत में गैर यकीनी की सूरत हाल और कमजोर आलमी रुझानात हैं जिनका असर सरमायाकारों के जज्बे पर पड़ा है। जापान में जारी एशियाई खेलों में आज भारत ने मजीद 8 तमगे जीते हैं। इनमें निशानेबाजी, एथलेटिक्स, क्रिकेट, कुरश और मुक्केबाजी शामिल हैं। एथलेटिक्स में मर्दों के भाला फेंकने के मुकाबले में भारत के यशवीर सिंह ने चांदी का और रोहित यादव ने कांसे का तमगा जीता। वहीं मर्दों की लॉन्ग जंप में भारत के श्री शंकर मुरली ने 8 मीटर की बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए चांदी का तमगा अपने नाम किया। मर्दों की 1,500 मीटर की दौड़ में गुलवीर सिंह ने चांदी का तमगा हासिल किया। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर दाखिला अमित शाह ने दहशतगर्दी से निपटने के लिए मजीद मुस्तहकम निजाम वजा करने पर जोर दिया है। उन्होंने हवालगी के नए पोर्टल का आगाज किया। भारत और मुत्तहदा अरब इमारात ने मकामी करेंसी में तजारत से मुतालिक इकदामात नाफिज करने पर इत्तेफाक किया है जिसका मकसद 2032 तक बाहमी तजारत को 200 अरब डॉलर तक पहुंचाना है। मरकजी टीमें कर्नाटक और महाराष्ट्र में खुश्क साली के हालात का जायजा लेने के लिए दोनों रियासतों का दौरा करेंगी। हुकूमत ने पशुधन बीमा पोर्टल शुरू किया है जिसका मकसद मवेशियों का बीमा दावों निगरानी के निजाम को आसान और मुअस्सर बनाना है। भारत और मंगोलिया के दरमियान बराह रास्त परवाज शुरू हो गई है। सेंसेक्स 6 माह की कमतरीन सतह पर पहुंच गया और ये 72,772 पर बंद हुआ। और एशियाई खेलों 2026 में भारत ने मजीद 8 तमगे हासिल किए हैं। इसके साथ ही खबरों का बुलेटिन खत्म हुआ।

लता मंगेशकर यक नाम खुदे मानी दर सरासरे तू लो अर्ज किश्वर शेबे गारे व दूर तरजान मी बाशा दर साले हजारों नसदो चहलो दो हंगामी के तनहा सीज दा थाल दाश्ते वारी दे जहाने सिनी माशूद। अव्वलीन फिल्म में लता मंगेशकर के दौरान वे नक्श राबाजी कर दे व आवाज हम खांदे मंगला गौर बेजबान मराती बूर तराने हाइये इन फिल्म बेकूशे अलागमंदान मौसीगी रसीदे व इन तो लता मंगेशकर बा अव्वलीन फिल्म खुद शोहरत व मकबूलियत रा नसीब खुद सा पसदान मौसीगी दाना ने सिनेमाई हिंदी नीज असीदाई लता मंगेशकर इस्तेफादे करदन अम्मा इन बार ऊ आवाज खानी रा बर हुनर पीशेगी तरजी दादे जीरा लता सिदा ये मुतरन्निम व इश्तियाक बे मौसीकी रा बे मीराज बुरदयास। लता मंगेशकर दर साले हजारों नजदो चहलो हश्त बेउरवा ने खानंदई दर फिल्म में मजबूर शोहरत बे सिदाई याफ्त अम्मा शायद तराना ए ऊ ए मेरे वतन के लोगो दर दौरान हमला चीन के दर साले हजारों नसदो शस्तो दो चश्म हाइये पांडी जवाहरलाल नेहरू नुगोस वजीर आन जमान रा आशकुबार कर दे काबिले फरामोश नशुदनीस।

0: أيها السادة، استمعنا إلى مجموعة من هذه الأغاني العربية الرائعة، وبهذا نختتم برامجنا المسائية مع أمل لقائكم في برامجنا الصباحية في تمام الساعة 10:15 صباحا بتوقيت الهند المحلي كالمعتاد. حتى ذلك الحين نتمنى لكم أطيب الأوقات وأسعدها، ودمتم حيا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। गृह मंत्री अमित शाह ने कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय आतंकरोधी नीति और रणनीति प्रहार सम्मेलन का उद्घाटन किया। सम्मेलन में प्रहार के 7 स्तंभों पर चर्चा हुई। इनमें आतंकवाद की रोकथाम, उससे निपटने की कार्रवाई, आंतरिक क्षमताओं का एकीकरण, मानवाधिकार, आतंकवाद के लिए अनुकूल परिस्थितियों को कम करना, अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों में समन्वय तथा पूरे समाज की भागीदारी से पुनर्प्राप्ति और लचीलापन शामिल है।
2: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने आतंकवाद के सभी रूपों के खिलाफ कतई बर्दाश्त न करने की नीति अपनाई है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2019 से 2026 के बीच सरकार 36 देशों से 288 भगोड़े अपराधियों को भारत वापस लाई है। श्री शाह ने नया प्रत्यर्पण पोर्टल भी शुरू किया। ये विदेशों में मौजूद भगोड़ों को भारत वापस लाने के प्रयासों में समन्वय और तेजी लाने में मदद करेगा। समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
1: भारत और संयुक्त अरब अमीरात स्थानीय मुद्रा में व्यापार के निपटान, भुगतान और संदेश प्रणालियों के एकीकरण तथा केंद्रीय बैंक की डिजिटल मुद्राओं से संबंधित पहलों के समय पर क्रियान्वयन के लिए कदम उठाने पर सहमत हुए हैं। दोनों पक्षों ने कल मुंबई में निवेश संबंधी भारत यूएई उच्च स्तरीय संयुक्त कार्यबल की 14वीं बैठक के दौरान इस समझौते पर सहमति व्यक्त की। बैठक की सहअध्यक्षता वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और अबुधाबी निवेश प्राधिकरण के प्रबंध निदेशक शेख हामिद बिन जायद अल नहयान ने की। श्री गोयल ने कहा कि दोनों देशों के बीच निवेश बढ़ाने के लिए ऊर्जा, उद्योग, बुनियादी ढांचा और स्टार्टअप जैसे क्षेत्रों की पहचान की गई है। विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कल संयुक्त अरब अमीरात के अबुधाबी में आयोजित 15वें संयुक्त राष्ट्र अपराध निवारण और आपराधिक न्याय सम्मेलन को संबोधित किया। अपने संबोधन में श्री मेघवाल ने डिजिटल न्याय की दिशा में भारत के प्रयासों, साइबर अपराध और आतंकवाद से निपटने के लिए कड़े उपायों, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में वृद्धि और समय पर न्याय पर बल दिया। भारत ने नस्लवाद, नस्लीय भेदभाव, विदेशियों के प्रति भय और इससे जुड़ी असहिष्णुता का मुकाबला करने तथा सभी के लिए समानता और सम्मान को बढ़ावा देने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सीबी जॉर्ज ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के दौरान डर्बन घोषणा और कार्ययोजना डीडीपीए को अपनाए जाने की 25वीं वर्षगांठ पर आयोजित उच्च स्तरीय बैठक को संबोधित करते हुए ये बात कही। भारत और इथियोपिया ने कल इथियोपिया की राजधानी अदीस अबाबा में दूसरी संयुक्त रक्षा सहयोग बैठक की। दोनों देशों ने सैन्य प्रशिक्षण और अभ्यास, चिकित्सा सहयोग, शांति स्थापना और रक्षा उद्योग सहित आपसी हित के क्षेत्रों पर चर्चा की। भारत ने श्रीलंका की राजधानी कोलंबो के लिए कल 3 टन क्षय रोग रोधी दवाओं की खेप भेजी। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने सोशल मीडिया पर कहा कि भारत श्रीलंका की सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था को सहयोग देने के लिए प्रतिबद्ध है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने कल लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज एलएचएमसी और उससे संबद्ध अस्पतालों सुचेता कृपलानी अस्पताल और कलावती सरन बाल अस्पताल की प्रगति की समीक्षा की। इस बैठक में स्वास्थ्य सेवा, बुनियादी ढांचा, विशेष नैदानिक सेवाओं, चिकित्सा शिक्षा, अनुसंधान और रोगी देखभाल को सुदृढ़ करने पर विशेष ध्यान दिया गया। बैठक को संबोधित करते हुए श्री नड्डा ने कहा कि एलएचएमसी और उससे संबद्ध अस्पताल में चल रही और आगामी परियोजनाओं की योजना रोगी केंद्रित और भविष्योन्मुखी दृष्टिकोण के साथ बनाई जानी चाहिए। भारतीय रेलवे

0: 5,000-meter event. Athlete Vidya Ramraj bagged bronze in the women's 400-meter hurdles, setting a new national record in the process. India also secured a bronze medal in Kurash, with Pinky Balhara finishing third in the women's under 78-kilogram category. In women's boxing, Olympic medalist Lavlina Borgohain and Priya Ghangas have assured India of two more medals. India are currently 12th in the Asian Games medal standings with a total of 45 medals comprising 4 gold, 20 silver and 21 bronze. And that is the end of this news bulletin.
1: आप सुन रहे हैं AIR लाइव न्यूज 24/7। समय हुआ है रात्रि के 1:10 और ये समय है कार्यक्रम गीत सुनहरे का, जिसमें आज आपके साथ मैं हूं मनोज। श्रोताओं, गीत सुनहरे कार्यक्रम में आप सुनते हैं पुराने सदाबहार गीत। आइए सुनते हैं ये, सबसे पहले ये गीत फिल्म भक्त सूरदास से KL सहगल साहब की आवाज़ में।

अगला गीत श्रोताओं आइए अगला गीत श्रोताओं आइए सुनते हैं फिल्म हॉस्पिटल से कानन देवी की मधुर आवाज में।

क्या खत्म न होंगे कभी ये गम के फसाने फुरकत के जमाने, क्या खत्म न होंगे कभी ये गम

0: इसी के साथ श्रोताओं, आज का गीत सुनहरे कार्यक्रम अब समाप्त होता है। 2 बजने वाले हैं, आइए सुनते हैं समाचार।
1: नमस्कार,

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। गृह मंत्री अमित शाह ने कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय आतंकरोधी नीति और रणनीति प्रहार सम्मेलन का उद्घाटन किया। सम्मेलन में प्रहार के सात स्तंभों पर चर्चा हुई। इनमें आतंकवाद की रोकथाम, उससे निपटने की कार्रवाई, आंतरिक क्षमताओं का एकीकरण, मानवाधिकार, आतंकवाद के लिए अनुकूल परिस्थितियों को कम करना, अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों में समन्वय तथा पूरे समाज की भागीदारी से पुनर्प्राप्ति और लचीलापन शामिल है।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने आतंकवाद के सभी रूपों के खिलाफ कतई बर्दाश्त न करने की नीति अपनाई है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2019 से 2026 के बीच सरकार 36 देशों से 288 भगोड़े अपराधियों को भारत वापस लाई है। श्री शाह ने नया प्रत्यर्पण पोर्टल भी शुरू किया। ये विदेशों में मौजूद भगोड़ों को भारत वापस लाने के प्रयासों में समन्वय और तेजी लाने में मदद करेगा। समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
0: भारत और संयुक्त अरब अमीरात स्थानीय मुद्रा में व्यापार के निपटान, भुगतान और संदेश प्रणालियों के एकीकरण तथा केंद्रीय बैंक की डिजिटल मुद्राओं से संबंधित पहलों के समय पर क्रियान्वयन के लिए कदम उठाने पर सहमत हुए हैं। दोनों पक्षों ने कल मुंबई में निवेश संबंधी भारत यूएई उच्च स्तरीय संयुक्त कार्यबल की 14वीं बैठक के दौरान इस समझौते पर सहमति व्यक्त की। बैठक की सह अध्यक्षता वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और अबुधाबी निवेश प्राधिकरण के प्रबंध निदेशक शेख हामिद बिन जायद अल नहयान ने की। श्री गोयल ने कहा कि दोनों देशों के बीच निवेश बढ़ाने के लिए ऊर्जा, उद्योग, बुनियादी ढांचा और स्टार्टअप जैसे क्षेत्रों की पहचान की गई है। भारत ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के दौरान नस्लवाद, नस्लीय भेदभाव, विदेशियों के प्रति नफरत और इससे जुड़ी असहिष्णुता से लड़ने के अपने संकल्प को फिर दोहराया है। डर्बन घोषणा और कार्य योजना को अपनाए जाने की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सीबी जॉर्ज ने वैश्विक समानता और मानवीय गरिमा को बढ़ावा देने पर भारत का रुख स्पष्ट किया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने सोशल मीडिया पर कहा कि सचिव जॉर्ज ने नस्लवाद, नस्लीय भेदभाव, ज़ेनोफोबिया और इससे जुड़ी असहिष्णुता से लड़ने और सभी के लिए समानता तथा गरिमा को बढ़ावा देने के भारत के अटूट संकल्प को फिर दोहराया। ठोस कार्रवाई की जरूरत पर जोर देते हुए विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत ने डीडीपीए को पूरी तरह और प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए ठोस राष्ट्रीय स्तर पर संचालित और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समन्वित प्रयासों की आवश्यकता पर बल दिया। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा है कि मानव अंतरिक्ष उड़ान, स्टार्टअप और नए अंतरिक्ष पारिस्थितिकी तंत्र पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत फ्रांस अंतरिक्ष सहयोग ने एक नए चरण में प्रवेश किया है। डॉ सिंह ने कल नई दिल्ली में फ्रांस के उच्च शिक्षा, अनुसंधान और अंतरिक्ष मंत्री फिलिप बैप्टिस्ट के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक के दौरान ये बात कही। उन्होंने कहा कि भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र में चल रहे परिवर्तन ने दोनों देशों के लिए सरकारी संस्थानों और स्थापित एजेंसियों से परे सहयोग का विस्तार करने की नई संभावनाएं पैदा की हैं। सरकार ने कल नई दिल्ली में पशुधन बीमा पोर्टल की शुरुआत की। ये पोर्टल पशुधन बीमा के लिए एक एकीकृत डिजिटल मंच उपलब्ध कराएगा। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य पशुधन बीमा सेवाओं को अधिक पारदर्शी, प्रभावी और सुलभ बनाना है। केंद्र सरकार कर्नाटक और महाराष्ट्र में सूखे की स्थिति का आकलन करने के लिए टीमें भेजेगी। नई दिल्ली में रबी फसल अभियान 2026 के लिए राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ये बात कही। भारत ने श्रीलंका की पब्लिक हेल्थ सिस्टम की मदद के लिए कोलंबो में लगभग 3 टन टीवी रोधी दवाएं भेजी हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए इन दवाओं को भेजने की जानकारी दी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: पाए रखा।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। गृह मंत्री अमित शाह ने कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय आतंकरोधी नीति और रणनीति प्रहार सम्मेलन का उद्घाटन किया। सम्मेलन में प्रहार के 7 स्तंभों पर चर्चा हुई। इनमें आतंकवाद की रोकथाम, उससे निपटने की कार्रवाई, आंतरिक क्षमताओं का एकीकरण, मानवाधिकार, आतंकवाद के लिए अनुकूल परिस्थितियों को कम करना, अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों में समन्वय तथा पूरे समाज की

0: भागीदारी से पुनर्प्राप्ति और लचीलापन शामिल है।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने आतंकवाद के सभी रूपों के खिलाफ कतई बर्दाश्त न करने की नीति अपनाई है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2019 से 2026 के बीच सरकार 36 देशों से 288 भगोड़े अपराधियों को भारत वापस लाई है। श्री शाह ने नया प्रत्यर्पण पोर्टल भी शुरू किया। ये विदेशों में मौजूद भगोड़ों को भारत वापस लाने के प्रयासों में समन्वय और तेजी लाने में मदद करेगा। समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
0: भारत और संयुक्त अरब अमीरात स्थानीय मुद्रा में व्यापार के निपटान, भुगतान और संदेश प्रणालियों के एकीकरण तथा केंद्रीय बैंक की डिजिटल मुद्राओं से संबंधित पहलों के समय पर क्रियान्वयन के लिए कदम उठाने पर सहमत हुए हैं। दोनों पक्षों ने कल मुंबई में निवेश संबंधी भारत यूएई उच्च स्तरीय संयुक्त कार्यबल की 14वीं बैठक के दौरान इस समझौते पर सहमति व्यक्त की। बैठक की सह अध्यक्षता वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा अबुधाबी निवेश प्राधिकरण के प्रबंध निदेशक शेख हामिद बिन जायद अल नहयान ने की। श्री गोयल ने कहा कि दोनों देशों के बीच निवेश बढ़ाने के लिए ऊर्जा, उद्योग, बुनियादी ढांचा और स्टार्टअप जैसे क्षेत्रों की पहचान की गई है। भारत ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के दौरान नस्लवाद, नस्लीय भेदभाव, विदेशियों के प्रति नफरत और इससे जुड़ी असहिष्णुता से लड़ने के अपने संकल्प को फिर दोहराया है। डर्बन घोषणा और कार्य योजना को अपनाए जाने की 25वीं वर्षगांठ के मौके पर आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सीबी जॉर्ज ने वैश्विक समानता और मानवीय गरिमा को बढ़ावा देने पर भारत का रुख स्पष्ट किया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि सचिव जॉर्ज ने नस्लवाद, ज़ेनोफोबिया और इससे जुड़ी असहिष्णुता से लड़ने और सभी के लिए समानता तथा गरिमा को बढ़ावा देने के भारत के अटूट संकल्प को फिर दोहराया। भारत कजाकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास कजिंद के 9वें संस्करण में भाग लेने के लिए भारतीय सशस्त्र बलों का 60 सदस्यीय दल कल कजाकिस्तान के ओस्केमेन के लिए रवाना हुआ। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि इस अभ्यास का उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र के निर्देशों के अंतर्गत संयुक्त आतंकवाद रोधी अभियानों को अंजाम देने के लिए दोनों बलों के बीच समन्वय को बढ़ाना और संयुक्त क्षमता को मजबूत करना है। म्यांमार की सेना ने एक ताकतवर विद्रोही गुट के कब्जे वाले इलाके में बाजार के पास हवाई हमला किया, जिसमें कम से कम 33 लोगों की मौत हो गई और 36 अन्य घायल हैं। अराकान आर्मी के मुताबिक ये हमला कल क्योक्ताव टाउनशिप में हुआ, जो देश के दूसरे सबसे बड़े शहर मांडले से लगभग 340 किलोमीटर पश्चिम में है। मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है। सेना ने हमले पर तुरंत कोई टिप्पणी नहीं की। रक्षा उत्पादन सचिव संजीव कुमार और पोलैंड की राज्य सचिव तथा उप रक्षा मंत्री मागदेलेना सोबकोवियाक जारनेका ने कल नई दिल्ली में भारत पोलैंड संयुक्त कार्य समूह की बैठक की सह अध्यक्षता की। रक्षा मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर बताया कि बैठक में संयुक्त कार्य योजना 2024 से 2028 को लागू करने पर चर्चा हुई। दोनों पक्षों ने भारत और पोलैंड के बीच संस्थागत रक्षा और रक्षा उद्योग संबंधी सहयोग को और मजबूत करने पर भी जोर दिया। भारत ने नई दिल्ली में कल हुई भारत फिजी द्विपक्षीय संयुक्त कार्य समूह की दूसरी बैठक में स्वतंत्र, खुले, समावेशी और सुरक्षित हिंद प्रशांत क्षेत्र के अपने दृष्टिकोण में फिजी और प्रशांत द्वीप देशों के महत्व को दोहराया है। बैठक की सह अध्यक्षता रक्षा मंत्रालय में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के संयुक्त सचिव अमिताभ प्रसाद और फिजी के रक्षा तथा पूर्व सैनिक मामलों के स्थायी सचिव मेसन स्मिथ ने की। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by R.S. Raghu. Union Home Minister Amit Shah yesterday inaugurated the conference on Prahar, National City Policy and Strategy in New Delhi. The conference deliberated upon 7 pillars of Prahar, including prevention, response, aggregating internal capacities, human rights, attenuating conditions for terrorism, aligning international efforts and recovery and resilience through a whole of society approach. Speaking on the occasion, The Home Minister said the government has adopted a zero-tolerance

शफक कहते हैं किरणों को, रेस और धनु रेनबो, महताब चंद्रमा, घटाएं तो आपको मालूम है, शफक धनुक महताब घटाएं, तारे नगमे बिजली फूल।

अब आप सुनेंगे भगवान कृष्ण को समर्पित एक रचना, स्वर चेरतला आर गोपालन नायर और के राधामणि के हैं।

श्रोताओं, नाद ब्रह्म कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आपने थाला वैद्य काचेरी और याला वेंकटेश्वरा राव की ये प्रस्तुति सुनी।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। आज मंगलवार है, शक संवत 1948 के अश्विन मास की सातवीं तिथि। तदनुसार 19 सितंबर 2026 सुबह के 4:53 और 57 सेकेंड हुए हैं। अब हमारे कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडिया वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। वक्त हो चला है 4:58 और 5 सेकेंड। श्रोताओं, आइए आपको आगे प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी दे दें। 5:10 पर आप सुन सकते हैं कार्यक्रम आओ योग करें। आज इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे तितली अभ्यास क्रिया और दीर्घ श्वास प्रेक्षा के बारे में।

5:20 पर आप सुन सकते हैं कार्यक्रम देश भक्ति गीत, जबकि 5:30 का वक्त होगा कार्यक्रम स्वर रंजनी का। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज आप सुनेंगे वरुण कुमार पाल द्वारा गिटार पर बजाए राग नट भैरव।

0: 6:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम वंदना, जबकि 6:40 पर आप सुन सकते हैं कार्यक्रम चिंतन। और अब सुबह के 5 बजने को है, आइए सुनते हैं हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। गृह मंत्री अमित शाह ने कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय आतंकरोधी नीति और रणनीति प्रहार सम्मेलन का उद्घाटन किया। सम्मेलन में प्रहार के 7 स्तंभों पर चर्चा हुई। श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने सभी तरह के आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति अपनाई है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2019 से 2026 के बीच सरकार 36 देशों से 288 भगोड़े अपराधियों को भारत वापस लाई है। श्री शाह ने नया प्रत्यर्पण पोर्टल भी शुरू किया। ये विदेशों में मौजूद भगोड़ों को भारत वापस लाने के प्रयासों में समन्वय और तेजी लाने में सहायता करेगा। नौसेना का वर्ष 2026 का दूसरा कमांडर्स सम्मेलन आज से नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि 3 दिन के इस सम्मेलन में नौसेना के वरिष्ठ अधिकारी, विभिन्न क्षेत्रों और स्थानों के संचालक तथा क्षेत्रीय कमांडर भाग लेंगे। सम्मेलन में सैन्य और रणनीतिक स्तर पर नौसेना की अभियानगत तैयारियों की समीक्षा की जाएगी। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि पश्चिम एशिया में संघर्ष के बीच भारत के ऊर्जा हितों की सुरक्षा, समुद्री हितों की रक्षा में नौसेना की भूमिका को रेखांकित करने की दृष्टि से ये सम्मेलन महत्वपूर्ण होगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से 5 अक्टूबर तक अमरीका की यात्रा पर रहेंगे। वे कल से शुरू होने वाली 2 दिन की G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक में शामिल होंगे। श्री गोयल अन्य सदस्य देशों के व्यापार और उद्योग मंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। इन बैठकों में किसानों, मछुआरों, महिला उद्यमियों, स्टार्टअप, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम के लिए अवसर बढ़ाने पर चर्चा होगी। श्री गोयल अमरीका के वाणिज्य मंत्री के साथ भी द्विपक्षीय बैठक करेंगे। इसमें भारत अमरीका

द्विपक्षीय व्यापार समझौते को संतुलित और दोनों देशों के लिए लाभकारी बनाने तथा अंतरिम समझौते को अंतिम रूप देने के प्रयासों पर चर्चा होगी। दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान के अंतर्गत जिन मतदाताओं को त्रुटियों के संबंध में नोटिस जारी किए गए हैं, बूथ स्तर के अधिकारी उनके घरों से दस्तावेज एकत्र करेंगे। इसका उद्देश्य मतदाताओं के लिए सुनवाई प्रक्रिया को सुगम बनाना है। इस बीच SIR के अंतर्गत आज से दिल्ली के कॉलेजों, विश्वविद्यालयों और अन्य शिक्षण संस्थानों में युवा मतदाताओं के पंजीकरण के लिए विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे। शिविर बुधवार तक चलेंगे। दिल्ली सरकार ने 1 नवंबर से अगले वर्ष 31 जनवरी तक धूल उत्पन्न करने वाली गतिविधियों और बाहरी निर्माण गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। ये फैसला केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के बीच हुई बैठक में लिया गया। कार्ययोजना के अंतर्गत दिल्ली के 500 पेट्रोल पंपों पर PUC प्रमाण पत्र नहीं तो ईंधन नहीं व्यवस्था लागू की जाएगी। प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों पर रोक, अधिक पार्किंग शुल्क, कार्यालयों के समय में बदलाव और वर्क फ्रॉम होम जैसी व्यवस्थाएं भी लागू की जाएंगी। भारत ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के दौरान नस्लवाद, विदेशियों के प्रति नफरत और इससे जुड़ी असहिष्णुता से लड़ने के अपने संकल्प को दोहराया है। डर्बन घोषणा और कार्ययोजना की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सीवी जॉर्ज ने वैश्विक समानता और मानवीय गरिमा को बढ़ावा देने पर भारत का रुख स्पष्ट किया। भारत और मंगोलिया के बीच सीधी विमान सेवा शुरू हो गई है। नई दिल्ली और उलानबतोर के बीच नियमित उड़ान शुरू होने से दोनों राजधानियों के बीच यात्रा का समय करीब 5 घंटे रह जाएगा। मंगोलिया की हुनू एयर द्वारा संचालित ये सेवा हर सोमवार को उपलब्ध होगी। सीधी विमान सेवा से पर्यटन, चिकित्सा और व्यापार सहित कई क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच आवागमन को बढ़ावा मिलेगा। मौसम विभाग ने आज अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक तथा तमिलनाडु, पुद्दुचेरी और कारिक्काल में कुछ स्थानों पर तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। आज मध्य महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पुद्दुचेरी और कारिक्काल में कुछ स्थानों पर गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

नमस्कार, मैं योगाचार्य सुनील गौतम हापुड़िया। आज बात करेंगे सबसे सरल और आवश्यक योग क्रिया की। योग में आसन भी होते हैं, क्रियाएं भी होती हैं। जहां स्थिरता आती है वहां आसन होते हैं, और जहां मूवमेंट रहता है वहां क्रिया होती है। तो आज एक ऐसी क्रिया के बारे में बात करने जा रहे हैं जो हमारे लोअर बॉडी के हिप्स के नीचे के हिस्से को, वेस्ट से नीचे के हिस्से को सक्रिय रखती है, अकड़न जकड़न से दूर रखती है। अर्थात आप सब समझ गए होंगे, हम बटरफ्लाई की बात कर रहे हैं, तितली अभ्यास की बात कर रहे हैं। तितली आसन नहीं कहा जा सकता क्योंकि इसमें मूवमेंट है। तितली वाला अभ्यास हम करने का प्रयास करेंगे। तो इसके लिए कुर्सी पर तो हम बैठ नहीं सकते, आवश्यक है एक प्लेन स्थान का चुनाव करके सीधे बैठ जाए। अपने दोनों पैरों को आगे फैलाएं, दोनों हथेलियों को जंघा के बराबर में रखें, पैरों को थोड़ा हिला लें, आगे पीछे मूव कर लें, पैरों में थोड़ी शिथिलता दूर हो जाएगी, रिलैक्स हो जाएंगे। एक दाहिने पैर को बाईं जंघा के ऊपर उठा के रखें और धीरे धीरे घुटने को पकड़ के एक दाहिने हाथ से दाहिने

घुटने को पकड़ें और बाएं हाथ से पंजे को पकड़ के ऊपर नीचे हिलाएं, ऊपर नीचे करें, श्वास के साथ श्वास लेते हुए नीचे की ओर दबाएं, श्वास लेते हुए ऊपर की ओर लाएं। कम से कम 15 आवृत्ति ऊपर नीचे 15 बार उसको घुमाएं, ऊपर नीचे करें। ऊपर करते समय अपने वक्ष तक मिलाएं और नीचे ले जाते समय धरती से मिलाएं। 15 आवृत्ति के बाद वापस आ जाएं। इसी क्रिया को फिर दूसरे पैर से दोहराएं, यानी कि दाहिना पैर सीधा और बायां पांव आप उठा करके दाहिनी जंघा के ऊपर रखें। दाहिने हाथ से पैर के पंजे को पकड़ें और बाएं हाथ से घुटने के ऊपर दबाएं, प्रेशर डालें, अर्थात श्वास लेते हुए नीचे की ओर ले जाएं घुटने को और श्वास छोड़ते हुए अपने वक्ष की तरफ लाएं। इस आवृत्ति को भी कम से कम 15 बार दोहराएं। ऊपर नीचे करेंगे तो आप अनुभव करेंगे कि खुलने लगा है हमारी जंघाओं का पेल्विक हिस्सा, पेल्विक फ्लोर। फिर पैर को सीधा कर दें। अब दोनों पैर के पंजों को मिलाएं, धीरे धीरे खींचते हुए अपने पेल्विक रीजन की तरफ, जंघाओं की तरफ लाएं, पैर मोड़ दें। सुखासन जैसे अवस्था, लेकिन दोनों पैर के अग्रभाग मिले हुए और दोनों हाथों से पकड़ लें अग्रभाग को, पैर के अग्रभाग को दोनों हाथों से पकड़ लें। अपने पेल्विक फ्लोर के ज्यादा से ज्यादा एड़ियों को करीब लाएं और सामान्य श्वास के साथ अपने घुटनों को नीचे ऊपर हिलाएं, अर्थात थोड़ी देर के लिए तितली बन जाएं। अपने घुटनों को ऊपर नीचे हिलाएंगे, धीरे धीरे आपकी जंघा की मांसपेशियां स्वस्थ होती जाएंगी, पैरों की अकड़न जकड़न दूर होती जाएगी। और मैं विशेष रूप से कहना चाहूंगा अपने देश और विदेश की माता और बहनों से कि उन्हें तो यह अभ्यास रोज करना चाहिए। ये महिला जनित रोगों से मुक्ति दिलाने वाला अभ्यास है। जो महिलाओं को, मेरी माताओं बहनों को प्रॉब्लम होती है मेंसुरेशंस के दौरान, पीरियड के दौरान, और भी कोई महिलाओं के रोग हो सकते हैं, गायनी प्रॉब्लम हो सकती है, उन सब में लाभकारी अभ्यास है ये तितली का अभ्यास। तितली की क्रिया आप दोहराएं और अपने पेल्विक फ्लोर को ज्यादा से ज्यादा शक्तिशाली बनाकर पूरे जंघा को, पैरों को शक्तिशाली बनाएं और जीवन का शक्तिशाली होते हुए ही आनंद उठाएं। धन्यवाद।

印度的里广播电台，从印度时间5:15到6:45和16:17:30。